印度的李广播电台，听众朋友们，下一首歌是塞兰德拉和黑姆拉达唱的，请收听。

जनकपुर यात्रा के अंतिम चरण में ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम तथा लक्ष्मण गंगा तट पर पहुंचे, जहां ऋषि ने उन्हें गंगावतरण की कथा सुनाई। जनकपुर पहुंच राजा जनक की नगरी की बनावट और उसकी शोभा देख दोनों भाई अत्यंत प्रसन्न हुए। नगरी में अनेक बावलियां, कुएं, तालाब, उसमें खिले रंग रंग के कमल, पक्षियों का कलरव, वाटिका में फूलों पर गुंजन करते भंवरे और नगर के चारों ओर फूल पत्तों से लदे वृक्षों की मनोहारी सुषमा का वर्णन शब्दों से परे है। नगर के बाजार की अपनी अलग छवि है। सुंदर चौराहे और गलियां जैसे सदा सुगंध से सींची रहती हैं। राजा जनक के निवास स्थान की भव्यता और ऐश्वर्य देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ। इसके अंतर्गत आपने सुना बालकांड भाग 79। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर में यानी कि ठीक 6:55 मिनट पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके ठीक बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार।

पारा प्राकृतिसी योगा प्लाजार पजावात सरता पंगे मार का बुगारान डरी बरबागे पंजुरू नगरी यंग सचारा बरसामा सामा मलाकुकान कॉमन योगा प्रोटोकॉल से वाई पे आचार्य एनी डिहाडिरी ओले मंत्री परमिंता प्रसाद प्रताप राव यादव बरसामा डिंगान इंदर सिंह परमार मंत्री नगारा डिंगान कविनांगान मांडिरी उनतुक डिपार्टमेंट आयुष डी परमिंता नगारा बागन मध्य प्रदेश पजावाद गाबुंगान सेक्रेटारी का मंत्रियान आयुष इबू मोनालिसा दास डायरेक्टर इंस्टीट्यूट नेशनल योगा मोरारजी देसाई प्रोफेसर डॉक्टर काशीनाथ सामागांडी पजावाद सीनियर का मंत्रियान पाकार योगा परवाकिलान डरी सिस्टम आयुष डान का डॉक्टरान मॉडर्न सरता प्राकृतिसी योगा डरी बरबागे विलाया डी नगारा इनी जुगा तुरुत बर पार्टिसिपासी डालाम प्रोग्राम तर सबूत सबागे बागें डरी आचारा आयुष आहारा यही तुमाकाना सेहत बरवासी प्रिंसिप आयुष जुगा डी बागीकान का पारा पारा पसरता तरकनाल डी सलूडू दुनिया कारेना आर्सिटेक्टुर कुइलिया यंग मेगा डान लिंकुंगानिया यंग तनांग खजुराहो मंजडी लातार यंग तपात उन्तुक योगा महोत्सव दुआरी बुडुआ पुलो आनाम आचार्य निमयोरोती हुबुंगान आतारा ट्रेडिशी कुनो इंडिया डान का बुगारान होलिस्टिक सकालिगुस मम्परकुआत मोमेंटम मनोजू हारी योगा इंटरनेशनल ई डे वाई 2020 आनम सकियान इतु तादी कमेंटार सोडा सोडा पनगार डी सिनी सियारन लुआ नगरी आकाशवाणी सेक्सी भाषा इंडोनेशिया इंडिया किनी कुतिला आचारा लागू रायत इंडिया डालम आचारा इनी कामी मंगीपुर अंडा डिगान सबुआ लागू डरी दायरा राजस्थान

0: Di sini siaran luar negeri Akashvani, Seksi Bahasa Indonesia, India. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, penyiar Anda Anita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi, selamat tinggal, sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
5: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
4: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम

के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा

0: के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
2: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
3: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
1: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
4: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी।

0: दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संतफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
1: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोकसत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मानसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के

0: against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal. IATA says India will be a significant player to air traffic boom in Asia-Pacific region by 2044. And in football, India beat defending champions Bangladesh 3-1 to win SAF Women's Championship for record 6th time. And with that, we end the morning news. Have a great day.
1: ये आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर दाखला अमित शाह ने माली लेन देन, इमारतों की तामीर और बैन अलावामी सरहदों पर जायदादों के खरीदो फरोख्त पर कड़ी नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया है। कौमी जांच एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा हो रहे इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों को मुस्तरद करते हुए इसे गलत करार दिया है। वहीं उसने इस तरह की खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत में अहम मजहबी मकामात पर सहूलतों को बढ़ाने की गरज से बड़े तरक्याती इकदाम करेगी। भारत ने सेहत से मुतालिक 72 सहूलतें और 12 सकाफती विरासती प्रोजेक्ट्स नेपाल को सौंपी हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कहा है कि भारत 2044 तक एशिया बहरुल काहिल खित्ते में हवाई ट्रैफिक के जबरदस्त इजाफे में कलीदी रोल अदा करेगा। और फुटबॉल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर लगातार छठी मर्तबा ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप जीत ली है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने माली लेन देन, इमारतों की तामीर और बैन अलावामी सरहदों पर जायदादों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया है। अमित शाह की तरफ से हिदायत उस वक्त सामने आई जब उन्होंने शिमाल मशरिकी रियासत के सरहदी इलाकों से मुतालिक बीएसएफ के त्रिपुरा फ्रंटियर हेडक्वार्टर में एक मीटिंग की सदारत की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजीर दाखला ने यह हिदायत भी की कि गुज़िश्ता 5 साल की जमीन से मुतालिक रिकॉर्ड्स की जांच कराई जाएगी। जनाब शाह ने कहा कि मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहनी चाहिए और मनशियात की स्मगलिंग में मुलविस लोगों की पूरी चेन से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरहदी ज़िलों में माली जाब्तगी को यकीनी बनाना रियासतों की जिम्मेदारी है। जनाब शाह ने हिदायत दी कि कलेक्टर्स और GST अफसरों को भी तरबियत दी जानी चाहिए और बराह रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड CBDT जाली करेंसी का सर्वे कराए। वजीर दाखला ने कहा कि सरहदी इलाकों में रहने वालों को तरबियत देने के लिए कैंपों का अहतमाम किया जाना चाहिए ताकि मनशियात और आतिशी असलाह के खतरात से निपटा जा सके। उन्होंने हिदायत दी कि इन कैंपों से पटवारियों, मकामी पुलिस और BSF अमले की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। मीटिंग में इस बात को उजागर किया गया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़्यादत में बैन अलाक़्वामी सरहदों से मुतसर इलाकों के आला मेयारात को यकीनी बनाने के तहत पूरी तरह कारबंद है, जबकि वो सरहदी इलाकों की मजमूई तरक्की और सलामती के लिए मरकज़ और रियासतों के दरमियान करीबी तालमेल को फ़रोग दे रहा है। आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: कौमी टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के दोबारा हो रहे इम्तिहान का सवालिया पर्चा लीक होने, उस तक पेश की रसाई और फरोग से मुतालिक सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश कर रहे दावों को मुस्तरद कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि ये मुनज्जम जालसाजी गिरोहों का काम है जो तलबा और उनके कुनबों की बेचैनी पर पनपते हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: NTA ने कहा है कि इम्तिहान की मोतबरियत पूरी तरह कायम है और उम्मीदवारों के लिए मुनसिफाना और महफूज इम्तिहान को यकीनी बनाने के लिए सभी ज़रूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। NTA ने कहा है कि वो इस तरह के चैनलों, अकाउंट्स और मवाद की सरगर्म तरीके से पहचान में लगा हुआ है और मुतल्लिका प्लेटफॉर्म्स और साइबर जराइम हुकाम से इसे हटाने और कार्रवाई करने में मसरूफ़ है। एजेंसी ने उम्मीदवारों और तलबा को मशवरा दिया है कि वो किसी तरह का कोई माली लेन देन ना करें, ना ही इसी तरह के किसी मैसेजेस को आगे बढ़ाएं

0: और न ही धोखेबाजों के फरेब में आए। एनटीए ने उम्मीदवारों से अफवाहों को नज़रअंदाज करने और मोतबर मालूमात के लिए एनटीए की मुस्तनद वेबसाइट और चैनलों पर ही इन्हिसार करने की अपील की है। नई दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी वजीर मुमलिकत अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में डिजिटल सेहत इको निज़ाम को फ़रोग देने के तहत अहदबस्ता है। आकाशवाणी न्यूज़ के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 90 करोड़ से ज़्यादा मुनफरद आभा शिनाख्ती कार्ड्स बनाए हैं और 100 करोड़ से ज़्यादा डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड्स को इन आभा आईडी से मुंसलिक कर दिया गया है। मुकम्मल इंटरव्यू 100.1 MHz आकाशवाणी FM गोल्ड और इजाफी मीटरों पर आज शाम 7:10 पर मोदी हुकूमत के 12 साल की हमारी खसूसी सीरीज में नशर किया जाएगा। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बीजेपी सरकार रियासत में दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों जैसे अहम मजहबी मकामात पर सहूलतें बढ़ाने की गरज से बड़े तरक्याती इकदाम करेगी। कोलकाता में एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि तारकेश्वर में आइंदा होने वाले सराबनी मेला के लिए वसी इंतजाम किए जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस की साबिका इंतजामिया पर तनकीद करते हुए वजीर आला ने इल्ज़ाम लगाया कि मगरबी बंगाल ने गुज़श्ता 15 साल के दौरान रोजगार के मौके की कमी और निज़ाम में बदउनवानी की वजह से काफ़ी नुकसान उठाया है। जनाब अधिकारी ने जोर देते हुए कहा कि TMC हुकूमत के दौरान खुशामद पसंदी की सियासत ने तरक्की को पीछे छोड़ दिया है। मगरबी बंगाल को एक मुकद्दस रूहानी सरजमीन बताते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि खुशामद पसंदी लाकानूनियत और सरमायाकारी की कमी का दौर अब खत्म हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल PM इकतसादी मशावरती कौंसिल के मेंबरों के साथ एक मीटिंग की सदारत की। वजीर आजम और इकतसादी सलाहकार कौंसिल ने आलमी उथल पुथल के दौर में भारत की माशी तरक्की को मजीद फरोग देने की खातिर मुख्तलिफ इकदामात और तजवीज़ों पर तबादले ख्याल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने इस मीटिंग में भारत की इकतसादी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात से मुतालिक मुख्तलिफ मामला पर तबादले ख्याल किया। इसके अलावा मीटिंग के शुरका ने इस्लाहात के सफर में और तेजी लाने, नीज रहन सहन और कारोबार करने में सहूलत को यकीनी बनाने के बारे में भी अपने अपने नुक्ते नजर पेश किए। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने साल 2015 के जलजले के बाद के तामीर नौ प्रोग्राम के तहत 72 सेहत मराकज और 12 सकाफती विरसों से मुतालिक प्रोजेक्ट्स नेपाल को सौंपे हैं। नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ नई दिल्ली में मुलाकात के बाद उन्होंने वर्चुअल तरीके से इन मराकज और प्रोजेक्ट्स को नेपाल के हवाले किया। दोनों रहनुमाओं ने सरहद पार जाती तरसील जर को आसान बनाने के लिए मुश्तरका तौर पर UPI इंडिया और नेपाल के UPI को जोड़ने का आगाज किया। दोनों रहनुमाओं ने डिजिटल इंडिया भाषिनी और काठमांडू यूनिवर्सिटी के दरमियान कौमी डिजिटल बुनियादी ढांचे की मुश्तरका तख्लीक से मुतालिक मफाहमत नामे का तबादला ख्याल किया। जनाब खनाल के साथ अपनी मुलाकात के दौरान वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी तवील और खुली सरहद पर सलामती को बरकरार रखने के लिए करीबी तआवुन से काम कर रहे हैं और दोनों मुल्क ज़रूरत पड़ने पर हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। इस मौके पर जनाब शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे अहम साझेदार है और नेपाल भारत को अव्वलीन तरजीह देता है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल और भारत महज दो मुल्क नहीं बल्कि शानदार कदीम तहजीब के फरीक भी हैं। इंडोनेशिया के वजीर खारजा सुगियोनो नई दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वो वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 8वीं भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मुश्तरका सदारत करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने बताया कि मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमा भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी का जायजा लेंगे और दोतरफा तआवुन को मजीद वसअत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने कहा है कि भारत एशिया बहरुल काहिल खित्ते में हवाई ट्रैफिक की तरक्की की दास्तान में अहम रोल निभा रहा है।

0: रहा है। आईएटीए के मुताबिक एशिया बहरुल काहिल खित्ते में साल 2044 तक हवाई मुसाफिरों की तादाद बढ़कर 4.1 अरब हो जाएगी। एशिया बहरुल काहिल के लिए आईएटीए के इलाकाई नायब सदर शेल्डन ही ने कल ब्राज़ील के शहर में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि गुज़श्ता बरसों में खित्ते की हवाबाजी की तरक्की की दास्तान में भारत का तआवुन काफ़ी अहम रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में तेज़ी से उभरते हुए शहरी हवाबाजी के घरेलू बाजारों में से एक है। जनाब ही ने मजीद कहा कि गुज़श्ता 5 से 10 साल के दौरान एशिया बहरुल काहिल खित्ता काफ़ी मजबूत रहा है और अगली एक दहाई के दौरान भी इसके मुस्तहकम बने रहने का इम्कान है। 14.2 किलोग्राम वाले खाना पकाने वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। ये इजाफा आज से नाफिज हो गया है। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 942 रुपये होगी, जबकि इससे पहले ये 913 रुपये थी। केरलम के 7 जिलों में बहुत शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
1: केरलम में त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लापुरम, कोझिकोड, वायनाड, किन्नौर और कासगौड के शुमाली ज़िलों में आज बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी 7 जिलों में शदीद बारिश से मुतालिक येलो अलर्ट का ऐलान किया गया है। तवक्को है कि पीर तक केरलम में शदीद बारिश जारी रहने का इम्कान है। आज सुबह केरलम में तकरीबन सभी ऑब्जर्वेटरीज की तरफ से बारिश की इतला दी गई है। केरलम के साहिली इलाकों में मछलियाँ पकड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: भारतीय महकमा मौसमियात ने साहिली कर्नाटक, केरलम और माहे के मुख्तलिफ मकामात पर आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा शिमाल मशरिकी भारत, अंडमान निकोबार जजायर, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, जैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी आज दिन में बारिश का इम्कान है। मौसमियात की एजेंसी ने आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, मगरबी बंगाल और सिक्किम के मकामात पर आज गरज चमक के साथ आंधी चलने की पेशगोई की है। वहीं साहिली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आज गर्म लू की सूरत हाल रहने का इम्कान है। इसी तरह उड़ीसा में आज रात गर्मी की सूरत हाल जारी रहने का भी इम्कान है। फुटबॉल में भारत ने खवातीन की सेफ चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया है। गोवा के शहर मारगांव में कल खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 1-3 गोल से हरा दिया। इस तरह भारत ने छठी मर्तबा ये चैंपियनशिप जीती है। फाइनल मैच में भारत शुरू ही से बांग्लादेश पर हावी रहा। दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ जारहाना खेल का मुजाहरा किया। पहले हाफ में प्यारी ज़ाक्सा ने गोल करके भारत को बढ़त दिलाई। अलबत्ता बांग्लादेश की तरफ से ऋतुपूर्णा ने गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। हाफ टाइम तक स्कोर 1-1 था। खेल के दूसरे हाफ में भारत पूरी तरह खेल पर हावी हो गया और सैन फिदा ने शानदार दूसरा गोल करके भारत को फिर से सबकत दिलाई और फिर लिंडा कॉम ने तीसरा गोल करके मैच भारत के हक में कर दिया और इस तरह भारत मैच 3-1 से जीत गया। हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप तीसरी बार जीत लिया है। काका मिगाहारा में खेले गए फाइनल में भारत ने जापान को 1-4 गोल से शिकस्त दी। अफगानिस्तान के खिलाफ वाहिद टेस्ट मैच में भारत आज न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे दिन 3 विकेट पर 368 रन से आगे अपनी पहली इनिंग्स फिर से शुरू करेगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
2: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में इक्तसादी मुशावरती काउंसिल मीटिंग के दौरान मगरबी एशिया की सूरत हाल के घरेलू मईशत पर पड़ने वाले असरात पर तबादला ख्याल की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। मीटिंग के दौरान मुमताज़ माहरीन इक्तसादियात और पॉलिसी माहरीन ने मगरबी एशिया कशीदगी और इसके भारतीय सप्लाई चेन पर असरात पर खसूसी बातचीत की। वहीं इनकलाब ने कौमी राजधानी खत्े में पड़ रही शदीद गर्मी को भी अहम खबर बनाया है। अखबार के मुताबिक एनसीआर में कई मकामात पर दर्ज हरारत 43 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखला अमित शाह ने माली लेन देन, इमारतों की तामीर और बैन अलाक्वामी सरहदों पर जायदादों की खरीदो फरोख्त पर कड़ी नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया है। कौमी जांच एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा हो रहे इम्तिहान का पर्चा लीक होने के दावों को मुस्तरद करते हुए इसे गलत करार दिया है। वहीं

0: نے اس طرح کی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ مغربی بنگال حکومت ریاست میں اہم مذہبی مقامات پر سہولتوں کو بڑھانے کی غرض سے بڑے ترقیاتی اقدامات کرے گی۔ بھارت نے صحت سے متعلق 72 سہولتیں اور 12 ثقافتی وراثتی پروجیکٹس نیپال کو سونپی ہیں۔ انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ بھارت 2044 تک ایشیا بحر الکاہل خطے میں ہوائی ٹریفک کے زبردست اضافے میں کلیدی رول ادا کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
1: लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, शब्द जब संस्कृति का संवाहक बनते हैं तो इतिहास रचा जाता है। आकाशवाणी और भारतीय साहित्य का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है, गहरा, अटूट और समय की कसौटी पर खरा उतरा हुआ। रेडियो की सुरीली यात्रा ने न केवल आवाज को घर घर पहुँचाया बल्कि पिछले 9 दशकों में हमारे देश की साहित्यिक चेतना को भी गढ़ा है। आकाशवाणी की इसी गौरवशाली यात्रा पर आइए सुनते हैं एक विशेष परिचर्चा, आकाशवाणी पर साहित्य के 90 वर्ष। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ साहित्यकार श्री सुरेश नीरव, वरिष्ठ साहित्यकार एवं प्रसारणकर्मी डॉक्टर हरि सिंह पाल, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अलका सिन्हा और वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार डॉक्टर विवेक गौतम। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर गौतम।
2: नमस्कार मित्रों, आकाशवाणी के यानी ऑल इंडिया रेडियो के कल 90 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस 90 वर्ष के सफर में रेडियो ने जनमानस को, पूरे देश को, दुनिया को भारत की साहित्यिक चेतना से, सामाजिक सांस्कृतिक चेतना से रूबरू करवाया है और एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी साधन के रूप में रेडियो भारत की आत्मा को दुनिया भर में ले गया है। उस पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये तीनों ही व्यक्तित्व जो हैं वो आकाशवाणी से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, इसके सफर के साक्षी रहे हैं। इस क्रम में मैं सबसे पहले अनुरोध करना चाहता हूँ डॉक्टर हरि सिंह पाल जी से कि वो इस विषय पर प्रकाश डालें कि किस तरीके से पिछले 90 वर्षों में लगातार नई ऊंचाइयों को रेडियो ने छुआ है और नए नए कार्यक्रम और पुराने कार्यक्रम को किस तरह से लेकर आगे वो बढ़े हैं। डॉक्टर हरि सिंह पाल जी।
3: धन्यवाद विवेक जी। वैसे तो रेडियो की शुभारंभ हमारे भारत में 1927 में हो गया था, मुंबई में और कोलकाता में, लेकिन वो प्राइवेट रेडियो क्लब थे, उनके माध्यम से उनका प्रसारण शुरू हुआ। और इसकी शुरुआत 1922 में हुई थी। 1922 में ही बीबीसी लंदन ने अपना प्रसारण शुरू किया था। 22 में यहाँ पर जो भारत सरकार में तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने परमिशन ली वायसराय से कि भाई हम यहाँ पर प्रसारण का काम शुरू करना चाहते हैं, तो उनको परमिशन पर जाके मिली। और 23 में रेडियो क्लब बंगाल की उसमें अनुमति मिली। तो जब छोटा सा एक क्लब जैसा होता था, छोटे से कमरे में और छोटा सा उसका प्रसारण क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन आकाशवाणी दिल्ली की जो नीम है वो 1936 की नीम है। और पहले ये भगवान दास रोड पे हुआ करता था, उसके पास राजपुरा रोड पे गया, उसके बाद ये हमारा प्रसारण भवन यहाँ पर बना। इस रूप में इसकी एक बड़ी ही सुदृढ़ और बड़ी सशक्त इसकी परंपरा रही है। और हम जानते हैं कि रेडियो जिस समय आया था तो उस समय लोग अजूबा करते थे कि इसके अंदर से कौन बोल रहा है। कभी कभी लोग मजाक करते थे कि रेडियो खोल के उसमें से कोई अगर मरा हुआ चूहा मिल जाए तो कहते थे ये चूहा तो मर गया, रेडियो कैसे चलेगा,
2: क्या बात है, क्या बात है।
3: तो इस तरह के मजाक चला करते थे। हम जब छोटे बच्चे थे तो सोचा करते थे कि भाई कहाँ से आवाज कैसे आ रही है यहाँ पर। हमारे जमाने में तो बड़े बड़े ट्रांजिस्टर हुआ करते थे और वो ट्रांजिस्टर जो है जब प्रसारण करते थे तो लगता था कभी आकाशवाणी दिल्ली से बोल रहे हैं। हमने कहा भाई दिल्ली तो हमसे बहुत दूर है, वहाँ की आवाज़ यहाँ पर कैसे आ रही है। लेकिन संयोग हुआ कि 1964 में जहाँ का मैं रहने वाला हूँ अलीगढ़ का, वहाँ पर हाई पावर ट्रांसमीटर, उच्च शक्ति प्रेषित्र वहाँ पर लगा, वहाँ पर मतलब उसकी नींव खुदी, तो उसमें कुछ हमारे भी खेत गए। जब बड़े हुए तो फिर बाद में मालूम पड़ा कि विदेश प्रसारण के लिए है। उसमें अलग अलग टावर थी, एक अमेरिका के लिए थी, एक ऑस्ट्रेलिया के लिए थी, एक यूरोप के लिए थी, अलग अलग प्रसारण किया जाता था, उसका प्रसारण वहाँ से होता था। और ये तब नहीं मालूम था कि हम रेडियो में भी आ जाएंगे। बड़ी दूर का सपना था। बल्कि बचपन में हालत ये थी, जब मैं विद्यार्थी था, एक बार दिवाली का त्योहार था तो मैंने कहा भाई जब तक रेडियो नहीं आ जाएगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा।
2: क्या बात।
3: भाई साहब शहर गए अलीगढ़, फिर वहां से खरीद के लाए, फिर वो दिया, फिर हमने दिवाली मनाई। तो रेडियो के प्रति जो एक शौक है उसमें हम सब जैसे हमारी जो पीढ़ी के जितने लोग हैं उन सबका यही आकर्षण रहा कि ये कैसे अजूबा है कि जो बोल पाता है इतना। जब हम इसमें प्रसारण के क्षेत्र में आए तो हमें लगा कि ये तो जितना मतलब हमें कहा जाता उससे भी बढ़कर है, क्योंकि रेडियो का जो प्रसारण भारत में से हुआ उसका हमारा उद्देश्य था शिक्षा और मनोरंजन साथ में देना, कि उसके माध्यम से हम शिक्षा भी दे रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की शिक्षा है, चाहे वो कृषि की शिक्षा है। और सही माने में कहा जाए तो इस देश में जो हर

0: क्रांति हुई है वो रेडियो की देन है, जो भारत में श्वेत क्रांति हुई है वो रेडियो की देन है। हमने लगातार इसमें प्रसारण कराए हैं कृषि कार्यक्रमों के माध्यम से, जिसमें किसानों को पशुपालकों को बहुत जागृति मिली, उसके माध्यम से घर घर में दूध उत्पादन बढ़ा, उससे फसलें बढ़ी, उसमें गेहूं अपना उत्पादन करने लगे। वरना किसी समय अमेरिका से हम गेहूं मंगवा करके खाया करते थे, लाल गेहूं आया करते थे कि ये अमेरिका का गेहूं,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उसका स्वाद ही अलग हुआ करता था। आज से थोड़े साल पहले भी ये था कि जैसे हमारे रेडियो में संगीत विभाग में होता है एक बी ग्रेड का कलाकार, एक बी हाई ग्रेड का कलाकार, एक ए ग्रेड का कलाकार, एक टॉप ग्रेड का कलाकार। तो अगर कोई साहित्यकार है वो रेडियो में नहीं आया तो उसको टॉप ग्रेड का साहित्यकार नहीं माना जाता। और अपने विजिटिंग कार्ड में अपनी किताब के पीछे सब लोग उसमें लिखा करते थे रेडियो कलाकार, रेडियो वार्ताकार, रेडियो। और साहित्य की अगर बात करें तो साहित्य शुरुआत से ही, जब रेडियो शुरू 1936 हुआ तभी से साहित्य का कार्यक्रम, मतलब वहीं से शुरुआत हुई थी, जिससे साहित्य जो अलमारी में बंद था वो रेडियो के माध्यम से जन जन तक पहुंचा,
2: बोलने लगा।
0: उसके माध्यम से हमने कविता पाठ कराए, उसे कहानी पाठ कराई, व्यंग पाठ कराए, और उनका रेडियो नाटक प्रसारण किया, जो कभी उपन्यास हुआ करते थे रेडियो नाट्य रूपांतरण उसका करके प्रसारण किया। तो इस रूप में साहित्य की देन रेडियो के लिए बहुत बड़ी देन है। जितने बड़े बड़े साहित्यकार थे वो सब रेडियो से जुड़े रहे, चाहे हम विष्णु प्रभाकर से हम शुरुआत करें, चाहे हम नगेंद्र जी से शुरुआत करें, चाहे हम अज्ञे जी से शुरुआत करें, अमृता प्रीतम से शुरुआत करें, या हम पद्मा सचदेव की बात करें, और अब तक की जो पीढ़ी है वो सब साहित्य से जुड़े हुए अब तक रहे। लीलाधर मंडोई अच्छे हमारे साहित्यकार रहे, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी हमारे अच्छे साहित्यकार रहे, और हमारे रामता बैरवा तक की जो पीढ़ी है निश्चित रूप से साहित्य को इसके पल्लवन और इसके पुष्पन में बहुत बड़ा योगदान रेडियो साहित्यकारों का रहा है। और यही कारण है कि आज हमारा साहित्यिक कार्यक्रम जो 1956 में शुरू हुआ था वो आज भी नियमित रूप से प्रसारित हो रहा है। एक कवि गोष्ठी हम करते हैं, कवि गोष्ठी हमारी रात को प्रसारण होती है, और उसमें जो शीर्षस्थ कवि हैं और जो युवा संघर्षरत कवि हैं उनको भी हम बुलाते हैं। उसके बाद हमारा सर्वभाषा कवि सम्मेलन होता है, हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर उसका प्रसारण करते हैं। उसमें भारत की जितनी 22 भाषाएं हैं उसमें उनका प्रसारण कराते हैं। पहले वो क्षेत्रीय बोली चाहिए, जैसे मणिपुरी है तो मणिपुरी का पहले मणिपुरी में उसका काव्य पाठ होगा, उसका फिर अनुवाद अंग्रेजी में होगा, उसका अनुवाद फिर हिंदी में अनुवाद होगा। सभी भारतीय भाषाओं का यहाँ प्रसारण होता है। उसके बाद एक हमारा राष्ट्रीय स्तर की साहित्य भारती पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है। युवाओं के लिए हमारा लक्ष्य कार्यक्रम है कुछ कहता है दिल, और जो बच्चे आते हैं युवा आते हैं वो अपनी कविता सुनाते हैं, कहानी पाठ सुनाते हैं, अपने व्यंग पाठ सुनाते हैं। हमारे दिल्ली केंद्र से जो ब्रजमाधुरी कार्यक्रम प्रसारित होता है, पंजाबी कार्यक्रम होता है, उर्दू होता है, उसमें भी साहित्यिक कार्यक्रम प्रसारित नियमित रूप से होते हैं। जो विदेश प्रसारण था वो भी साहित्यिक कार्यक्रम प्रसारित करता था, और राष्ट्रीय प्रसारण है उसके माध्यम से भी हमारे साहित्यिक कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं।
1: बहुत व्यापक और विस्तृत।
0: जी जी,
1: तो बहुत सुंदर आपने श्रोताओं को अवगत कराया है। 1930 में जब शुरू हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ रेडियो का, तो भारतीय राज्य प्रसारण सेवा कहलाती थी, लेकिन 8 जून 1936 को विधिवत इसे आधिकारिक तरीके से नाम दिया गया ऑल इंडिया रेडियो अर्थात AIR, और 1956 में फिर आकाशवाणी। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी किस तरह से साहित्य को और अन्य समाज के महत्वपूर्ण विषयों को रेडियो उठाता रहा है, और एक गौरवशाली परंपरा रही है बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ साथ। अब मैं लिए चलता हूं आपको, यानी हमारे श्रोताओं को, उस व्यक्तित्व की तरफ जिन्हें अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले हैं और वो

0: से कि वो इस विषय पर प्रकाश डालें।
1: धन्यवाद डॉक्टर विवेक गौतम जी। आकाशवाणी के बारे में मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि हवा के पंखों पर सवार होकर जो सुनाती जमाने की कहानी है उसका नाम आकाशवाणी।
2: वाह वाह वाह वाह,
0: क्या बात है, क्या बात।
1: हम आकाशवाणी को केवल एक डब्बा या यंत्र न समझें, ये हमारी संस्कृति का, ये हमारे समाज का और ये हमारे सूचना तंत्र का मेरुदंड है। इन तीनों चीज़ों को जोड़ने से जो चीज़ बनती है उसका नाम आकाशवाणी है। आकाशवाणी के दो तीन मुद्दों पर मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि इसके जो प्रोग्रामिंग है उस पर तो चूंकि आप काम करते रहे हैं तो डॉक्टर पाल ने बोल दिया, लेकिन मैं एक दर्शक की हैसियत से साक्षी भाव से मैंने आकाशवाणी को कैसे देखा है। तो पहली बात तो ये कि हम जिस दौर में हैं, अगर हमको दहेज में रेडियो नहीं मिले तो रेडियो हमारा स्टेटस सिंबल होता था।
2: जा।
1: कि वो शादी में क्या मिला, बोले साहब एक स्कूटर मिला और एक रेडियो मिला।
2: नहीं, पहले जमाने में घड़ी साइकिल रेडियो वो ज्यादा मशहूर था।
1: तो रेडियो से मतलब हमारा जो संबंध है वो हमारे संस्कारों से संबंध है। रेडियो हमारे लिए एक संस्कार है। हम जब बड़े होते गए तो हमने सबसे पहले जो सुना, तो मैं तो अपनी याददाश्त के आधार पर बोल रहा हूँ, जो हमारे यहाँ पर आकाशवाणी में आप तो यहाँ रहे हैं आपको मालूम होगा, एक वेस्टर्न लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट था। उसमें वाल्टर कॉफ थे, अब उसके हेड थे
2: जी जी जी।
1: वाल्टर कॉफ बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के म्यूजिशियन थे।
2: हाँ जी, हाँ जी।
1: और जो हमने अपने बचपन में जिस धुन को सुनकर बड़े हुए हैं, जो रेडियो की सिग्नेचर ट्यून है वो वाल्टर काफ ने बनाई थी।
2: जा, जा।
1: और मोहिल मेहता उसके साथ थे।
2: हाँ।
1: उन्होंने उसमें वायलिन बजाया है जो कि जोबीन मेहता के फादर थे।
0: बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण।
1: हमने जब उसको सुना सिग्नेचर ट्यून को तो हम तो बड़े हुए हैं, तो अब वो राग कौन सी है जो आकाशवाणी की सिग्नेचर ट्यून में जो राग दी गई है वो शिवरंजनी राग है। तो शिवरंजनी राग से सुगंध को सुनकर तो हम बड़े हुए हैं। हमने उस आकाशवाणी से दो तीन चीजें सीखी जिस पीढ़ी में हम थे। हमसे कहा जाता था कि समय की पाबंदी अगर सीखनी है तो आकाशवाणी से सीख।
2: जी जी जी।
1: एक सेकंड का भी जो मिली सेकंड होता था उसको लोग अपनी घड़ियां मिलाते थे। उन्होंने कहा 8 बजे की न्यूज आ रही है तो 8:59 और कुछ और मिली सेकंड रह गए, तो कह रहे हैं कि 8 बजा चाहते हैं, 8 बजे नहीं है। और उसके बाद एकदम धुन शुरू हो जाती थी कि समाज, तो हम लोग अपनी घड़ियां मिलाते थे। तो आकाशवाणी हमारी समय की पाबंदी का एक बहुत बड़ा संस्कार था जिसने हमें बताया कि ये केवल मनोरंजन का कारण नहीं, ये हमें एक अनुशासन भी देता है। साहित्यकारों को यहाँ लाया गया, उनको प्रोड्यूसर एमरेटस बनाया जाता था। वो यहाँ के प्रोड्यूसर एमरेटस बनते थे, चाहे वो बीरेंद्र मिश्र हो,
2: इलाचंद जोशी हो,
1: पंत जी हो। तो ये एक बड़ी बात थी कि उनको अपना फॉर्म नहीं बनना पड़ता था कि मैं साहित्यकार हूँ, मेरे पिता का नाम ये है। तो उनको लाया जाता और वो ये तय करते थे कि आकाशवाणी में जो लोग कविता पढ़ेंगे उनका स्तर क्या है। तो एक तरह से सलाहकार समिति रहती थी कि वो लोग तय करते थे। तो ये जो काम आकाशवाणी ने किया हमारी भाषा के संरक्षण का कार्य। एक जो सबसे बड़ा कार्य किया वो लोक संस्कृति का संरक्षण किया। हमारे जो शास्त्रीय संगीत का है, अगर आकाशवाणी नहीं होती तो रविशंकर जी या उस्ताद बिस्मिल्ला खान,
2: रविशंकर यही थे, अनिल विश्वास यही थे,
1: तो ये जो सारे लोग जो है इस आकाशवाणी से ही अंतर्राष्ट्रीय हुए। और जो लोक संगीत है या शास्त्रीय संगीत है उस संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान आकाशवाणी का है। तो मैं चूंकि यहाँ एक एज ए टॉकर आता रहा हूँ, पत्रकार रहा तो पत्रकारिता में आया, आपको मालूम है ब्रजभाषा में आया, विज्ञान वार्ता में आया, कृषि वार्ता में, विदेश प्रसारण में आया। तो यहाँ ऐसा कोई आयाम छोड़ा नहीं आकाशवाणी ने जिस पर कार्य न किया गया। और आज के इस दौर में भी जबकि तमाम सारे चैनल्स चल गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, उस थपेड़े में भी आकाशवाणी ने अपनी अखंड ज्योति जलाई हुई है। 90 साल की अनवरत यात्रा उनकी है। और इसका विश्वसनीयता का आधार ये है कि महात्मा गांधी से लेकर माननीय नरेंद्र मोदी तक आकाशवाणी के महत्व को जानते हैं। वो मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी से करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि हिंदुस्तान की 97% जो जनता है वो आकाशवाणी से कवर होती है। ये आकाशवाणी है जिसके संगीत को चाहे सरहद पर खड़ा हुआ सैनिक सुनता है या खेत की मुंडेर पर बैठा हुआ भैंस के सींग पर ट्रांजिस्टर लटका कर आकाशवाणी किसान सुनता है।
2: बर्तन बनाने वाला जो
0: सुरेश नीरज,
1: मैं
0: एक
1: बात में जो और कहना चाहूंगा,
0: बात मैं जोड़ना चाहूंगा आपकी बात को बड़ा करते हुए कि साहित्यकार जो बहुत बड़े नाम थे उन्हें तो आकाशवाणी लेके आते थे वो,
2: हाँ जी।
0: लेकिन बाद में जो हमारे बाद की जो पीढ़ी है, जो हम लोगों से बात

0: में जो आए, जो यहाँ पर चाहते थे कि प्रोग्राम मिल जाए, थोड़ा आर्थिक सहयोग हो जाए, क्योंकि संघर्ष बहुत रहा है साहित्यकारों के जीवन में, तो बहुत सारे युवाओं को और जो उभरते हुए साहित्यकारों को रोटी भी दी है, भोजन भी दिया है, आजीविका भी दी है।
1: इस पर एक
0: बिल्कुल
1: प्रसंग मैं बताऊं, जब मैं यहाँ आया और यहाँ मैंने युववाणी कार्यक्रम दिया, यहाँ करुणा श्रीवास्तव दी,
2: आपने याद दिला
1: है ना, वो बहुत युवाओं को बहुत
2: जी,
1: उठाती
2: जी,
1: थी,
2: कमला अशोक,
1: कमला अशोक,
3: कमला
1: तो
3: अशोक
1: हम लोगों के युवा
2: थी।
1: पीढ़ी के लोग थे, हम लोगों ने यहाँ के युववाणी से शुरू किया। खैर, मैं जो बात कह रहा हूँ वो जो आपने एक पॉइंट कहा कि हमको उसके बाद चेक मिलता था, तो जो हमारे यहाँ आकाशवाणी के एक अधिकारी होते थे वो रसीदी टिकट लेते थे और उस पर साइन करवाते थे। हाँ, तो उस पर साइन कर, हाँ,
2: पच्चीस,
1: तो उसमें हमारे कुछ उदार मना वो भी होते थे, वो कहते अरे भाई साहब आपसे क्या लेना, अभी लगा दे, तो हमें लगता है कितना दानवीर व्यक्ति है, इसलिए हमसे हम उसके चेक को लेके जाते थे। और इच्छा ये होती थी कि ये जल्दी से कैश हो जाए, तो यहाँ पर अब मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि वो प्रचार हो जाएगा, यहाँ एक दवाई की दुकान हुआ करती थी कनॉट प्लेस पे, मोहन सिंह प्लेस के ठीक सामने, उसका पता नहीं क्या संबंध था, हम लोग उसको जाके वो देते थे, वो हमको कैश दे देते।
2: अच्छा।
1: तो ये एक बड़ी व्यवस्था थी जो हम लोगों ने जैसे ही यहाँ कार्यक्रम दिया, जैसे ही चेक मिला उसको दिया, वो पेमेंट कर
3: दिया। मुझे भी एक घटना याद है, जब मैं आकाशवाणी मथुरा में था तो वहाँ लोग आते थे, अरे साहब हमें कार्यक्रम दे दीजिए, हमारे जो है ना लड़की का ब्याह है उसमें भात भरना है।
1: अच्छा, एक अंतिम एक अंतिम बिंदु मैं और जरूर कहना चाहूंगा, वरना मेरी चर्चा अधूरी रह जाएगी, कि आकाशवाणी ने एक सर्वभाषा कवि सम्मेलन करके
3: जी,
1: एक जो भाषा एक सूत्र से पूरे देश को जोड़ा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। मेरे वाले सौभाग्य कि मैं दो तीन आयोजनों में प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। एक चीज है और वो है आकाशवाणी अभिलेखागार। इस आकाशवाणी अभिलेखागार में मैं समझता हूँ कि कम से कम अगर उसको घंटों में कन्वर्ट किया जाए तो 8 लाख घंटे की रिकॉर्डिंग है, जो पूरे विश्व में इतना ज्यादा, और इसमें आप देश की किसी भी सेलिब्रिटी को, महात्मा गांधी से लेके नेहरू जी को लेके, अटल बिहारी वाजपेयी को लेके, मोदी जी तो आते ही हैं इसमें कार्यक्रम में, सुभाष चंद्र बोस को लेकर, मार्टिन लूथर किंग को लेकर, ये सारी आवाजें यहाँ
3: सुरक्षित
1: है। ये आपको कहीं विश्व में ऐसा बड़ा संग्रहालय ऐसा अभिलेखागार आपको नहीं मिलेगा। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे बहुत ही शीर्षस्थ और व्यक्तित्व वाले साहित्यकार हैं वो भी उस आर्काइव्स में सुरक्षित है। मैंने पद्मा सचदेव का इंटरव्यू किया था जो आर्काइव्स में, मैंने अरण्य पर बहुत काम किया, नक्षत्र पे कार्य किया, ये सब आपको आर्काइव्स में मिलेंगे, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनका बड़ा महत्व है। ये आर्काइव्स को आकाशवाणी के जो उन्होंने रखा है संरक्षित, वो बहुत बड़ी चीज है। ये 90 वर्ष की जो यात्रा है उसमें आकाशवाणी के पूरे हिंदुस्तान की उस टीम को मैं बधाई देता हूँ, जिसने भारतीय संस्कृति को और जो भारत की साझा संस्कृति है उसको और यहाँ की अस्मिता को, यहाँ की आवाज को एक पहचान दी है, ये निरंतर देते रहे। इस शुभकामनाओं के साथ मैं 90 वर्ष में सारे लोगों को पुनः पुनः बधाई देता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुरेश नीरव जी। बड़ी बात है कि आज़ादी के समय 6 केंद्रों से शुरू हुआ ये एक महान यज्ञ, जो जैसा कि नीरव जी कहते हैं यज्ञ उनके बोलचाल में बहुत आता है। तो आज 230 से ज्यादा प्रसारण केंद्र हैं जो देश भर में, और जैसा उन्होंने कहा अभी कि 97%, तो 92% भूभाग पर भारत के ये पहुंचा हुआ है और 98% जनता तक, 97-98% जनता तक इसकी पहुंच है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े जनमानस को और कितने बड़े जनसंख्या को ये अपने अंदर समेटता है और उन तक सूचनाएं पहुंचाता है। लेकिन मैं अपनी बात को कम करते हुए, समय की सीमा को देखते हुए आप लिए चलता हूं आपको डॉक्टर अलका सिन्हा जी की तरफ, जो कमेंट्री भी करती रही हैं 26 जनवरी की परेड की, और कविताएं भी सुनाती रही हैं, कहानियों की समीक्षाएं भी करती रही हैं, उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं, और उनकी बड़ी पुरानी यादें हैं रेडियो से।
2: बिल्कुल,
0: तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी बात रखें।
2: तो बिल्कुल, आपने जो बात कही और जो मैं अभी तक सुन रही हूँ यहाँ सबके बीच में, तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य आ रहा है जब मैं पहली बार आकाशवाणी में पैर रखा था, और वो था 1982 का वक्त। मैं उस समय स्कूल के 12वीं के एग्जाम दे करके और तब यहाँ पहली बार आई थी, और अभी भी मुझे अच्छी तरह याद है कि करुणा श्रीवास्तव, वो उस समय यहाँ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हुआ करती थी, उन्होंने मुझे दिया था कार्यक्रम लोक गीतों में सावन, इस पर मुझे एक आलेख पाठ करना था। तो अब से पहले मैं ये सोचती थी कि ये जैसा अभी हरि सिंह पाल जी भी कह रहे थे कि एक डब्बा है उसमें से आवाज़ आती है, तो मैं ये पढ़ती थी जब भी कि आकाशवाणी हुई तो लगता था आकाश से एक वाणी आ रही है, तो हमें ऐसे ही लगता था अच्छा वो मर्फी रेडियो बड़ा सा सबके घरों में हुआ करता था और उसकी आवाज़ ऐसी मखमली निकलती थी। तो जब पहली बार मैंने अपनी आवाज़ उसमें सुनी तो मुझे रोमांच हो गया और सच में लगा कि ये आवाज़ जो है वो कहीं आकाश से उतर कर नीचे तक आ रही है। इतना सार्थक नाम रहा आकाशवाणी का। और जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी, आकाशवाणी हमारे साथ साथ मेरे होश संभालने से पहले से हमारे घर में था।

0: ऐसे जैसे हम सांस लेते हैं और एहसास नहीं करते, उसी तरह से रेडियो चलता रहता था और हम उसकी गिनती नहीं करते थे। प्रोग्राम हम पढ़ाई कर रहे हैं तो भी पीछे चलता रहता था क्योंकि उससे नींद नहीं आती थी। यहाँ तक कि घर में कोई न रहे, अकेलापन दूर हो जाता था। रेडियो बजता रहना चाहिए, अगर रेडियो नहीं बज रहा तो एकदम सुनसान हो जाता था। जैसी भाषा की बात आप कर रहे थे, आकाशवाणी से जो समाचार प्रसारित होते थे, खास करके 8 बजे वाला, और उसके साथ जो ठहराव होता था, जिस तरह स्पष्ट उच्चारण होता था, जिस तरह से वो बोलते थे, उनके बोलने का ढंग, उनकी शब्दावली, उनका वॉइस मॉड्यूलेशन, ये शब्द तो हमने बाद में सीखे वॉइस मॉड्यूलेशन, लेकिन कैसे कहा जाता है अपनी बात को प्रभावी ढंग से, ये आकाशवाणी के जरिए हमने सीख लिया था। और मुझे ध्यान आता है जैसे सर्वभाषा कवि सम्मेलन की बात हुई, इसकी बड़ी धमक थी कि लोग सर्वभाषा कवि सम्मेलन में भाग लेकर के आ रहे हैं। अरे, इतनी भाषाओं के कवि वहां होते हैं और उसका अनुवाद आप प्रस्तुत करते हैं,
1: आज भी दमक है।
0: आज भी दमक है बिल्कुल उसकी। तो मुझे याद है कि मैंने लखनऊ में हुआ था वो सर्वभाषा कवि सम्मेलन जिसमें मैंने हिस्सा लिया था, और तो उस दिन बड़ी ठंड थी, बहुत हार्ड कपा देने वाली ठंड थी वहां
1: हाँ,
0: पर।
1: जनवरी दिसंबर
0: जनवरी दिसंबर की बात थी और मैं रात भर उल्टियां करते बीती थी, और अगले दिन मुझे कार्यक्रम देना था। तो बंगला के कवि थे, उनकी कविता का मैंने अनुवाद किया था, मंजूश दास गुप्ता का, और बहुत ही अच्छा रहा। उसके बाद फिर गुवाहाटी में जब हुआ तब मैंने दोबारा इसमें हिस्सा लिया, और इसमें कश्मीरी कवि

0: ऐसे ही किसी प्रोग्राम को करके निकल रही थी तो मुझे एक प्रोड्यूसर मिल गया और उन्होंने एकदम मुझे रोक लिया कि अलका एक मिनट रुको, हमारे लिए एक इंटरव्यू कर दो। मैंने कहा भाई इंटरव्यू के लिए तो तैयारी करनी पड़ती है। तो उन्होंने नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक कहानीकार हैं, कहानी पर पूछ लेना, कुछ दो चार सवाल तो हैं कि भाई कब लिखना शुरू किया, आगे क्या सोच रहे हैं, इस तरह। मैंने कहा कौन है कहानीकार? तो उन्होंने बताया मन्नू भंडारी। और मन्नू भंडारी मेरी बहुत प्रिय कथाकार थी, उनको मैंने स्कूल के ज़माने से पढ़ रखा था। तो मैंने तुरंत हामी भरी और मुझे इतना आह्लाद हुआ उस दिन कि बिल्कुल सामान्य से दिखने वाली छोटे से कद की महिला, पीछे से बांधा हुआ जूड़ा, और क्या गहराई थी उनसे बात करने में। उसके बाद तो फिर गिरजा कुमार माथुर और ममता कालिया और बहुत लोगों के इंटरव्यूज किए मैंने, साहित्य के बहुत सारे कार्यक्रम किए। आप जिन साहित्यिक कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं, लगभग हर कार्यक्रम से मैं जुड़ी रही और मैंने उसको प्रस्तुत भी किया, मैं उसका हिस्सा भी बनी। मेरी खुद की भी कहानियाँ इसमें, कथा क्रश नाम का एक कार्यक्रम होता था आपके यहाँ, जिसको बाकायदा नाट्य प्रस्तुति के साथ रखा जाता था। तो मैं भी यहाँ की एक ड्रामा अप्रूव्ड आर्टिस्ट भी थी, तो मैंने भी एक कहानी का अपना पार्ट किया था उसमें, भाभी का रोल निभाते हुए। तो ऐसी कई सारी यादें हैं विवेक जी, आप खुद एक हिस्सा रहे हैं, आप खुद कितने कवि सम्मेलनों में, कवि गोष्ठियों में आप रहे हैं, तो हम सब कहीं ना कहीं बड़े, यूं कहिए कि खून का रिश्ता है यहाँ से, फर्स्ट लव।
1: बल्कि अलका की ये और विशेषता रही कि जब ये 26 जनवरी का प्रसारण हम इनसे लाइव कराते थे, इनकी भाषा साहित्यिक भाषा
0: साहित्यिक हो जाती थी। और बल्कि मुझे ये भी याद आता है, एक बार की बात मुझे और ध्यान आती है कि 15 अगस्त का एक कार्यक्रम था और इंडिया गेट के पास से बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे थे और मुझे उसका लाइव प्रसारण देना था। अब मैं बिल्कुल तैयार थी कि मुझे तो पता है ये सब, हम लोग इतना हमारे भीतर रच बस गया कि तैयारी तो कुछ करनी नहीं है, मैं बोल दूंगी। अब जब वहाँ मैं पहुँची और उससे पहले मैं, हमने कान में लगा रखा था ईयरफोन और उसमें ये आया कि अब आप समाचार सुनिए और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू होना था। इधर समाचार मैं कान में सुन रही थी और उधर जो स्थान पर जो होना था लोकल कार्यक्रम वो शुरू हो गया। अब उसके जो ढोल नगाड़े थे वो लोक नृत्य था, वो इतनी तेज बजने लगे कि मुझे कान में बजता हुआ समाचार सुनाई नहीं दिया। और मैंने कहा मुझे तो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा, मैं कब शुरू करूं, ये बंद हो तो मैं शुरू करूं। तो मेरे साथ जो प्रोग्राम प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझे इशारा किया कि अब आप शुरू कीजिए। तो बिना कुछ सोचे समझे, लोग आंखें खोल करके आंखों देखा हाल सुनाते हैं, मगर उस दिन मैंने आंखें बंद करके आंखों देखा हाल सुनाया था ताकि मैं उनसे कहीं विचलित ना हूं जो हो रहा है और फिर मैं उसको बोल सकूं।
2: क्या बात है, क्या बात है, कितनी खूबसूरत यादें स्मृतियां हमारे जहन में तैर गई हैं आज, और पुरानी बातें सुनकर ऐसे लग रहा है कि कल की बात है जबकि वर्षों बीत गए। और इसी तरह से रेडियो भी ऐसे लगता है हमारे घर का एक सदस्य ही है और उसके बिना एक सुनापन। आज भी जब जो आपने बात कही वो मेरे साथ भी थी, जब मैं पढ़ता था तो मैं पीछे रेडियो चलता रहता था और मैं पढ़ता रहता था और इतनी तन्मयता से, और महसूस ही नहीं होता था कि कब कितना समय बीत गया। तो ये बड़ा एक तरह से मानसिक सुकून जिसे कहते हैं, मानसिक शांति देने वाला अनुभव था। और मैं तो यहाँ पर कई बार आया, आप भी आए जज बनकर, तो हम तो जिंदगी में तो जज नहीं बन पाए लेकिन ऑल इंडिया रेडियो ने हमें जज जरूर बना दिया। और कविता प्रतियोगिता में आए या और भाषण प्रतियोगिता में आए, ऐसे ही अनुभव ये अपने आप में अनूठे हैं। और आज के युग में तो मैं देखता हूँ कि आधुनिक युग में डिजिटल जो रेडियो है, डिजिटल ऐप पर जो अवेलेबल है, न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर है, युवाओं को इतना आकर्षित करता है। और OTT जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी आप नई लोकप्रियता रेडियो पा रहा है। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात है अलका जी कही कि पढ़ाई के समय रेडियो, और मुझे गाने सुनने का बहुत शौक था और मुझे भी शायद आज हजारों गाने याद हैं।
0: बिल्कुल,
2: खासतौर पर लता मंगेशकर और मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद, हेमंत कुमार, ये जितने फिल्मी गायक थे और उस जमाने में, यानी जब हम बच्चे थे तो गाने भी एक तरह से बड़े मीनिंगफुल होते थे और शब्द भंडार इतना उनका शानदार होता था, वोकैबुलरी इतनी बढ़ती थी हमारी उनसे कि शायद जो आज हम कविता करते हैं और आज जो कविता में हमारे थोड़ी बहुत प्रभावोत्पादकता है, जो एहसास है, मुझे लगता है वो रेडियो की देन है। क्योंकि हमारे जो अंतर मन में, तो साइकोलॉजी में कहते हैं अवचेतन मन में जो बस गया,
0: बिल्कुल,
2: वो कहीं ना कहीं अंदर है और वो एहसास नहीं होता कि वो क्या करवा रहा है, और निश्चित रूप से बहुत अच्छा करवाता है। तो ये जो अनुभव था कि भाई शब्द भंडार भी समृद्ध हुआ, और जो आपने कहा कि कैसे मॉड्यूलेशन करना है, कैसे उच्चारण करना है, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन की में ही फर्क नहीं है, है ना, मात्राओं में, कविता को कविता बोल रहे हैं लोग। तो रेडियो ने ऐसा सिखाया हमें कि हमारा उच्चारण बिल्कुल शब्दशः ठीक हो गया, और हम आज जैसा इन्होंने कहा कि लाल किले से भी जो रिकॉर्डिंग होती है ऑल इंडिया रेडियो की, मुझे भी दो बार मौका मिला लाल किला कवि सम्मेलन में, सर्वभाषा कवि सम्मेलन में भी मैं गया उड़ीसा में, जब यहाँ पर डायरेक्टर जनरल थे लीलाधर मंडलोई जी, तो उनके साथ, तो उन्होंने स्पेशली मुझे आवाज सुनकर मुझे बुलाया कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तो ये एक तरह से बूस्टअप था और आज चल रहा है ये रास्ता। और बचपन की वो यादें जब हम घास में बैठ के चुनमुन सुनते थे, चुनमुन प्यारे चुनमुन।

0: गुड्डा गुड़िया लाई हूं मैं, आ जा खेले हम। तो वो चुनमुन से जो शुरू हुआ सफर वो आज अपने ऊंचाई तक पहुंच रहा है। और
1: साहित्य तो ऐसा था विवेक जी कि मतलब इसकी खून में बसा हुआ था आकाशवाणी की।
0: बिल्कुल,
1: कोई भी कार्यक्रम, महिला जगत का कार्यक्रम हो, बच्चों का कार्यक्रम हो, चुनमुन कार्यक्रम में भी बाल साहित्य की इतनी सुंदर चीजें निकल करके आती थी। जो बाल मन होता है उसे समझना था तो चुनमुन आप छोड़ ही नहीं सकते।
0: नहीं तो ब्रजमाधुरी से जुड़े रहे, क्योंकि मैं भी मथुरा का
2: आकाशवाणी के 2-3 कार्यक्रमों का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा।
1: जी
2: आप तो जानते होंगे, यहाँ एक रेडियो ज्योतिस्तान कार्यक्रम आता था, चरणजीत जी कर लेंगे, वो इतना लोकप्रिय हुआ, उन्हें पद्मश्री मिली। एक कार्यक्रम आपके पटना से आता था, लोहा सिंह
1: अरे मार बोड़नी ले,
2: एक हवा महल
1: है
2: ना,
0: अभी भी है।
2: तो ये जो कुछ कार्यक्रम थे जिन्होंने पूरे देश में एक अपनी पहचान बनाई
1: है, कि युद्ध का समय था और हमारे उस समय ब्लैकआउट हो जाता था,
2: रेडियो ज्योतिस्तान
1: है ना, तो वो पूरा खिड़कियां बंद, ब्लैकआउट और बत्ती गुल।
3: जी जी।
1: उस समय ट्रांजिस्टर चला करके हम लोग हवा महल सुना करते थे।
2: तो एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये आकाशवाणी के लिए बड़ी उल्लेखनीय रहेगी। मैं छात्र था और ये 76 की बात, चंबल के बीहड़ों में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी, उसके डायरेक्टर थे वासु भट्टाचार्य,
1: जी जी,
2: बहुत बड़ा नाम। उसका स्क्रिप्ट राइटर थे राम कुमार भ्रमर, और उपन्यास राम कुमार भ्रमर का स्क्रिप्ट राइटिंग अमृता प्रीतम की थी। सवाल यह है कि हमारे आकाशवाणी में उस वक्त एक माथुर साहब थे ग्वालियर में, जो लखनऊ से आए थे
3: जी।
2: तो वो बहुत पसंद करते थे नई पीढ़ी के लोगों को, तो हमसे उन्होंने कहा कि आप ये कार्यक्रम कर सकते हैं कि उनका आकाशवाणी के लिए इंटरव्यू ले आए। तो मैं चंबल के बीहड़ में जाकर मैंने कबीर बेदी का, वासु भट्टाचार्य का, बिंदु उसमें हीरोइन थी, इन सबों के, और मैं समझता हूँ सबसे कम उम्र का मैं व्यक्ति था जो मैंने ये वो किया। और मैं उसके लिए आकाशवाणी को श्रेय देता हूँ कि उसने मुझे छात्र जीवन में इतना बड़ा मौका दिया।
4: रेडियो ने सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई है वो लोक साहित्य के संरक्षण में निभाई है। जो साहित्यिक हमारा है, अभिजात साहित्य है, शिष्ट साहित्य तो है ही है, उसके साथ लोक साहित्य का संरक्षण संवर्धन सिर्फ रेडियो ने दिया है, आकाशवाणी ने दिया है। चाहे हमारे लोकगीत हों, चाहे हमारी लोक गाथाएं हों, चाहे हमारी लोक कथाएं हों, चाहे हमारे लोक नाट्य हों, साहित्य संसार में इसको पूछने वाला नहीं था, किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में नहीं रहे, लेकिन रेडियो से लगातार हम, चाहे वो ब्रजमाधुरी कार्यक्रम हो, चाहे हरियाणवी कार्यक्रम हो, या क्षेत्रीय बोली के कार्यक्रम हो, उनके साहित्य का प्रचार प्रसार करते रहे।
0: निश्चित रूप
4: से संगीत को, जो आज भी जो शास्त्रीय संगीत और उपशास्त्रीय संगीत अगर कहीं जीवित है तो रेडियो की वजह से जीवित है, कोई और प्राइवेट चैनल कोई इसको ब्रॉडकास्ट नहीं करता।
0: बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। मैंने देखा कि जितनी संविधान में भाषाएं हैं उसके साथ साथ लगभग 189-190 बोलियों में
4: आप
0: कह रहे हैं लोक साहित्य उसका प्रसारण होता है, तो 190 बोलियां जो हैं उनको रेडियो ने अपने साहित्यिक कार्यक्रमों में रखा है, बहुत महत्वपूर्ण। और ब्रजमाधुरी का जो मैं एग्जांपल दे रहा था कि मथुरा से हूं मैं, तो ब्रजमाधुरी में जो अलगोजे बजते थे आज अलगोजे सुनने को नहीं मिलते, और उसी अलगोजे की मिठास वो अपने आप में अनूठी होती थी, बांसुरी वो आनंद नहीं देती जो अलगोजे देते हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी हुई कि साहित्य में, समाज में, संस्कृति में, लोकगीतों में, लोक साहित्य में रेडियो ने अपनी भूमिका निभाई है। और
4: आज भी हमारे परिवार में कोई अगर हमारा नाम रेडियो पे सुन लेता है, जैसे मेरा पोता मेरा कार्यक्रम में कर रहा था, वो उसकी पुनरावृत्ति थी, उतने नाम सुन लिया, बोले दादू आपका नाम आ रहा है इसमें, बड़ा खुश।
1: मतलब ये जो था ना, घर घर में पहुंचा, जनमानस से सीधे सीधे संवाद किया, और इस तरह से और किसी की पहुंच नहीं थी, दूरदर्शन इतना उपलब्ध नहीं था, लेकिन आकाशवाणी था।
2: आकाशवाणी आज भी
0: उस जमाने में जब मैचेस आते थे तो जो देखा जाए तो उपन्यास लिखने वाले कि अब ढलता हुआ सूरज और खिलाड़ियों की लंबी होती हुई परछाइयां और उसके साथ वानखेड़े एंड से दौड़ रहे हैं बॉल लेकर, तो वो जो एक रोमांच पैदा करता था रेडियो,
1: जो शब्द दृश्य जो होता है
0: वो
1: रेडियो ने हमें दिया, रेडियो की ट्रेनिंग है कहना चाहिए, और वो हमारे लेखन में भी बहुत उपयोगी रहा उस तरह से।
0: तो मित्रों अब समय हो चला है कि हम आप श्रोताओं से विदा लें, और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं तीनों साहित्यकारों का, अपने श्रोताओं से विदा लेता हूं, फिर किसी खूबसूरत मौके पर आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।
5: आकाशवाणी पर साहित्य के 90 वर्ष, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे वरिष्ठ साहित्यकार श्री सुरेश नीरव, वरिष्ठ साहित्यकार एवं प्रसारण कर्मी डॉक्टर हरि सिंह पाल, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अलका सिन्हा, और वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार डॉक्टर विवेक गौतम। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे डॉक्टर विवेक। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यही संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।

0: अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारे अतिथि।
1: नमस्कार, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले सप्ताह हम बात कर रहे थे इस कार्यक्रम में पत्रकार और लेखक सुरेंद्र सिंह डोगरा से। अपनी बहुत सारी यादें और अनुभव डोगरा जी हमारे साथ साझा कर रहे थे। लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं इंटरव्यू का दूसरा और अंतिम भाग।
2: आज भी ऐसे कोई बुजुर्ग वार या ऐसी जगह में आप चले जाते हो जहां पर कि हिंदी भी नहीं जानता कोई, तो फिर आपके पास कौन सी लैंग्वेज है? तो मैं फिल्म को यूनिवर्सल लैंग्वेज समझता हूँ
3: जी।
2: और आप बिलीव नहीं करोगे, एक मेरी फिल्म है सेव प्लांट सेव प्लैनेट, जो कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी सिलेक्ट हुई
3: जी।
2: अवार्ड तो नहीं हुई बट सिलेक्ट होना भी
3: जी,
2: क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। तो फिर लाइब्रेरी, तो आप सेव प्लांट सेव प्लैनेट की बात करें, अगर आप मूवी देखोगे 2 मिनट की भी नहीं है, 2.5 मिनट की, और अगर वो उसका साउंड वाउंड भी ना हो ना, तो भी आप अंडरस्टैंड कर जाओगे कि क्या मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ। एनवायरनमेंट के ऊपर है वो बेसिकली
3: जी।
2: तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर, तो ये सब चीज़ें हैं। लाइब्रेरी का भी यही पर्पज़ था कि मैं बच्चों के अंदर उसके अंदर वो एक मीडिया एजुकेशन की, या हमारे एकेडमिक में लाइब्रेरी का क्या महत्व है हमारे स्कूल या कॉलेज लाइफ में। और बात करें मीडिया की भी, तो मीडिया में भी आप चाहे किसी भी टीवी चैनल पे काम करते हो या आप रेडियो पे काम करते हैं, लाइब्रेरी का एक अपना महत्व है। आपने अगर किसी बारे में खोजबीन करनी है, हालांकि आजकल तो क्योंकि गूगल और, लेकिन मैं आपको एक बात फिर भी बता दूं, मैं आज के दौर में भी मैं भी सारे टेक्नोलॉजी यूज करता हूं
3: जी।
2: बावजूद उसके आई प्रीफर बुक्स बिकॉज दैट इज ऑथेंटिक। अब आप एक बार बताइए, आप ये अगर गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो उस पे ऑथेंटिसिटी, या तो आपको अनुभव हो उस चीज का, ऐसी कई बार ब्लंडर मिस्टेक्स हुई हैं
3: जी।
2: तो इसलिए किताबों का और लाइब्रेरी का बहुत बड़ा महत्व है। और फिल्मों की तरफ इसलिए रुझान गया कि किसी चीज को अगर आपने अच्छे से कन्वे करना है तो फिल्म इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ
3: जी। आपने सुरेंद्र जी बहुत अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, लगातार सक्रियता बनाए रखी है, और अपनी ओर से जितना कर सकते हैं समाज को भी आपने लगातार कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है, तो कई अवार्ड और पुरस्कार भी आपको मिले हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हमें कोई सम्मान मिलता है, कोई पुरस्कार मिलता है, तो उसके बाद की भावना क्या होती है? ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब हमें और अच्छा काम करना है, या ऐसा लगता है कि हमने जो किया था उसके लिए बस हमें जो मिलना था वो मिल चुका है, अब हम आराम कर सकते हैं, क्या क्या भाव होता है?
2: वैसे सच्ची बात तो यह है कि मैं अवार्ड सबसे बड़ा अपने काम की बात करता हूँ
3: जी,
2: कि अगर आपको अपने काम से लोग अगर सराहते हैं और नहीं भी सराहते, आपको ये पता है कि आपने सच में कुछ ऐसा काम तो करा है, क्योंकि हर कोई पीठ नहीं थपथपाता, ये माइंड में रखिएगा, मेरा शेयर है इस विषय पर कि पीठ वही थपथपाता है जिसके बाजुओं में दम होता है, और एवरेस्ट वही चढ़ पाता है जिसका हौसला बुलंद होता है। तो मैंने अपने ना हौसले को बुलंद रखा
3: जी,
2: और पीठ थपथपाने वाले भी मिले नहीं भी मिले, मेरे लिए अवार्ड कुछ तक हर किसी के लिए मायने रखता है। लेकिन मुझे लगता है हमारे देश की ना मानसिकता यह है, मरने के बाद अवार्ड देते हैं, धर्मेंद्र साहब को भी मरने के बाद ही दिया गया। तो ये चीज़ें हमें मानसिक, और इवन होता भी है आप कितना काम कर लेते हैं, अगर आप अवार्ड के लिए काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से काम करना ही नहीं चाहिए। हाँ, एक तरफ ये भी है कि आप अगर काम करते हैं ना, तो गीता का श्लोक है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करा इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। तो मैं उस गीता के ज्ञान को इतनी भली भांति समझता हूँ और अपनी चीजों को बेहतर देने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये जरूर है, लेकिन अभी रिसेंटली बहुत से अवार्ड हो गए है ना, फलाने अवार्ड, डिमके अवार्ड, और मतलब अच्छे अच्छे देश में ही नहीं बल्कि नेपाल में भी ऐसा हुआ, ठीक है। लेकिन अभी पिछले दिनों जो है, पीछे फरवरी के अंदर, मुझे, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ हिमाचल हमीरपुर से, वहाँ पर कोई ठाकुर राम सिंह जी हुए हैं बहुत इतिहासकार के तौर पर, उन्होंने मतलब भारतीय लेखकों को और इतिहासकारों को एक छतरी के नीचे लाकर, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो विदेशियों ने लिखा है हमारे ऊपर इतिहास, उसको ऑथेंटिक ना समझ के, क्योंकि वो तो उनका अपना परसेप्शन रहा होगा या वो कितना जानते हैं हमारे देश के बारे में। तो उन्होंने मुहिम छेड़ी, अभी उनका 111वीं बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर जो है वो था प्रोग्राम था, वहाँ मुझे इतनी बड़ी ट्रॉफी जो मुझे मिली, वो मेरे को इसलिए ज़्यादा मतलब सुकून देती है कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैंने आपको बताया मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ बट आई बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ मेरी संस्था है एक रिसर्च, तो वहाँ पर सम्मानित होना।

0: मुझे बहुत गौरवशाली महसूस होता है।
1: जी, हमीरपुर का जिक्र चला तो आपकी जो हालिया पुस्तक है, मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगी, टाइगर ऑफ इंडिया, अनुराग सिंह ठाकुर। इसका विचार कैसे आया आपके मन में?
0: देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको ना शुरू में जब आपने मेरे से प्रश्न किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि मैंने कई लोगों की आत्मकथाएं पढ़ी हैं और मैं अब जीवन के उस पड़ाव पर हूँ कि जो मेरे आसपास के रविंद्रनाथ टैगोर या अंबेडकर मुझे महसूस होते हैं कि जो कि समाज में इंस्पायरेशन के तौर पर देखे जाते समझे जाते
1: जी
0: हैं, मैं उन पर क्यों ना काम करूं। और जहां तक अनुराग ठाकुर जी की बात है तो वो 2008 में एमपी बने, मैंने उनको 1 अगस्त 2009 को दिल्ली में, इधर हिमाचल सदन है चाणक्यपुरी में, मैं उस समय कृषि जागरण एक पत्रिका, मासिक पत्रिका होती थी, और उसके लिए मैं बतौर एग्जीक्यूटिव कार्यकारी संपादक था। तो मुझे मौका मिला, मैंने इनको अप्रोच करा, इन्होंने मेरे को बुलाया और हमने इंटरव्यू किया। लेकिन मैं उस पहले ही इंटरव्यू, मेरे पास आज भी पड़ी हुई है वो पत्रिका,
1: जी
0: मैं ना देख के दंग रह गया यार, ये यंग बंदा और जो है क्या, मतलब जबरदस्त मेमोरी, और मतलब और मैं सही बताऊं, क्योंकि वो तो एमपी नए नए बनकर आए थे,
1: जी
0: लेकिन जो उनका ओरा था, जो उनके रिस्पॉन्ड थे, जो जो मैंने क्वेश्चन करे उनको, मेरे साथ बल्कि डोमिनिक सर भी थे जो उनके ऑनर हैं, तो ना मुझे ये जरूर लगा कि यार ये ना लोकल नहीं, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, ऐसे लक्षण मैंने उनके अंदर देखे। फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर एक बार मौका मिला मुझे, क्योंकि हमने 2011 में द्वारका परिचय करके, पहले न्यूज़ पोर्टल था, फिर हमने वो वीकली अखबार, फोर्टनाइटली अखबार लॉन्च किया था द्वारका
1: जी
0: से, तो फिर मौका मिला उनसे एक बार फिर भेंट होने का, तो फिर मैंने उनको एक बार इंटरव्यू किया। वो स्पोर्ट्स के ऊपर था, वो उनके शुरुआती दौर के ऊपर था, और मैंने उसमें बाई चांस अगले ही एडिटोरियल में उनके ऊपर एक एडिटोरियल ही लिखा था कि भाई ही कैन बी नेक्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ बीसीसीआई, और इंटरेस्टिंग बात सुनिए, वो बीसीसीआई के प्रेजिडेंट बने भी।
1: जी
0: तो फिर उनका मिलना जुलना रहा, बल्कि वो द्वारका कभी एक दो बार इवेंट में आए तो फोन करते थे, बात होती थी, तो मुझे लगा कि यार ये जो है ना जिस रफ्तार से चल रहे हैं, और देखिए कमाल की बात, उसके बाद वो जो है पहले तो स्टेट मिनिस्टर हुए, उसके बाद वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एज वेल एज यूथ अफेयर्स, तो
1: जी
0: ये बहुत गर्व की बात है। अच्छा,
1: बिल्कुल
0: फिर उनकी ना मेमोरी मैंने जो मैं कई चीज़ें मेरे को लगी, फिर एक मेरे दोस्त थे, बल्कि एक बार मिलना हुआ तो वो ना मेरे ब्रदर के ऊपर उन्होंने कॉन्डोलेंस भेजा था, तो उनको मतलब 6 7 8 महीने बाद मिले हैं मुझे, वो तब भी वो चीज़ को रिकॉल कर रहे थे, तो मुझे ये लगा यार गजब की मेमोरी है। और फिर अभी पिछले साल की बात है, हमारे 25 जनवरी 1971 को हिमाचल बना था, तो स्थापना दिवस और फाउंडेशन तो प्रोग्राम उन्हीं के उस पर था, निवास स्थल पर, तो वहाँ फिर मुलाकात हुई। तो निरंतर जो ये जो मुलाकातें होती रही, एक दो बार और किसी स्कूल में भी मिलना हुआ, एक बार द्वारका में मिलना हुआ, हमीरपुर में भी मिलना हुआ, और बल्कि रिसेंटली ये जो मैं बता रहा हूँ जैसे अवार्ड की बात कर रहा था, वहाँ पर भी मिलना हुआ। लेकिन उससे पहले मैं ना कल लास्ट ईयर जब मैं नेपाल गया था, गर्मियों के दिन थे, तो मेरे को जब, क्योंकि लास्ट ईयर जब ये जनवरी की बात है जो उन्होंने दोबारा भेंट हुई उनके निवास स्थल पर, काफ़ी बहुत बड़े काफ़ी हिमाचली लोग, कम्युनिटी के लोग थे, सभी ने सेलिब्रेट कर रहे थे, तो जब मुलाकात हुई, हेलो, उन्होंने बल्कि अपनी वॉल पे मेरी उस मैं एक पुस्तक भेंट करी उनको मैंने, तो मुझे लगा यार ये जो व्यक्तित्व हैं इनके ऊपर इसलिए लिखना जरूरी बनता है, और मैं लेखक हूँ, मुझे मेरा धर्म है कि अच्छे
1: जी
0: लोगों के ऊपर मैं क्यों ना लिखूँ, और जिन्हें मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ,
1: जी
0: तो उनके ऊपर लिखने का ये कारण रहा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अनुराग जी से भी पीछे मुलाकात, बाई चांस एक प्रोग्राम में फिर मुलाकात हुई, बात हुई, अभी वो उसका लोकार्पण नहीं हुआ है, लेकिन और वो छपी भी बहुत अच्छे प्रकाशन समूह से है, इंडिया नेट बुक से, मुझे लगता है मेरी पहली, मैंने किसी पे जो है इस तरह से बायोग्राफी लिखी है, एंड आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि ये बहुत अच्छी साबित होगी, क्योंकि खासतौर पर उनके लिए जो कि अनुराग ठाकुर को आज जिस अंदाज में देखते समझते हैं,
1: जी
0: अब आज भी उनको लोग ये भी बोलते हैं कि सीएम हो सकते हैं वो हिमाचल के आने वाले समय में, बात सीएम और पीएम की नहीं है, मुद्दा यह है कि उस व्यक्तित्व ने कितने लोगों को प्रभावित किया है,
1: जी
0: तो उनकी लाइफ के ऊपर मैंने कोशिश करी, 18 चैप्टर है उसमें मैडम, तो बचपन से लेकर उनके सभी, उनके जो भी जो उतार चढ़ाव, या मैंने उसको पॉजिटिव एंगल से लिखा है, ताकि कोई भी अगर युवा अगर जीवन में कुछ करना चाहता है तो एक राजनीतिक क्षेत्र में क्या, और कितना, हाउ हम्बल ही इज, कितने
1: जी
0: विनम्रता है उनके अंदर, उन सब चीजों का उल्लेख किया है मैंने उसमें।
1: जी युवाओं को प्रेरणा देने की बात चली है, तो मैं भी आपसे ये जानना चाहूंगी कि चलते चलते क्या संदेश आप हमारे श्रोताओं को देंगे?
0: देखिए, युवाओं के लिए संदेश तो जो है, मेरी एक पुस्तक और आ रही है, यू कैन राइज एंड शाइन, वो अंग्रेजी में है, 46 उसके उसके अंदर चैप्टर है, और युवाओं के लिए तो मैं सिर्फ इतना संदेश जरूर देना चाहूँगा कि देखिए आज की डेट पे ना, क्योंकि ऑनलाइन पे बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं,

0: लेकिन विशेष तौर पर क्योंकि मैं पत्रकारिता क्षेत्र से आता हूँ, लेखन क्षेत्र से हूँ और फिल्मांकन की बात करता हूँ, मुझे लगता है कि, और लेकिन ऐसा भी नहीं है,
1: और FTII से भी आप जुड़े
0: हाँ
1: रहे
0: बिल्कुल,
1: हैं
0: वहाँ से
1: जी।
0: मैंने वो फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स किया, और ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि
1: जी
0: देखिए अगर आप ना कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए ना आपका एकेडमिक भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपको ना उससे दिशा मिलती है,
1: जी
0: और अगर आपकी दिशा सही होगी तो दशा अपने आप सुधर जाती है। तो युवाओं के लिए सिर्फ इतना संदेश है कि ऑनलाइन बहुत अच्छी बात है, मैं भी ऑनलाइन का प्रयोग करता हूँ, लेकिन ना जो फील्ड, मेरी एक बुक है रेंडेव्यू इन एंड ऑफ द फील्ड्स, उसका पर्पज ही ये था, मैंने जो मतलब मैंने इंटरव्यू बेशक फोन पे भी करे होंगे एक आधा
1: जी
0: कोई, लेकिन मैंने मैडम ऐसे इंटरव्यू करे कि राजकुमार शर्मा जो विराट कोहली कोच है उनको जाके स्टेडियम में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाके इंटरव्यू करना। तो मुझे लगता है कि युवाओं को ना बहुत मेहनत करने की बहुत जरूरत है, काम करें वो। मैं पढ़ाता था स्टूडेंट बच्चों को जो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के, कुछ बच्चे मेरे को ये कहते थे सर इंटर्नशिप दिला दो, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है दिलवाएंगे कहीं बात करेंगे, या ऑनलाइन दिलवा दो, मैंने कहा फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे ज़िंदगी के अंदर, ये पत्रकारिता है, ये ग्राउंड पे उतर के होती है,
1: बिल्कुल,
0: वो चाहे रवीश हो
1: बहुत
0: और
1: सारी
0: चाहे वो
1: चुनौतियां
0: सर,
1: होती हैं
0: हाँ
1: सामने।
0: राजदीप, तो ये सब लोगों ने जीवन के अंदर अगर कुछ हासिल पाया है तो वो जमीन पे उतर के पाया है,
1: जी
0: ये सब चीज़ें। तो युवाओं के लिए यही संदेश है, खूब मेहनत करें, और सबसे बड़ी बात है सपने जरूर देखें, तो उसके लिए यही है कि एक तो शांति रखें जो
1: जी
0: आजकल बिल्कुल नहीं है पेशेंस, और उसके लिए एक फार्मूला सबसे बढ़िया बता रहा हूँ आपके रेडियो ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से, कि म्यूजिक का जरूर शौक पालें, खेलों का जरूर शौक पालें, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, आपको खेल आपको शरीर से जो है तंदुरुस्त बनाता
1: जी
0: है,
1: आप तो स्वयं खिलाड़ी
0: और मैं
1: रहे
0: खिलाड़ी रहा
1: हैं
0: हूँ वो, उसका मुझे
1: जी।
0: बहुत लाभ मिलता है मैडम। और दूसरी बात संगीत, मैं रात को मैडम सोता नहीं, मेरा ऊपर कमरा है, मेरी वाइफ को पता है बच्चों को पता है, मैं बिना गाना सुने और गाए सो नहीं पाता। आप एक बताइए, मैं दवाई खाने से बेहतर है ना कि मैं उस डोज को ले लूं, और
1: तो
0: मेरे को
1: ये नया टैलेंट हमें पता चला कि आप गाते भी हैं, तो चलते चलते मैं चाहूंगी कि आपके गायन से ही हम कार्यक्रम का समापन करें।
0: चलिए अब आपने ये भी एक नई तो कई गाने हैं वैसे, लेकिन मुझे लगता है फिर अभी अलविदा हो रहे हैं तो फिर कुछ ऐसा ही गाना गाना चाहिए, है ना।
1: जी।

0: कहना, कभी अलविदा ना कहना।
1: बहुत खूब। तो सुरेंद्र जी, गाना आपने बहुत अच्छा चुना, लेकिन हम इन शब्दों का पालन फिलहाल तो नहीं कर पाएंगे, हमें घड़ी का इशारा जो है वो मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो हमारे स्टूडियो की घड़ी हमें बता रही है कि अब हमें अलविदा तो कहना पड़ेगा, लेकिन इस वादे के साथ कि आपकी उपलब्धियों के बारे में और आपकी जीवन यात्रा के बारे में हम फिर से बात करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं मैं आपको देती हूँ रेडियो परिवार की ओर से।
0: धन्यवाद।
1: तो आज हमारे अतिथि में हमारे अतिथि थे सुरेंद्र सिंह डोगरा। आप पत्रकार हैं, लेखक हैं, डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं, साथ ही एक खिलाड़ी रहे हैं और सामाजिक सरोकार के बहुत सारे कार्यों से आप लगातार जुड़े हैं। अपने साथ और लोगों को भी आप जोड़कर आगे चलते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे युवा साथी जो हैं वो अपने समय का लगातार सदुपयोग करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे युवा साथियों को इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने का, समझने का अवसर मिला होगा। कार्यक्रम प्रोड्यूसर काजल सूरी के साथ मैं नीलम मलकानिया अब हमारे अतिथि से लेती हूं आप सभी से अनुमति। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी अतिथि। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर।

अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम मिट्टी दी महक और उसके बाद होंगे समाचार और 10:10 पे आपका कार्यक्रम होगा आपकी पसंद का आपकी फरमाइश का जिसमें आप हमें भेजेंगे खूब ढेर सारे मैसेजेस। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स और DRM 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

फिल्म दर मुकाबिले अनुष्का शर्मा के साबिकई ये सह चार साल सिनेमाई दाश्ते तख्सीस कर। दर फिल्म में बैंड बाजा बारात रानवीर नक्शे यक पेसरे नोए देहरी राइफा करद वबराइए बेदर सावुर्दने वज कामिले आन रोल चंद रूज राबाद दानिश जुया ने दानिश गाह देहरी सिपरी करद वो दर नतीजे तलाश हाई ये मजबूर फिल्म नाम बुर्दे बेउनवा ने बेहतरीन फिल्म दरामद वो हरकज नक्शे बितुए उरा सुतूद। इन फिल्म तकरीबन 1 मिलियन डॉलरा दर बाजे सिनेमाई या बॉक्स ऑफिस जमावरी कर वो निहायतन रणवीर सिंह बेहतरीन जायजे 9 वारी दे सिनेमाई रा ताइये पंजाओ शीशोमीन जश्न वारे मारूफ जवाइज सिनेमाई बेनामे फिल्म फेयर दरियाफ्त नमूद।

संजय लीला भंसाली यकी मारूफ तरीन तौलीद कुनंदे वो कारगर्दा ने सिनेमा ये हिंदी के अगलबन बेखातिर तहिये करदन फिल्मा ये इस्तेसनाई व बेखसूस इंतबाखात अज दास्तान हाइये क्लासिकी ये शेक्सपियर शोहरदारत व बासाबिकये फिल्मा ये पुरफरोश बरहुरदारस ताखीरी दर दर्क व शिनाख्तन इस्तेदाद रानवीर सिंह नदाश व तस्मीम गिरफ के दर शाहकार आयंदा खुद अज रोमियो जूलियत शेक्सपियर आन पिसर बा इस्तेदाद मकबूल रा बरगुजीनत बराबरीन फिल्मज बेनामे गलियों की रासलीला रामलीला के दौरान रानवीर सिंह नक्श राम अज गुजरात त्रा ईफा नमूदे तमाम तमाशा चंदा गर्विदये खुद साख भानसारी हत्ता बराये इंतखाब नक्श जन दिक्कत कारी रा बेकार बोर्ड व दीपिका पादोकोन रा दर मुकाबिद सिंह बरगुजीद कुल्ले फिल्म दास्तानश व हत्ता तमाम तराने हाइये आन अज लहाज मारूफियत मकबूलियत फ़ौल आदई रा बेतसावुर्द व रानवीर सिंह शबान आन वज सितारये हृदय नखुस रा बेतसावुर्द आन चाहरोमीन फिल्म उबूद व हजूरश मानंद यक सितारये दरख्शान बूद फिल्म मस्कूर बेउनवान बुजुर्ग तरीन मौफियत तिजारी दरामद व दर बाजाय बिलीत फरोशी हदूदन 209 मिलियन डॉलर राबे दसावुर रानवीर सिंह तमजीद व सितइश फरावानी रा अज जुमरे हाइये गुना गुन दरिया कर्द वबारे दीगर बराये बेहतरीन हुनरमंद फिल्म फेयर नामजद शुद

وإن

بفزع إذا عن أرضنا بعيد.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए ये प्रारंभिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले साल द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य सुरक्षा और पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग समेत द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा

0: चर्चा के लिए उत्सुक हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों में मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तारीख है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन के लंच तक 6 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 126 रन और ऋषभ पंत 81 रन बनाकर आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर और मानव सुथार लंच तक क्रीज पर मौजूद थे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today said that the joint commission between India and Indonesia is convening after a gap of 4 years, and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. The External Affairs Minister made these opening remarks after co-chairing India-Indonesia Joint Commission meeting in New Delhi. He said that both nations celebrated the 75 years of establishment of bilateral ties last year.
3: Our joint commission is happening after 4 years, and I think it's important to recognize that in those 4 years, we have made good progress in our bilateral relations. Today, I look forward to extensive discussions with you, covering the full spectrum of our bilateral

0: राम राम।
1: मैं पता है क्यों रुकी, क्योंकि जैसे आपने बोला खूबसूरत और प्यारी प्यारी बहने
0: तो हम तो खूबसूरत है ना।
1: अरे हमारी बहने भी तो है खूबसूरत।
0: हाँ,
1: तो मुझे नहीं लगा कि, मैंने कहा जैसे हमारी बहनों ने हमारा कार्यक्रम सुनना आरंभ किया होगा और उन्होंने एक शब्द खूबसूरत सुना तो उन कहते हैं ना कि भी इतना खून बढ़ गया होगा कि हम बता नहीं सकते, और उनके जो गाल लाल लाल हुए होंगे ना उसको तो बस यही है कि हम इमेजिनेशन कर ही सकते हैं बस।
0: देखिए ना कमलेश, जब महिलाओं की कोई तारीफ कर देता है तो वो फूले नहीं समाती है, कहते हैं ना दिल गार्डन गार्डन हो जाता है।
1: और इसके अलावा एक और भी बात है ना, उनको लगता है कि चलो कोई तो है जो हमारी तारीफ करता है। और कई बार तो यही होता है ना कि हमारी बहनें अच्छा सा श्रृंगार करके जब सामने आती है और कोई ये नहीं बोलता कि आज तुम अच्छी लग रही हो, कहता है क्या फ़ायदा, मैंने इतना सब श्रृंगार किया किसी ने बताया नहीं। और आज हमारी बहन कहेंगी देखो आज तो भी मैंने कोई श्रृंगार भी नहीं करा और हमारी जो प्यारी प्यारी दो बहनें हैं उन्होंने तो मेरी कितनी तारीफ कर दी है।
0: जी हाँ बिल्कुल। और लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कमलेश, जैसे ये मौसम है हमारा, गर्मी है, तेज धूप है, उमस है, पसीना है, तो ऐसे मौसम में हमारी जो त्वचा है, हमारी आंखें हैं, झुलस जाती हैं। बाहर काम करने जाते हैं, घर के काम भी संभालती हैं हमारी बहनें, बच्चे भी होते हैं, बाहर खेलते हैं, तो ऐसे मौसम में बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं।
1: बिल्कुल। और कहते हैं ना कि जो हमारी आंखें हैं वो तो सबसे संवेदनशील हैं, जरा सा आंखों में कुछ कचरा गया तब हमारी आंखें परेशान हो जाती हैं, एकदम लाल भी हो जाती हैं, बताते हैं कि भैया मैं परेशान हो गई हूँ। और एकदम जब उनको लगता है कि आंखें जल रही हैं तो हमें लगता है पता नहीं क्या हो गया, हम बार बार ठंडे पानी से अपनी आंखों पर छींटे भी मारते हैं, और जब नहीं समझ में आता तो फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास, और जब डॉक्टर बताते हैं कि ये परेशानी होगी तो दवा लेकर हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर उससे पहले भी हम अपनी आंखों के बचाव के लिए भाई देखो क्या करना है, हमें सनस्क्रीन का अगर हम प्रयोग कर लें, धूप का चश्मा लगा लें, बाहर निकलें, तो क्योंकि जो धूप का मौसम है ना वो केवल त्वचा नहीं, वो हमारे पूरे शरीर पर इफेक्ट डालता है।
0: बिल्कुल कमलेश, खूबसूरत सी जो दुनिया है ना वो हम इन प्यारी प्यारी आँखों से ही देखते हैं, और इन आँखों का ख्याल रखना हमारा परम कर्तव्य भी है। इसीलिए हम लोगों को ज़्यादातर विटामिन सी से भरपूर फल सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जैसे मौसमी फल हैं, मौसमी सब्जियां हैं, उनका भरपूर सेवन करिए, वो आपकी पॉकेट भी अलाउ करेगी और आपको फ़ायदा भी पहुंचाएगी। जैसा कि आपने बताया सनस्क्रीन का यूज़ करें, सूती कपड़े पहनें और साफ़ आरओ वाटर से, कभी आँखों में जलन होने लग जाए ना तो आरओ वाटर ठंडा लीजिए आप, पानी उसके आँखें अपनी धो सकते हैं। साथ ही ठंडे ठंडे फेस मास्क जो आते हैं ना कमलेश, बड़ा मज़ा आ जाता है गर्मियों में लगा के, मुल्तानी मिट्टी हो गई, हमारे किचन से रसोई से निकले हुए हैं, शहद दही, दही लगा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, जो चेहरे की रौनक तो बढ़ाएगा ही और अंदर से आपको पोषण भी देगा।
1: और जो हम खीरा खाते हैं ना, तो खीरा खाने के साथ साथ जो है उसका ऊपर का गोल गोल एक दो पीस जो है काट के रख लें और आँखों पर उस खीरे को रख कर और बिल्कुल शांत भाव से लेट जाएं और बिल्कुल गहरी लंबी सांस लें, और इससे क्या होगा, दो फायदे होंगे, एक तो आपकी आँखों को रिलीफ मिलेगा, दूसरा जितनी आप थकी हुई है ना वो थकान भी आप देखेंगे कि थोड़ी सी दूर हो गई। अगर इस बीच आपको थोड़ी सी झपकी आ जाए तो भी कहने ही क्या, उसके बाद जब आप उठेंगे कहेंगे वाह मैं तो बड़ी तरोताजा हूँ, आप बताओ मुझे क्या क्या काम करना है।
0: बिल्कुल। और एक बात का और ख्याल रखें कि सुबह 10 से 4 बजे की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें, और निकलना भी पड़ जाए तो सिर को ढककर निकलें और हो सके तो काला चश्मा जरूर पहने।
1: अच्छा, और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं या हमारी बहनें हैं या हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी देखो आजकल मोबाइल का काफी प्रयोग करते हैं, मतलब मोबाइल के बिना तो लगता है अब दुनिया है ही नहीं, और जितना हम मोबाइल पर रहते हैं उतना वो हमारी आंखों पर भी असर डालता है, तो बीच बीच में थोड़ा सा मोबाइल को साइड में रख दें, बच्चों से भी बातें करें, अपने मन की उनसे बताएं, उनकी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उसका समाधान करना है, उससे बातचीत करें, और जब स्कूटर पर जाएं या वैसे जाएं तो हेलमेट भी ज़रूर पहनें, और जैसे आपने कहा चश्मा तो पहनना ही पहनना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि अपने सिर को भी धूप से बचाना है, अपनी आँखों को भी धूप से बचाना है।
0: और तभी तो हमारा गोरा गोरा मुखड़ा भी बचेगा और हमारी आँखें भी।
1: अच्छा, अच्छा।

0: गृह लक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी बहनों को कमलेश और
1: मनीषा का
0: राम।

0: देखिए, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा तो अच्छा लगता ही है कमलेश, है ना। लेकिन साथ में जब तक हमारा खाना पीना अच्छा होगा, तब तक ही तो रौनक आएगी ना।
1: ये तो है
0: सिर्फ
1: ही।
0: काला चश्मा लगाने से, सनस्क्रीन लगाने से तो नहीं चमकने वाले।
1: ये तो हमने बाहरी सुंदरता की बात की ना, अब आंतरिक सुंदरता जो है वो तो देखो जो आप पौष्टिक खाना खाएंगी उसी में आएंगी। और सबसे बड़ी बात की कि जो आप खाना बनाती हैं बड़े प्यार से मनुहार से बनाएंगी भी और खिलाएंगी भी। कई बार पता है मनीषा क्या होता है कि किसी बात पे गुस्सा आया तो और बहनें जो होता धड़ धड़ भी रोटी बनानी है बस जैसे ना एक गुस्से में बना रही है, कोई फायदा नहीं। आप जो गुस्से में बना रही हो सारा गुस्सा आपकी रोटियों में जा रहा है। तो बेस्ट वे क्या होगा कि आप जो एक गिलास ठंडा पानी पीजिए, अपने गुस्से को शांत कीजिए और उसके बाद में खाना बनाइए। क्योंकि अगर भूखे पेट होंगे तब भी गुस्सा आएगा, अगर
0: बिल्कुल।
1: खाने में अच्छी चीज मिल जाए और वो भी पौष्टिक हो तो फिर तो कहना ही क्या
0: हाँ
1: है।
0: कमलेश, मेरा तो ये मानना है ना, देखिए कि अगर बनाना ही है तो प्यार से बना लीजिए,
1: हाँ
0: रोके भी
1: हाँ
0: बनाना है और हंस के भी बनाना
1: बिल्कुल,
0: ही है।
1: तो रोना क्यों, हंस के सारे
0: जी,
1: काम
0: हंस के ही
1: कीजिए
0: कर
1: ना।
0: लीजिए ना।
1: कम से कम घर का जो वातावरण है वो भी अच्छा रहेगा, जो हमारे बच्चे हैं वो भी हमें देखकर खुश, नहीं तो कहेंगे जब देखो हमारे घर में तो लड़ाई का माहौल रहता है। और देखो मनीषा, पहले तो बच्चे जो इतना बोलते नहीं थे लेकिन आजकल के बच्चे तुरंत जवाब दे देते हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल। और आज है 7 जून, और हर साल कमलेश विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस इस दिन मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य होता है मुख्य, वो होता है असुरक्षित भोजन से होने वाले स्वास्थ्य खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और खेत से थाली तक सुरक्षित और पौष्टिक भोजन पहुंचाने के लिए कदम उठाना।
1: बिल्कुल, इसमें क्या होगा कि जो हम बीमार पड़ जाते हैं बीमारियों से हम दूर रहेंगे। अगर हम अपने घर की साफ़ सफाई रखेंगे और खाना बनाने से पहले सब्जियों को भी अच्छी तरह से धोएंगे। कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी में हम पहले सब्जियां काटते फिर धोते, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी

0: होते हैं जो हरी सब्जियां, जिनको पहले धोते हैं और उसके
1: उसके
0: बाद में
1: बाद
0: उनको काटना चाहिए।
1: जी
0: तो कुछ बातें ऐसे हैं, हालांकि हमारी बहनों को तो सब आता है, लेकिन हम बार बार केवल उनको एक याद दिलाते हैं। हमारी बहनें ये ना समझे कि हमें तो सब आता है और ये दोनों आकर जो हैं अब वो हमें समझा रही हैं। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप ही तो अपने घर की मालकिन है। पूरी जो अन्नपूर्णा वाली बात है वो तो आपके अंदर है ही, और जो भी भंडारण हम करते हैं वो उचित हिसाब से करें। कई बार क्या होता है कि हम ना डब्बे, मान लीजिए दाल लेकर आ गए, चावल ज़्यादा लेकर आ गए, पीछे पीछे डब्बे सरकते रहे और उसके बाद हम भूल गए। आगे जो जो सामान हमें इस्तेमाल में आता चला गया उसका हमने प्रयोग किया और पीछे वाले डब्बे भूल गए। अचानक जब हम साफ सफाई करने लगते हैं कोई बार त्योहार, तब अरे ये हमने सामान मंगाए थे ये भी
1: वो तब
0: खराब हो
1: तक
0: गया,
1: खराब भी हो जाता
0: बिल्कुल।
1: है जी।
0: अरे ये मसाले थे, अरे ये भी खराब हो गए, इनकी तो एक्सपायरी डेट है तो 2 साल पहले के रखे हुए हैं, फिर उन सबको बांध कर फिर आप फेंकते हैं। अब देखिए वो
1: बिल्कुल
0: कितना नुकसान हुआ। तो ये हमारी बहनों को ध्यान रखना होगा कि अगर हम पौष्टिक खाना खाएंगे, पोषक तत्वों को अपने खाने में शामिल कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए।
1: जी हाँ। और बाजार से अब का कोई भी खाने की चीज़ खरीदते हैं, जैसे हमारे पैकेट में फ्रूट आते हैं, काफ़ी चिप्स आते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो उसको जब भी खरीदें, बच्चों को भी ये बात, छोटी बात है पर मोटी बात है, ये बच्चों को भी बताएं कि उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें। कई बार ऐसा होता है बच्चे दुकान पर जाते हैं, चीज़ ले आते हैं और उसकी एक्सपायरी डेट बिना चेक किए खा लेते हैं, तो
0: बिल्कुल।
1: वो भी उनकी सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक होती है।
0: और आजकल के बच्चे भी बड़े समझदार हैं, स्कूलों में उनको सिखाया जाता है। तो मेरे साथ भी एक बार यही वाक्य हुआ कि मैं कोई सामान लेकर आ गई, तो मेरे
1: जी
0: साथ में एक छोटा बच्चा था, उसने कहा कि आंटी आपने ये सामान चेक किया है एक्सपायरी डेट? तो मैंने कहा नहीं बेटा। कहते कोई बात नहीं, आप सामान रखते जाओ, मैं चेक करके देता हूँ आपको। मैंने कहा अच्छा। और उसने फिर उसमें से 2-3 पैकेट निकाल दिए। भैया ये तो अगले महीने एक्सपायर हो जाएंगे, अगर आंटी जी ने ये नहीं इस्तेमाल करा तो इनके घर में तो नुकसान हो जाएगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अब समझदार हो रहे हैं।
1: बिल्कुल, कहीं ना कहीं जागरूक हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे सब जागरूक जब होंगे तभी इन चीज़ों के प्रति सावधान और सतर्कता बनी रहेगी।
0: बिल्कुल। मैं तो यही कहूंगी कि जैसे कि हम बार बार बात करते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की, और एक दिन की बात नहीं, ये तो हमेशा की बात है, क्योंकि जैसा खाए अल वैसा
1: वैसा
0: होए
1: होवे
0: मन,
1: मन।
0: ये हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। और अब इसका जो एक कहते हैं ना असर, वो भी हमें मालूम है। अगर हमारे बच्चे जंक फूड खाते हैं तो उनकी सेहत पर दिखता है, अगर वो पौष्टिक खाना खा रहे हैं वो भी हमें दिखता है। और जो भी चीज़ें हम अपने बच्चों को खिलाते हैं हमें मालूम है कि हमें उनको क्या खिलाना चाहिए। चलो कभी कभार कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम हम बच्चे भी सुन रहे हैं, तो ये कहेंगे कि बिल्कुल आप तो जो है ना मना करते हो तो ये नहीं खाना ये नहीं खाना। लेकिन कुछ को ना एक आदत पड़ गई है कि सुबह उठते ही उनको जंक फूड खाना ही खाना है, तो उस आदत से अपने बच्चों को बचाना है। और जैसे इसकी थीम रखी जाती है, तो थीम है इसकी बोझ से समाधान की ओर, हर
1: हर
0: जगह
1: जगह
0: सुरक्षित
1: सुरक्षित
0: भोजन।
1: भोजन।

0: गरम गरम जलेबियां खाई हैं
1: जी। चलिए, प्यारे प्यारे गीत हमें हंसाते भी हैं कभी कभी बहुत ज्यादा, और ये कार्यक्रम में और भी शामिल करेंगे करेंगे हम। कमलेश, पहले एक बातचीत ले लेते हैं। बातचीत का विषय रहेगा सिलाई कढ़ाई और फैशन डिजाइन में रोजगार के अवसर। बातचीत में भाग ले रहे हैं राजेश्वर प्रसाद और इनसे बातचीत कर रही हैं यमुना गर्ग।
2: है लेकिन मुकाम नहीं मिला है। और यदि हम बात करें सिलाई कढ़ाई और डिजाइनर वस्त्र तैयार करने की, ऐसे बहुत से बहन भाई हैं जो अपनी सिलाई का या कशीदाकारी का लोहा मनवा सकते हैं, लेकिन सही रास्ता सही प्लेटफॉर्म न मिल पाने की वजह से अपने गांव मोहल्ले तक ही सीमित रह जाते हैं। तो आज उन्हीं बहन भाइयों को उन्हें मुकम्मल जगह पहुंचाने और उनकी पहचान सभी लोगों तक मुहैया कराने के लिए आज विशेष तौर पर कार्यक्रम में आमंत्रित की हूँ राजेश्वर प्रसाद जी को, जो कि रूट सेट संस्थान गुड़गांव में कार्यरत हैं। स्वागत है आपका राजेश्वर प्रसाद जी।
3: थैंक यू मैडम।
2: डिजाइनिंग आपको बखूबी आती है, तो सिलाई कढ़ाई और जो फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में रोजगार की हम बात करें तो कौन कौन से अवसर हैं इस क्षेत्र में?
3: सिलाई कढ़ाई और फैशन डिजाइनिंग
2: जी,
3: सिलाई में बहुत असीमित अवसर है। हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग दी जाती है
2: जी,
3: उसमें वो 30 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा करने के बाद बहुत से महिलाएं क्या करती हैं कि अपने घर में एक मशीन रखकर अपना काम शुरू कर लेती हैं।
2: जी जी, शुरुआत में ही।
3: हाँ, शुरुआत में जी। 90% महिलाओं के पास घर में सिलाई मशीन रहती है मैडम। वो धीरे धीरे अपना दिन में एक दो सूट सिलाई करती है, 200-300 रुपये कमाना शुरू कर देती
2: जी है जी।
3: इसके बाद फिर जब वो देखती है कि इससे काम नहीं चलेगा, हमें बड़े स्तर पर करना चाहिए,
2: बिल्कुल,
3: तो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कि हमारे पास आती हैं, बोले सर अब मेरे को और लोन चाहिए और काम बढ़ाना है, हमारे पास पैसे नहीं है
2: जी।
3: तो उसमें ये देखते हैं कि ये महिलाएं लोन वगैरह के लिए आती हैं, तो हम लोग उनको और भी बूटी खुलवाते हैं, ये इनको फाइनेंशियल असिस्टेंट भी कराते हैं बैंक वगैरह से
2: जी जी।
3: इनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनाना, उसका फॉलोअप करना, और इसके बाद इनको जो भी जहां से सस्ता मशीन मिलता है, एम्ब्रॉयडरी का मिलता है
2: जी,
3: सारे हम लोग ना डायरेक्ट कंपनी से इनको दिलवाते हैं मैडम, ताकि ये कर लें। वो महिलाएं क्या करती, जो घर में काम करती थी वो दुकान लेती हैं और एक दो और भी अपना असिस्टेंट रखती है, जैसे कभी तुरपाई कर दिया चार लेकर, कोई सिलाई कर दी, धीरे धीरे वो भी,
2: जिसको सिलाई नहीं आती है अगर तुरपाई आती है हाँ, तो वो भी कर दी तो उसका भी एक रोजगार बन
3: जी जी जी,
2: तो पैसे उसको भी मिल जाए।
3: और जो महिलाएं जैसे घर ही देखती हैं, बच्चे देखती हैं, खाना बनाने में लग जाती है, वो भी मोटिवेट होती है, और उसके बाद वो भी आती है और कंपेयर भी करती हैं, और वहां रहकर काम करते करते मैडम वो भी सीख जाती है। 90% महिलाएं तो घर में ब्लाउज और वगैरह सिलाई करती हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि कटिंग कैसे होती है
2: जी जी।
3: तो उसके लिए सारा मेजरमेंट हमारे यहाँ बताया जाता है ड्राफ्ट करके, और उनको वीडियो वगैरह से सारा पढ़ाया जाता है, और जो मैडम पढ़ाती हैं उनके रिकॉर्डिंग होती है, ताकि इनको कुछ बाद में भूल भी जाएं तो रिकॉर्डिंग देखकर, और उसके बाद इनको फाइल बनाया जाता है उसमें देखकर अपना कर सकते हैं। करिए हमारे यहाँ 30 दिन का कोर्स मॉड्यूल है, इसको इतना कॉन्फिडेंस कर देते हैं कि अपना जाकर काम करने लायक हो जाती हैं। एक प्लस पॉइंट है कि 30 दिन में इनको 8 घंटा हमारे यहाँ बिताना ही पड़ता है
2: जी,
3: ताकि 1 घंटा 2 घंटा का हम लोग नहीं करते, और संडे को भी हमारे यहाँ बंद नहीं रहता मैडम।
2: अच्छा।
3: संडे को भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ 2-2 घंटा करके मैडम 6 महीना और 8 महीना ही ट्रेनिंग लेती हैं।

0: प्रोफेशनल होते हैं हम। हम लोग तो कोई खर्चा लेते नहीं है मैडम,
1: जी
0: इनको लंच वगैरह, महिलाएं कोई कोई रहते भी हॉस्टल में तो सारा फ्री हम लोग देते हैं। काफ़ी इनको फ़ायदा होता है सीख कर, कम से कम अपना घर से स्टार्ट कर दिया, फिर बड़े बड़े बेटी खोली हुई हैं।
1: मतलब कहने का ये है कि आमदनी का जो जरिया बनेगा वो कुल मिला के असीमित आमदनी होगी, अगर वो
0: असीमित
1: अगर
0: असीमित
1: ढंग से काम कर लेती है और
0: जी जी
1: प्रोफेशनल हो जाती हैं
0: जी मैडम
1: तो वे असीमित है दायरा
0: असीमित
1: उसका,
0: है।
1: बहुत आमदनी कर सकती है।
0: सिंपल सी हम लोग
1: जी
0: देखते हैं मैडम कि
1: जी
0: दो सूट सिलाई के तो 400 रुपया,
1: और जैसे जैसे किसी चीज में डिजाइन बढ़ता जाता है वैसे ही उसमें
0: रेट
1: मूल्य
0: बढ़ते
1: उसका
0: जाते।
1: बढ़ता जाता है,
0: हाँ, और देखते हैं कि उनके जो हाथ पसारती थी अपने
1: वो खुद अपने
0: गार्जियन
1: बल
0: के,
1: पे खड़ी
0: हाँ
1: है।
0: वो देती हैं, वो घर पर बच्चों को देती हैं, तो फिर
1: जी
0: ये सर काफी
1: जी
0: मदद होता है
1: जी
0: मैडम, असीमित अवसर है
1: जी
0: मैडम।
1: जैसे फैशन डिजाइनर की बात होती है तो उसके लिए योग्यता की बात होती है, तो खास करके प्रोफेशनल हम बात कर रहे हैं जैसे
0: जी
1: हाई
0: जी
1: लेवल पे होती
0: जी
1: है,
0: जी जी जी
1: तो अभी तो छोटे छोटे गांव से उठ करके अपनी सिलाई मशीन ली और काम शुरू
0: जी
1: करी
0: मैडम
1: और उन्होंने अपना एक छोटा सा बना लिया कि मार्केट तक वो पहुंच चुकी है, लेकिन
0: जी जी
1: और हाई लेवल पे जाना हो
0: जी
1: तो
0: जी
1: फैशन डिजाइनर बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए?
0: 10+2 वाले भी करते हैं, क्योंकि उसके
1: जी
0: बाद ना ट्रेनिंग कहीं करनी पड़ती है। हमारे यहाँ
1: जी
0: ऐसा है कि 30 दिन का ट्रेनिंग के बाद 15 दिन का हम लोग एक स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम कराते हैं, तो
1: जी
0: एडवांस उसमें सिलाई सिखाते हैं।
1: हाँ
0: लेकिन वो भी जो फैशन डिजाइनिंग होता है उतना पूरा कवर नहीं हो पाता है। इनको फैशन डिजाइनर बनने के लिए इनको कहीं ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, 6 महीना,
1: इंस्टीट्यूट वगैरह
0: हाँ
1: में।
0: इंस्टीट्यूट वगैरह, 6 महीना, 1 साल का, 2 साल का ट्रेनिंग, उसके बाद उस पीछे नहीं देख सकती हैं
1: ऐसा होना चाहिए कि उनके पास डिप्लोमा या डिग्री हो। अच्छा,
0: मैडम।
1: सिलाई कढ़ाई में ऐसा नहीं कि केवल वस्त्र आता हो, उसमें तो बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे कोई महिला मान लीजिए कपड़ा सिलना नहीं जानती, उसे जरदोजी का बहुत अच्छा काम आता
0: जी
1: है,
0: जी जी
1: कढ़ाई की
0: जी
1: बहुत अच्छा काम
0: जी
1: आता है, तो
0: जी
1: उसके लिए क्या अवसर कैसे
0: उसके लिए
1: सीखे
0: भी
1: वो?
0: इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ, तो कढ़ाई का भी 35 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है।
1: जी
0: हाँ, उसे सारे डिजाइन, जैसे कि बेडशीटों पर डिजाइन
1: हाँ जी हाँ
0: करना,
1: जी
0: बेडशीट पर डिजाइन करना, ये फ्रॉक पर डिजाइन करना, सूट पर डिजाइन करना, ये सारे हमारे यहाँ सिखाया जाता है।
1: जी
0: लेकिन 1 महीना का है, जितना कोर्स मॉड्यूल होता है उतना हम लोग कवर करते हैं।
1: अच्छा, शुरुआती दौर में मान लीजिए कोई महिला शुरू कर रही है इस कार्य को और सीखने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो आगे अपने व्यापार को बढ़ाना चाह रही है, इसी सिलाई कढ़ाई बुनाई
0: जी जी
1: जो भी चीजें हैं
0: जी
1: इसको
0: जी
1: लेकर के आगे बढ़ना चाह रही है, तो उसमें कितनी लागत से शुरू की जा सकती है?
0: देखिए मैडम, स्टार्टिंग में वो डिपेंड करता है कि आप कितना यूनिट, बड़े यूनिट करते हैं।
1: जी
0: 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते, बुटीक स्टार्ट हो जाएगा,
1: जी
0: क्योंकि उसके लिए मैडम आपको बता दे रहा हूँ, 3 मशीनें आएंगी, एक पीको आएगा, एक काउंटर आएगा मैडम, ये
1: जी
0: 50,000 में हो जाता है।
1: जी
0: और उससे थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहें, 1 लाख में तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। जो कि घर में अकेले एक सिलाई मशीन से काम करती हैं वो बेस्ट होगा, उसमें दूसरे को भी वो इम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं।
1: सरकार द्वारा समय समय पर वित्तीय सहायता भी दी जा रही है और कौशल विकास योजना भी सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक ये कारगर साबित हो रहा है?
0: एक मुद्रा लोन है मैडम,
1: जी
0: इसमें 3 तरह के होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: शिशु में 50,000 इमीडिएट मिल जाता है मैडम, और किशोर में 5 लाख मिलता है, और तरुण में 10 लाख मिलता है।
1: जी
0: इसके लिए एक और भी प्लस पॉइंट है कि इसमें कोई ग्रांटर की जरूरत नहीं पड़ती है
1: अच्छा
0: मैडम।
1: अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात
0: हाँ
1: है।
0: हाँ अपना जाएं, अपना प्रोजेक्ट दिखाएं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, और उसके बाद सब कुछ उनको मुहैया कराएं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह, उसके बाद वो कुछ पूछताछ करेंगे, उसके बाद इनका लोन हो जाता है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्कीम, ढेर सारे स्कीम्स हैं। मुद्रा लोन यदि नहीं भी हो मैडम, तो एक और स्कीम बता दे रहे हैं, एक है PMEGP, प्राइम
1: जी
0: मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम,
1: जी जी
0: उसमें है 35% तक इनको ना सब्सिडी मिल जाती है सर। 1 लाख लेंगे तो उनको ना 65,000 ही देना पड़ेगा।
1: अच्छा, ये बहुत
0: हाँ
1: अच्छी बात है।
0: हाँ और 2 लाख लेगी तो 70,000 माफ होगा,
1: जी जी
0: 1 लाख पर, मतलब 35% का होता है। तो ये भी हर एक जिला में, एक जिला में 2 केंद्र होता है,
1: जी जी
0: डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, वहाँ ही अप्लाई कर सकती हैं, हो जाता है। हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं इस तरह का लोन लिए हैं और फायदा उठा रहे हैं
1: अच्छा,
0: मैडम।
1: स्टार्टअप के तहत जो ये प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया है,
0: जी
1: इसका अगर लाभ लेना चाहें तो इस तरीके से उन्हें लाभ वित्तीय
0: जी ये
1: सहायता मिल
0: होता ही
1: सकता
0: है
1: है।
0: मैडम, ये सब फायदा ही है मैडम कि जितना ले लो उसमें सब्सिडी बहुत है मैडम। अब 3 लाख में 1 लाख तो सब्सिडी ही मिल जाएगी। इसमें ऐसा है मैडम कौशल विकास वाले में कि 2-3 तरह के एम्प्लॉयमेंट की भी बातें हैं, और
1: जी
0: अपना काम करने के लिए वहाँ पर जो कुछ जानते हैं मैडम उनको ट्रेनर के रूप में बुला लिया जाता है मैडम।
1: जी जी
0: ट्रेनर जैसे मान लीजिए कि कोई सिलाई का बहुत अच्छा जानती है, तो उनको ट्रेनिंग के लिए उनको बुला लिया जाता है, और पर डे उनका अपना ये होता है जैसे कि 1,000 रुपया, 1,200 रुपया ये दिया जाता है मैडम। तो वो भी कर सकती हैं, और उसके अलावा यदि वो तो वहाँ पढ़ाती हैं मैडम, उसके बाद अपना अपना बिजनेस भी शुरू किए हैं वो भी देखते हैं। तो कौशल विकास वाला में ये प्रावधान है।
1: तो क्या स्वयं सहायता समूह इसमें भूमिका अच्छी अदा कर सकती है?
0: मैं बता रहा हूँ, SHG के बारे में आप पूछ रहे हैं।
1: हाँ जी,
0: सेल्फ
1: हाँ
0: हेल्प ग्रुप
1: हाँ,
0: में।
1: सही।

0: इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए 10 कम से कम महिलाएं होनी चाहिए और 12 ज्यादा से ज्यादा। ये बैंक से जुड़ जाती हैं मैडम। अब बैंक से जुड़ने के बाद इनका एक प्लान होता है कि क्या ही बनाएं, कोई भी, जैसे मान लीजिए बुटीक खोलें या अचार बनाएं, जूट बैग बनाएं, और उसके बाद स्वीट वगैरह भी बनाते हैं, बिस्किट बनाते
1: हैं।
0: हमारी एक स्टूडेंट है पूजा शर्मा, जिसको राष्ट्रपति अवार्डी है, चंदू गांव की है मैडम। तो उसमें 8 महिलाएं हैं, मिलेट्स वगैरह बनाती हैं, बिस्किट उसका 5-स्टार होटल में जाता है मैडम। तो 8 या 10 महिलाएं उससे जुड़ी हुई हैं, तो ये कर सकती हैं कौशल विकास।
1: एक बात और है कि जैसे आपने कहा कि इस क्षेत्र में सिलाई कढ़ाई डिजाइनिंग के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकती हैं, तो खास करके देखिए इस समय जो जमाना चल रहा है वो डिजिटल है, मार्केट में अगर पहुंचने की बात है तो जो हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये कैसी भूमिका अदा करेगी बताइए।
0: ये बहुत अच्छा भूमिका अदा करेगी या कर रही है, क्योंकि मैं आपको एकदम एग्जाम्पल नहीं जो अभी हो रहा है बता रहे हैं। हमारे एक स्टूडेंट थी राजेंद्र कौर, उसने हमारे यहाँ से 2008-09 में ट्रेनिंग ली थी, उसके बाद अपना बुटीक खोली, बुटीक करते करते हमारे यहाँ पढ़ाती भी थी, आज के डेट में करीब 20 इंस्टीट्यूट में उनका अपना बनाया हुआ यूनिफॉर्म जाता है, जो रुटसेट के बच्चों को हम लोग यूनिफॉर्म देते हैं, टी शर्ट देते हैं, कैप देते हैं, तो वो सप्लाई कर रही हैं।
1: जी, कहने का मतलब ये है कि अगर घर में कोई महिला कुछ बना रही है, अच्छे डिजाइन का बना रही है और मार्केट तक उसे पहुंचना है, तो मोबाइल के जरिए भी वो अपना एक तैयार करके प्लेटफॉर्म, उसके जरिए भी वो अपनी जो डिजाइन की हुई जो चीजें हैं उसे वो दिखा सकती है, तो ऑनलाइन भी उसकी बिक्री
0: बहुत
1: हो
0: होती है मैडम। हो रहा है ना, हमारे तो बहुत से स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं मैडम। अभी जैसे कि पूजा के बारे में बताया मैडम, वो ऑनलाइन एक ही अब बिस्किट जा रहे हैं, मिलेट्स वगैरह जा रहे हैं मैडम।
1: जी, जब जागो तभी सवेरा, और सच कहें तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती राजेश्वर प्रसाद जी, ये तो आप भी जानते हैं। जज्बा हो और आपके मन में है कि हम अपने हुनर को निखारेंगे, तो खुद तो आत्मनिर्भर बनेंगे ही और लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो सब संभव है। तो चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को, बहन भाइयों को अपने शब्दों के द्वारा क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं मैडम उनके लिए मेरा मैसेज है कि वो बोलते हैं ना कि डर के आगे जीत है,
1: जी,
0: जो अंदर इनका हेजिटेशन है
1: जी,
0: वो दूर करना पड़ेगा, और ये सोचना पड़ेगा कि ये नहीं दिमाग में रखना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे
1: जी,
0: ये दिमाग से जिस दिन हट गया वो बहुत आगे बढ़ेंगे। और ढेर सारे संस्था है, ढेर सारे इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट भी महिला एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है, बहुत से ऐसे ऐसे भी महिलाओं के देखा हूँ कि जो कि थोड़े से फंक्शन होता था, दूसरे से पैसे लेकर मायके जाना या कुछ करना, आज वो दूसरे को देती हैं।
1: क्या बात है। सिलाई कढ़ाई और फैशन डिजाइन में रोजगार के अवसर, इस विषय में राजेश्वर प्रसाद जी बहुत ही विस्तार में जानकारी साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारी बहनें सुन रही थी ये बातचीत सिलाई कढ़ाई और फैशन डिजाइन में रोजगार के अवसर, राजेश्वर प्रसाद से बात कर रही थी हमारी बहन यमुना गर्ग।

0: कमलेश, जब हम बात करते हैं घर की, घर सबसे छोटी इकाई है हमारे देश की, समाज की। और जब देश की बात आती है तो हम देश के लिए कुछ भी करने को, मिटने को तैयार हो जाते हैं। और ऐसी ही थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई, जिनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को बनारस काशी में। इनका मूल नाम था मणिकर्णिका। झांसी के राजा गंगाधर राव से इनका विवाह हुआ और विवाह के बाद इनका नाम उन्होंने रखा लक्ष्मीबाई। इन्हें जोन ऑफ आर्क कहा जाता है। और 1857 की क्रांति के समय रानी पहले से ही तैयार हो चुकी थी कि मुझे अपने देश के लिए लड़ना है और मर मिटना है।
1: बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी कि भारत की वीरांगना जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सबसे साहसी वीरांगनाओं में इनका नाम लिया जाता है, रानी लक्ष्मीबाई
0: जी
1: यानी मनु यानी छबीली, जो घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और युद्ध कौशल में निपुण थी और महिला सशक्तिकरण की ये एक मिसाल रही हैं। बाधाओं के खिलाफ हमें कैसे लड़ना है ये हम उनसे सीख सकते हैं। अपने अधिकारों के लिए हमें कैसे आगे आना है ये भी उन्होंने हमें सिखाया है। और उनका जो नारा, मैं अपने झांसी नहीं
0: नहीं
1: दूंगी,
0: दूंगी।
1: जैसे हम बच्चों से कहेंगे तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि आज हमने बात की है रानी लक्ष्मीबाई की।
0: जी हाँ, रानी ने स्वातंत्र युद्ध में अपने जीवन को आहुति देकर जन जनार्दन को चेतना प्रदान की और स्वतंत्रता के लिए बलिदान का संदेश दिया। और हम रानी लक्ष्मीबाई वीरता की जो प्रतीक है उनको शत शत नमन
1: नमन करते
0: करते हैं।
1: हैं।

0: कमलेश, आज हम रेडियो पर बैठे हैं और अपनी बहनों से, बच्चों से, सभी से बात कर रहे हैं। तो जरिया जो है हमारी आकाशवाणी है, जो इतने सदियों से हमसे लोगों को जोड़ रहे हुए हैं, हमारे श्रोताओं को हमारी आवाज़ पहुंचा रहा है, बहुत से मधुर मधुर गीत सुनवा रहा है, जानकारी दे रहा है और ज्ञानवर्धन कर रहा है।
1: बिल्कुल, और ये देखो ना कि हम उसकी एक छोटी सी इकाई हैं और आज हमें कितनी खुशी होती है कि हम इसका एक छोटा सा हिस्सा हैं। और जब हम बात करते हैं कि आकाशवाणी के 90 साल की, तो कितने सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो हमारे जो श्रोतागण हैं वो यहीं सुनते हैं, ऐसे गाने हैं जो यहीं से ही वो सुनते हैं।

0: हैं और उनको अच्छा लगता है। अच्छा, अलग अलग वॉइसेस हैं, सबकी वॉइस का सुनने का तरीका अलग है। वो जैसे हम लोग प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं, किसी को किसी की आवाज़ अच्छी लगती है, किसी को किसी की, यानी
1: बिल्कुल
0: विविधता है हमारी आवाज़ों में,
1: जी
0: है ना। और कितना अच्छा लगता है कि विविध आवाज़ें जो हैं वो हमारी श्रोताओं तक पहुँच रही हैं।
1: जी हाँ। और पहले देखिए ना, पुराने समय में रेडियो होता था गांव में, घरों में, लोग खेतों में भी ले जाते थे
0: हाँ हाँ
1: अपना
0: एक
1: रेडियो।
0: रेडियो चलता था,
1: हाँ,
0: सभी
1: रेडियो
0: सुनते
1: सभी सुनते थे और बड़े
0: थे
1: प्यार से सुनते थे, चौपाल लगाकर बैठकर।
0: बिल्कुल
1: लेकिन आज हमारे फोन में भी रेडियो आ गया है, तो पहुंच जो है वो बहुत बेहतर हो गई है, बढ़िया हो गई है। यानी आप कहीं भी हों, अपना रेडियो चलाकर हमारी आवाज़ सुन सकते हैं। आकाशवाणी तक आपकी पहुंच बहुत आसान हो गई है, और आकाशवाणी ने समय के साथ खुद को आधुनिक तकनीक में भी ढाल लिया है।
0: बिल्कुल। और महानिदेशक आकाशवाणी, आकाशवाणी की गौरवशाली 90 वर्षों की अविस्मरणीय यात्रा के उपलक्ष्य में आयोजित सांस्कृतिक समारोह में आपकी गरिमामय उपस्थिति हेतु आपको हम सादर आमंत्रित करते हैं। स्पेक्ट्रम ये प्रोग्राम है, आकाशवाणी एट द रेट 90 एक संगीत में यात्रा है। इसमें कलाकार जो है वो नात एट द रेट 90 आकाशवाणी के कलाकारों द्वारा शास्त्रीय संगीत वाद्य वृंद है, मरु तरंग है, रंग पंजाबी है, यूथ वाइब्स है। और ये जो है 8 जून 2026 शाम 4 बजे रंग भवन सभागार आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली पर है। यदि आप हमसे दूरभाष पर कुछ जानकारी चाहते हैं तो नंबर है 2371-01-06 और दिल्ली से बाहर के श्रोता 011 लगाना ना भूलें।
1: जी हाँ, तो ज़रूर आनंद लें इस प्रोग्राम का और शामिल हों।

0: और जब हम बात करते हैं योजना के तहत, तो डिजिटल साक्षरता अभियान चल रहा है और ये जो है सूचना, जब हम बात करते हैं तो जितने भी हम सूचना प्रौद्योगिकी हम आज इस्तेमाल करते हैं, इनके उपकरण हम कैसे इनका इस्तेमाल करके आगे हम बढ़ रहे हैं, इंटरनेट है और ऑनलाइन जो सुविधाएं आज हम कर रहे हैं, स्मार्टफोन से हम घर बैठे पढ़ाई भी कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी कर रहे हैं और कंप्यूटर जो है उसका भी हम प्रभावी ढंग से प्रयोग कर रहे हैं मनीषा, और ईमेल इसका भी तुरंत, जैसे भी हमें कुछ बात कर रहे होते हैं हम तुरंत ईमेल भेज देते हैं। हम अपने श्रोताओं को भी कहते हैं कि भी हमें ईमेल करें और अगर ईमेल ना करें तो हमें पत्र ही लिख दें। तो नेचुरली बात है कि जो हम चीज़ें आज कर रहे हैं तो ये एक अभियान है जो डिजिटल साक्षरता के अंतर्गत हमें रोकता है।
1: जी हाँ, इसका दूसरा नाम दिशा भी है, यानी डिजिटल साक्षरता अभियान, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने हेतु शुरू की गई एक प्यारी सी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है कमलेश, ग्रामीण परिवारों को साक्षर बनाना डिजिटल कार्यक्रम के द्वारा, और कम से कम एक सदस्य को कंप्यूटर, स्मार्टफोन या इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम

0: कार्यक्रम बनाना, यानी कि जब पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।
1: बिल्कुल, और जो हमारी आशय कार्यकर्ता हैं और ये राशन डीलर हैं उनको भी ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं, और आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनके लिए भी अब काम करना आसान हो गया है
0: जी।

0: हमारा ईमेल का पता है feedback@gmail.com, और हमें चिट्ठी लिखना चाहें बहनें तो इस पते पर लिख सकती हैं, कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नया प्रसारण भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली 110001।
1: और हमारे इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पाराशर और संयोजक हैं शिवनंदन लाल। और हम ये चाहते हैं कि हमारी बहनें हमसे ऐसे ही मिलते रहें, हम भी अपने बहनों से मिलने के लिए ऐसे आते रहें। और इसी के साथ अब बहनों को कहें, बहनों राम राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दिन के एक बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो के साथ नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है।
2: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस

की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग की प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए 2 ईरानी ड्रोन्स को रोका और नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान के अनुसार अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 121वें ओवर में 8 विकेट पर 541 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: and re-evaluation of answers on the Post Result Services portal for CBSE Class 12 Examination 2026. In a social media post, Central Board of Secondary Education said that the portal will remain open until midnight. It asked the students to complete and submit their applications before the deadline. The Central Bureau of Investigation, CBI, conducted searches at six premises at Chandigarh, Panchkula and Delhi NCR region yesterday in connection with the ongoing investigation with IDFC First Bank and AU Finance fraud case. The case is related to 661 crore rupees misappropriation fraud and siphoning of the government funds in eight departments of Haryana government and two departments of Municipal Corporation Chandigarh and Crest Chandigarh. In a statement, the CBI said that the search operations are carried out at residential premises of senior public servants of Haryana Cadre and a private consultant firm and its director in connection with irregularities committed and with regard to receipt of proceeds of crime. Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya participated in the 77th edition of Fit India Sundays on Cycle initiative in New Delhi this morning. Talking to the media, the minister said that cycling keeps the planet clean and offers a solution to the major problem of traffic congestion. Actor Vikrant Messi, who also participated in the Fit India Sundays on Cycle, described the initiative as incredible and said it has now become a movement. The Telugu Desam Party TDP has announced its three candidates for the Rajya Sabha elections scheduled to be held on the 18th of this month. TDP National President N. Chandrababu Naidu released the list of candidates, which includes industrialist Sana Satish, educationist and Bhashyam Educational Institutions Chairman Bhashyam Ramakrishna, and TDP Social Media Wing Chief Chintakayala Vijay. World Food Safety Day is being observed today globally. The day highlights food safety as a shared right and responsibility and serves as a powerful opportunity for collective action. Sharing a social media post on the occasion, Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda urged citizens to adopt healthy eating habits and contribute to building a fit and self-reliant India. In men's cricket, India were 544 for 8 in their first innings on day 2 of the one-off test against Afghanistan in New Chandigarh when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 386.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1:10 और 16 सेकंड्स हुए हैं। आइए सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इंद्रप्रस्थ चैनल और मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर। कार्यक्रम है एक ही फिल्म से। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में आप आनंद लेते हैं हिंदी सिनेमा की उन यादगार फिल्मों की जिन्होंने समय की कसौटी पर खुद को साबित किया। आज की फिल्म है 1962 की सुपरहिट रहस्य रोमांचक फिल्म 20 साल बाद। दोस्तों, 1960 के दशक में जब अधिकांश हिंदी फिल्में प्रेम, पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक विषयों पर आधारित होती थीं, तब एक ऐसी फिल्म आई जिसने रहस्य और सस्पेंस का ऐसा वातावरण रचा कि दर्शक अंत तक सीट से उठ नहीं पाए। ये फिल्म थी 20 साल बाद। फिल्म का निर्देशन किया था बीरेन नाग ने। दिलचस्प बात यह है कि ये उनके निर्देशन की पहली फिल्म थी, लेकिन पहली ही फिल्म से उन्होंने ऐसा कमाल किया कि फिल्म वर्ष 1962 की सबसे सफल फिल्मों में शामिल हो गई। फिल्म के निर्माता और संगीतकार थे महान गायक संगीतकार हेमंत कुमार। रहस्यपूर्ण माहौल को संगीत के माध्यम से जीवंत बनाने में उनका योगदान अतुलनीय रहा।

में मुख्य भूमिकाएं निभाई विश्वजीत, वहीदा रहमान, मदनपुरी, सज्जन और असित सेन ने। ये विश्वजीत की पहली हिंदी फिल्म थी और इसके बावजूद उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। दोस्तों, अब सुनते हैं इस फिल्म का वो गीत, वो कालजयी गीत जिसने इस फिल्म को अमर बना दिया। लता मंगेशकर की जादुई आवाज में रचा सजा ये गीत आज भी रहस्य और रोमांच का पर्याय माना जाता है। इसी गीत के लिए लता जी को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर और शकील बदायूनी को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: इस मधुर गीत के बाद लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से, और आज की हमारी सुपरहिट फिल्म है 20 साल बाद, और मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इसर आपके साथ आपके प्यारे इंद्रप्रस्थ चैनल पर। तो फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। कहानी एक परिवार की है जिस पर 20 साल पुराना अभिशाप मंडरा रहा है। गांव के लोगों का मानना है कि एक औरत की आत्मा ठाकुर परिवार से बदला ले रही है। ठाकुर और उसके बेटे की

0: रहस्यमयी मौत के बाद अब खतरा ठाकुर के पोते कुमार पर है। फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक प्यारा सा गीत जिसे गाया है महान गायक हेमंत कुमार ने।
1: नजरों से कह दो।

वाह, हेमंत कुमार की आवाज का जादू आज भी वैसा ही महसूस होता है। फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, आपको एक बार हमारा ईमेल पता हम आपको बता दें। आप इस मेल के ज़रिए हमें ये बता सकते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। तो हमारा ईमेल पता है ip.radiodelhi@gmail.com। तो इस पर आप हमें अपना मेल भेज सकते हैं। आपका मेल ज़रूर शामिल किया जाएगा हमारे इस प्रोग्राम में। और आपको आज की फ़िल्म की कहानी और उसके गीत कैसे लग रहे हैं, इस बारे में भी हमें मेल भेजकर ज़रूर बताएं। तो फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब कुमार गांव आता है तो उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कुमार का किरदार यहाँ बखूबी निभाया है विश्वजीत ने। इसी बीच कुमार की मुलाकात होती है गांव की चंचल, सुंदर और भोली भाली लड़की राधा से। राधा की भूमिका निभाई है हिंदी सिनेमा की उत्कृष्ट अभिनेत्री वहीदा रहमान ने। वहीदा जी ने अपने सहज अभिनय और खूबसूरत अभिव्यक्तियों से इस किरदार में जान डाल दी। धीरे धीरे कुमार और राधा के बीच

दोस्ती बढ़ने लगती है, लेकिन दूसरी ओर रहस्य भी गहराता जाता है। क्या है वो रहस्य? क्या सचमुच कोई आत्मा कुमार यानी विश्वजीत का पीछा कर रही है, या फिर कोई इंसान इस पूरे खेल के पीछे छिपा है? इन सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म 20 साल बाद का एक और लोकप्रिय गीत,

ये हम आपके मेल शामिल करने वाले हैं। पहला मेल हमें मिला है, पहला मेल हमें मिला है अजीत भवसार का। इन्होंने लिखा है, प्रिय आरजे जी, नंदा जी नमस्कार। तो आपको भी मेरा नमस्कार। मेल भेजा है, शामिल करें। कुछ आरजे मेल नहीं पढ़ते। सर, ऐसा नहीं हो सकता है। आप सब हम सभी का मेल शामिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। हाँ, समय की पाबंदी की वजह से हम कभी कभी कोई एक आध मेल छूट जाता है। ये मेल हमें मिला है वीरम गांव गुजरात से, और अजीत भवसार परिवार के सभी सदस्यों ने हमें ये मेल भेजा है। अगला मेल हमें मिला है संजय

ढींगिया जी का, इनके साथ है नमन और अपार ढींगिया जी। नमस्कार, आज की फिल्म 20 साल बाद के गीत और जानकारी पसंद आ रही है। लाजवाब प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। आपका भी संदेश भेजने के लिए धन्यवाद। अगला मेल हमें मिला है, ये हमारे अगले श्रोता हैं, अगले दोस्त हैं, धर्मेंद्र छिप्पा जी। कार्यक्रम एक ही फिल्म से नमस्कार आदरणीय मैडम जी, आपको भी मेरा नमस्कार। 20 साल बाद फिल्म के बारे में आपने बेहतरीन प्रस्तुति के साथ विस्तार पूर्वक जो बातें बताई, इनको बहुत पसंद आ रही हैं। इनको इनके नगमे भी, इस फिल्म के नगमे भी बहुत पसंद आ रहे हैं। धन्यवाद। ये मेल हमें भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिप्पा जी के साथ कपिल और पूजा परिहार ने हमें ये मेल भेजा है। अगला संदेश हमें मिला है संजय ढींगिया जी का, बागपत उत्तर प्रदेश से। इन्होंने भी आज की, इनको भी आज की जानकारी, फिल्म से जुड़ी जानकारी इनको पसंद आ रही है। लाजवाब प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। प्रोग्राम सुनने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और अगला संदेश हमें मिला है संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने ये मेल हमें भेजा है पिंगा वाला चौक गोरैया जलंधर से। तो हमें मेल भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपका, आप हमें अपने संदेश भेजते रहिए और हम आपका संदेश अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। और एक और मेल मैं ले लेती हूँ। स्वरण सिंह का मेल हमें मिला है गांव लोहागढ़ ठाकुरा वाला से। इन्होंने भी, इनको भी ये आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, इनको गीत भी बहुत पसंद आ रहे हैं। स्वरण सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे भी हमें मेल मिलते रहेंगे इसकी मैं उम्मीद करती हूँ। तो मेल के बाद हम फिल्म 20 साल बाद की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुमार सच का पता लगाने में जुट जाता है। अंत में खुलासा होता है कि ये किसी भूत प्रेत का मामला नहीं बल्कि रामलाल नाम के व्यक्ति की बदले की योजना थी। रामलाल की बेटी ही वो औरत थी जिसके साथ ठाकुर ने अन्याय किया था। अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए रामलाल ने ये पूरा रहस्य और डर का जाल बिछाया था। सच्चाई सामने आने के बाद रामलाल आत्मसमर्पण कर देता है और कुमार तथा राधा का मिलन हो जाता है। फिल्म के अंत में इस बात का पता चलता है कि ये किसी आत्मा का नहीं बल्कि एक इंसान के बदले का खेल था। यही बात इस फिल्म को खास बनाती है। फिल्म अंधविश्वास और वास्तविकता के बीच की दूरी को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की कहानी शॉर्ट में। यदि आपको इस फिल्म का पूरा आनंद लेना है तो इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक और प्यारा सा गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, 20 साल बाद फिल्म में हर कलाकार ने अपनी बेहतरीन कलाकारी से हम सभी का दिल जीता है। फिल्म के नायक विश्वजीत ने ऐसा प्रभाव छोड़ा कि दर्शक उनके प्रशंसक बन गए। फिल्म की नायिका वहीदा रहमान के अभिनय की जितनी तारीफ की जाए कम है। उनकी स्क्रीन उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि हर दृश्य में दर्शकों की नज़र उन पर टिक जाती थी। एक और रोचक बात यह है कि फिल्म की प्रेरणा प्रसिद्ध लेखक ऑर्थर कॉनन डायल के उपन्यास द हाउड ऑफ दी बास्करविल्स से जुड़ी मानी जाती है, यानी भारतीय परिवेश में प्रस्तुत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रहस्यमय कथा। अब बात करते हैं फिल्म के पुरस्कारों की। फिल्म 20 साल बाद के लिए शकील बदायूनी को सर्वश्रेष्ठ गीतकार के पुरस्कार से नवाजा गया। लता मंगेशकर को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका, केशव नंदा को सर्वश्रेष्ठ संपादन और SY पाठक को सर्वश्रेष्ठ साउंड रिकॉर्डिंग का अवार्ड मिला। इसके अलावा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक जैसी महत्वपूर्ण श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया। दोस्तों, फिल्म 20 साल बाद केवल एक रहस्य फिल्म नहीं थी, ये उस दौर की ऐसी फिल्म थी जिसने साबित किया कि बिना बड़े बड़े तकनीकी प्रभावों के भी दर्शकों को सीट से बांध कर रखा जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की फिल्म 20 साल बाद से जुड़ी जानकारी और उसके मधुर गीत। तो अपनी दोस्त नंदा इस्सर को अनुमति दीजिए, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी हिंदी सिनेमा की एक और यादगार फिल्म के साथ। और चलते चलते सुनते जाइए इस फिल्म का एक और मधुर गीत, और गीत के साथ साथ मैं कुछ संदेश भी शामिल करूंगी। तो इसी के साथ अपनी दोस्त नंदा इस्सर को विदा दीजिए। नमस्कार।

आपके संदेशों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अगला संदेश मिला है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगाधर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता और हिना का।

अगला मेल हमें आया है देवेंद्र भाटकर जी का नागपुर से। इन्हें फिल्म की कहानी अच्छी लगी और साथ में गीत भी अच्छे लगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा प्रोग्राम इतने ध्यान से सुनने के लिए।

एक और मेल मैं शामिल कर लेती हूँ। ये मेल हमें मिला है सुदर्शन मुखी, अनीता, सिमरन और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने हमें ये मेल भेजा है शांति नगर सोनीपत से। इन्हें भी आज की फिल्म की कहानी और गीत पसंद आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

अगला संदेश हमें मिला है अहमद फूल वाले जी का। इन्होंने ये भेजा है छोटी बलिया करजत मुंबई से, इनके साथ इनके परिवार के अन्य सदस्य। प्रसारक जी को दिल से आदाब, आदाब आपको भी नमस्कार। आज की फिल्म 20 साल बाद के सभी नगमे और कहानी हमें खूब पसंद आई, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा प्रोग्राम इतने प्यार से सुनने के लिए।

और संदेश हमें मिला है, उषा मोहन जी ने हमें ये संदेश भेजा है। नमस्कार, नमस्कार आपको भी मेरी तरफ से। आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, बधाई स्वीकार करें शानदार प्रस्तुति के लिए, धन्यवाद। ये मेल हमें भेजा है पीटीआई संसद मार्ग से। इसी के साथ आज का हमारा एक ही फिल्म से प्रोग्राम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। दोपहर के 1:40 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि साइकिलिंग से कुर्रे अर्ज साफ सुथरा रहता है और इससे ट्रैफिक जाम के बड़े मसले का हल भी फराहम होता है। वजीर मौसूफ ने आज सुबह नई दिल्ली में साइकिल पर फिट इंडिया संडे की 77वीं पहल में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मांडविया ने लोगों पर जोर दिया कि वो इस पहल में शामिल हों और फिट इंडिया का नजरिया अपनाएं।
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है। वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान है, तो क्यों न हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
0: भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 2-3 दिन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दूर दूर तक बारिश होने की पेशगोई की है। जुनूब मगरबी मानसून कुछ और इलाकों में आगे बढ़ गया है। मौसमियात महकमे के मुताबिक महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बाज़ हिस्सों, तमिलनाडु के बकिया हिस्सों और शुमाल मशरक रियासतों में अगले 2-3 दिन के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। दूसरी तरफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मगरबी राजस्थान और साहिली आंध्र प्रदेश में अगले 4 दिन के दौरान गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की गई है। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ वाहिद टेस्ट के आज दूसरे दिन भारत ने 8 विकेट पर 564 रन का बड़ा स्कोर बनाकर अपनी पहली इनिंग्स खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले भारत ने आज सुबह अपने कल के स्कोर 3 विकेट पर 368 रन से आगे खेलना शुरू किया। भारत के इस बड़े स्कोर में केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल की सेंचुरी का अहम रोल है। खास खास खबरें एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है। इसमें जामे कलीदी साझेदारी और बाहमी इश्तराक को मजीद वसअत देने के तौर तरीके खास मौजूआत हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने बैन अलाक्वामी सरहदों से मुत्तसिल इलाकों में माली लेन देन और अमलाक के लेन देन पर करीबी निगाह रखे जाने पर जोर दिया है। CBSE के 12वीं क्लास के इम्तिहान के पर्चों की दोबारा जाँच के लिए आज आधी रात तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। कौमी अवार्ड हासिल करने वाले मलयालम अदाकार सलीम कुमार का कोची में इंतकाल हो गया है। मौसमियात महकमे ने अगले 2-3 दिन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दूर दूर तक बारिश होने की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: resulting in casualties among Lebanese armed forces personnel. Diplomatic initiatives aimed at halting the conflict continue, although significant obstacles remain. Discussions focus on preserving the ceasefire, ensuring the security of maritime navigation through the Strait of Hormuz, sanctions-related issues, and the future of billions of dollars of frozen Iranian assets held abroad. This is Vinod Kumar for Akashvani News, Dubai.
1: Just in, Prime Minister Narendra Modi has expressed sorrow at the passing of veteran actor Saleem Kumar. In a social media post, the Prime Minister said that the actor made a mark with his versatility and memorable performances across a wide range of roles over the course of his distinguished career. Mr. Modi said that his thoughts are with the actor's family and countless admirers in this hour of grief. In cricket, India have declared their innings at 564 for 8 on day 2 of the one-off test against Afghanistan in New Chandigarh. In response, Afghanistan were 28 for 1 in their first innings when reports last came in. Prime Minister Narendra Modi has also congratulated the Indian women's football team on winning the SAF Women's Championship 2026. In a social media post, he said that the team played excellently through the tournament. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India-Indonesia Joint Commission meeting underway in New Delhi. Comprehensive strategic partnership and ways to further deepen bilateral cooperation under review. Home Minister Amit Shah calls for close watch on financial and property transactions along international borders. CBSE to close Class 12 re-evaluation application window tonight. National award-winning Malayalam actor Saleem Kumar passes away in Kochi. IMD forecasts widespread rainfall across the country in next 2 to 3 days. And in cricket, India declare first innings at 564 for 8 against Afghanistan in one-off test in New Chandigarh. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
3: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
4: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों

0: स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
2: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम हैं।
3: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रूपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रूपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रूपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के

0: खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
1: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केश्म द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं।

वाह, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। लता द्वारा गाया ये एक अमर गीत, जिसमें बीना ने अनारकली और प्रदीप कुमार ने सलीम की भूमिका निभाई थी। दो संस्करणों में प्रस्तुत किया गया था। सी रामचंद्र ने इसकी धुन तैयार की थी और राजेंद्र कृष्ण ने इसके बोल लिखे थे। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। अलविदा का मुखड़ा बेहद खूबसूरती से गाया गया। साथियों, आज आप सुन रहे हैं एक ही कलाकार कार्यक्रम में बीना रॉय के बारे में, अपने मनपसंद चैनल इंद्रप्रस्थ से। साथियों, बीना रॉय का जन्म 4 जून 1931 को लाहौर, यानी जो अब पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। और बीना रॉय का असली नाम कृष्णा सरीन था। अगर बात करें उनके फिल्मी करियर की, तो इसकी शुरुआत बड़ी संघर्ष से भरी रही, क्योंकि उनके परिवार में फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, जैसा कि हम अधिकतर परिवारों में देखते हैं। लेकिन कॉलेज के दिनों में उन्होंने एक टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, लेने की जिद करी, यहाँ तक कि भूख हड़ताल भी कर दी और घर वाले आखिर मान ही गए। यहाँ हम आपको बता दें कि वो प्रतियोगिता जीत कर 25,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार भी ले आई। आप समझ सकते हैं उस समय 25,000 रुपये की क्या कीमत रही होगी। जी हाँ, और इतना ही नहीं, किशोर साहू की फिल्म काली घटा जो 1951 में आई, उसमें मुख्य भूमिका भी निभाने का मौका शामिल था। इस तरह उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ, तो कामयाबी और शोहरत भी मिलती चली गई।

साथियों, ये मधुर मिलन हो रहा है हमारा इंद्रप्रस्थ चैनल के माध्यम से कार्यक्रम एक ही कलाकार में। और हमारी आज की कलाकार हैं अपने जमाने की बेहतरीन अदाकारा बीना रॉय। साथियों, बीना रॉय ने अपने 18 साल के करियर में लगभग 28 फिल्मों में काम किया, जिनमें से कई ऐतिहासिक और क्लासिक साबित हुई। आपने बीना रॉय की कौन कौन सी फिल्में देखी हैं, हमें लिख भेजिए उन फिल्मों के नाम अपने पसंदीदा उसी फिल्मों के गीतों के साथ। हो सकता है आज के कार्यक्रम में सबसे पहले उन्हीं श्रोताओं से हो शुरुआत। तो भेजने के लिए ईमेल एड्रेस तो आप सबको पता ही है, फिर भी बता देती हूँ एक बार दोबारा, ipradiodelhi@gmail.com। तो बने रहिए अपनी दोस्त

आशा करते हैं आपके दिलों को भी करार पहुंचा होगा इस गीत को सुनकर, क्योंकि इतने खूबसूरत ब्लैक एंड वाइट ज़माने के आज आपको गीत सुनने को मिल रहे हैं, जिसकी फरमाइश आप हर दम करते हैं अपने मनपसंद चैनल इंद्रप्रस्थ पर किसी न किसी कार्यक्रम के दौरान। और आज कार्यक्रम है एक ही कलाकार, जिसमें हम बात कर रहे हैं बीना रॉय की। साथियों, गीत से पहले हम हमारी आज की कलाकार बीना रॉय की कुछ बेहतरीन फिल्मों की बातें कर रहे थे, तो यहाँ सबसे पहले हम जिक्र करना चाहेंगे उनकी फिल्म अनारकली का, जो 1953 में आई थी। इस फिल्म में शहजादा सलीम के साथ उनकी अनारकली की भूमिका अमर हो गई और इसके गाने आज हम सब की जुबान पर है। और जहाँ तक मैं स्क्रीन पर देख रही हूँ, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इस फिल्म के लिए फरमाइश भेजी है आप सभी ने। और अगर आपको याद हो तो कार्यक्रम की शुरुआत भी इसी फिल्म के एक खूबसूरत से गीत के साथ हमने करी थी। लेकिन इससे भी पहले उनकी एक और फिल्म घूंघट की बात करें, जो 1960 में आई। इस फिल्म में उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो वहीं फिल्म ताजमहल में प्रदीप कुमार के साथ उनका मुमताज महल का किरदार काफी लोकप्रिय हुआ। आइए इस बात पर यहाँ एक उन्हीं की फिल्म का लोकप्रिय गीत सुनना तो बनता है ना।

वादे के मुताबिक हम आ गए हैं गीत के बाद एक बार फिर और जुड़ चुके हैं आपसे कार्यक्रम एक ही कलाकार में। तो साथियों, हमारी आज की कलाकार बीना रॉय ने अपनी पहली फिल्म काली घटा के सह कलाकार और दिग्गज अभिनेता प्रेम नाथ से शादी करी। साथियों, अपने अभिनय करियर की चरम सफलता के बाद उन्होंने 1968 में फिल्मों को अलविदा कह दिया और एक शांत निजी जीवन बिताया। 78 वर्ष की उम्र में 6 दिसंबर 2009 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनको हमारा नमन।

साथियों, हमारा जिया तब लगता है जब हम आपके मेल अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और आपकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि आपको कार्यक्रम सुनकर कैसा लग रहा है। तो आज के कार्यक्रम में हमारी जो सबसे पहली ईमेल आई है वो आई है गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और इनके सभी साथी। और अगली मेल हमारी जो आई है वो आई है हमारी सोमदत्त जी की, नाभा जिला पटियाला पंजाब से। सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु, और इन्होंने किसी फिल्म का नाम लिखा है। तो साथियों, ये फिल्मी प्रोग्राम नहीं है, ये एक ही कलाकार प्रोग्राम है। तो अगर हमारी ये कलाकार इस कार्यक्रम में, इस गीत में होती तो हम ज़रूर सुनवाते, तो शायद आपने कार्यक्रम को ध्यान से नहीं सुना। और अगली ईमेल आई है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जी की, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, खुश रहो खुशियाँ बांटो के स्लोगन के साथ। तो भाई आप भी खुश रहिए। और अगली ईमेल आई है कार्यक्रम एक ही कलाकार में, हमारी ये साथी हैं भोपालगढ़ राजस्थान से। पहले हम साथी का नाम बता दें, धर्मेंद्र छिप्पा, कपिल छिप्पा, पूजा परिहार जी। और बकायदा कार्यक्रम के साथ बारे में लिखा है, दौर के बेहतरीन दिग्गज कलाकार बीना रॉय पे लिखा, अभिनेत्री बीना रॉय की जानकारी के बारे में इन्होंने ढेर सारी जानकारी दी है। तो इसके बारे में हमें जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपने कार्यक्रम को इतने ध्यान से सुना, इतने गौर से सुना। तो आप सभी साथियों का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और अगली जो ईमेल है वो है मसूर हसन जी की, ये है गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम और इनके साथी। अगली ईमेल आई है गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की, और ये लिखते हैं शुभ दोपहर, नमस्कार जी, आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी, गाने, जानकारी और रोचक किस्से बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, उत्तम और बेहतरीन प्रस्तुतिकरण के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो धन्यवाद साथी जो आपने इतने अच्छे से कार्यक्रम को सुना और उसकी सराहना

ना की। आपकी सराहना, आपकी प्रशंसा हम लोगों में उत्साह वर्धन करती है। और अगली ईमेल आई है वड़िंग खेड़ा से, पंजाब से आप हैं, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा माफ़ कीजिएगा। और ये अगले साथी हैं हमारे छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से, राजेश सेन, सुरेखा सेन, कार्यक्रम एक ही कलाकार, आज के कलाकार हैं बीना रॉय, और फिल्म ताजमहल गीत जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और इसके बारे में आपने जानकारी लिखी है तो अच्छा लगा ये जानकारी पढ़कर जानकर। और अगली जो आई है ये है, ये ईमेल मैं शामिल कर चुकी हूँ, गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, तो धन्यवाद साथी। और ये आई है नवी हसन जी की, लेकिन आपने कहाँ से भेजी है ये नहीं लिखा है। अगली ईमेल आई है हमको सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, और इन्होंने भी थैंक्स लिखा है और बहुत सारी विशेस लिखी हैं, थैंक यू सो मच आपका। और इसी के साथ आई हैं हमें दिग्दर्शन गौड़, स्वर्ण सिंह, हीरामणि, डीकेपी परिहार और बहुत सारे साथियों की, तो आप सभी साथियों का तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं। और इसी गीत के साथ अपनी दोस्त तृप्ति जौहरी को दीजिए इजाज़त।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं अपने ब्रज माधुरी कार्यक्रम में कि अधिक मास चल रहे होए या को हमारे ब्रज धरा में लौंद को महीना भी कहे हो जाए।
1: जी हाँ चंपा, ये जो पुरुषोत्तम मास है या के ब्रज में देवालयी संस्कृति के और लोक के अपने ऐसे स्वरूप हैं, अपने ऐसे आनंद हैं कि जिनको देखवे के ताई या समय देश ते विदेश ते श्रद्धालु ब्रज की ओर चले आ रहे हैं, आकर्षित है रहे हैं।
0: देखो नृत्य गोपाल जी, ये भी बात कही गई है कि हमारे ब्रजराज श्री कृष्ण को ना ये सबसे प्यारो महीना है पुरुषोत्तम मास। अगर हम वल्लभाचार्य जी द्वारा स्थापित पुष्टि मार्ग परंपरा की बात करें तो वहाँ पे तो देखो या को जो सेवा प्रणाली का है, यानी कि जो सेवा की समय सारणी है, वो अपने आप में ना बड़ी अद्भुत और विलक्षण है।
1: जी हाँ चंपा, आप पुष्टि मार्ग की बात कर रहे हो, या को स्वरूप यदि ब्रज में देखो जाए तो या समय आप जाओ यति पुरा, जाकू जतिपुरा कहें, गिरिराज जी की परिक्रमा में है, और दूसरे आपको देखना हो तो गोकुल में चले जाएं।
0: और नृत्य गोपाल जी, हम देख रहे हैं कि यह अधिक मास के महीना में ना पुष्टि मार्ग की जितनी भी पीठ हैं उनमें विशेष सेवा हो रही है, नित्य नूतन मनोरथ हो रहे हैं, झांकी हो रही है, श्रृंगार कीर्तन हिंडोला और फूल मंडलीन के जो विशेष आयोजन है ना, वो नित्य अष्टयाम सेवान में देखने को मिल रहे हैं।
1: जो लोग ब्रज परिक्रमा करते हुए कामवन जा रहे होंगे, वे वहां पे देखेंगे कि वहां पे गोकुल चंद्रमा जी और मदन मोहन जी के रूप में दो पीठ विराजित हैं, उनमें नित नवीन आयोजन है रहे हैं।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, यही लिए तो कहो गयो है, ब्रज समुद्र मथुरा कमल, वृंदावन मकरंद, ब्रज वनिता सब

0: पुष्प हैं मधुकर गोकुल चंद। तो हम देख रहे हैं कि पुष्टि मार्ग में जो लाड लड़ाई वे की परंपरा है, वहां में ना भक्ति और प्रेम को जो अनूठो समागम है वो देखवे को मिल रहे हो है। वहां पे देखो प्राकृतिक शीतलता प्रदान करवे के काजे खसखस के बंगला, चंदन सेवा, शीतल भोग और मिट्टी के पात्रन में जल सेवा और फब्बारे चल रहे हैं जाते फुहारे के में। गेंदा गुलाब जूही चंपा चमेली के जो फूल हैं उनकी जो सेवा है वे निवेदित करी जा रही हैं। तो देखो मंगलाते लेके शयन तक यानी कि पूरे दिना के जो प्रहर हैं उनमें मंगला श्रृंगार ग्वाल राजभोग उत्थापन भोग संध्या आरती और शयन इन सब अष्टयाम सेवा प्रणाली में ना विशेष झांकी है वे अधिक मास में सजाई जा रही हैं।
1: चंपा जी जीवन शैली में समय को महत्व यदि देखना है तो जहाँ अष्टयाम की आप बात कर रहे हो वह जीवन शैली को एक स्वरूप है।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी यही लिए तो हर कोई गा रहे है आयो है अनूप आनंदित मास महा पुरुषोत्तम प्यारो।

0: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये भक्ति रचना सुन रहे हते तो नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: या अधिक मास के पावन महीना की तो जितनी बात करो ना उतनी ही कम है। तो देखो, हमने ये देवालयी संस्कृति की तो बहुत बात कर ली, अब जो हमारे यहाँ अधिक मास में लोक की परंपरा है तो उन परंपरान की ओर अपने भैया बहनान को ले चले।
1: जी हाँ चंपा, बहुत जरूरी है। पर आपको एक बात बता दूं, ये जो देवालयी संस्कृति और लोक संस्कृति को आपस में ऐसा समन्वय है कि कई बार तो ये देखो और या को निर्णय ही मुश्किल है जाए कि ये कौन सी जगह से ज्यादा प्रभावित भई होगी।
0: तो नृत्य गोपाल जी, कछु ऐसी चर्चा परिचर्चा की हो रही, आज अपने भैया बहनान को ले चलें।
1: चलो ना जल्दी ले चलो।
0: तो आओ प्यारे भैया बहनाओं, अब हम आपको सुनवाए रहे हैं ये परिचर्चा, जाको विषय है ब्रज में अधिक मास की लोक परंपराएं। यह परिचर्चा में प्रतिभागिता कर रहे हैं डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर प्रगति शर्मा और विभू कृष्ण भट्ट जी, और याको संचालन कर रहे हैं नृत्य गोपाल जी।
1: आज की परिचर्चा में सहभागिता के ताई हमारे विशेषज्ञ आमंत्रित हैं, विभू कृष्ण भट्ट जी, डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा जी और डॉक्टर प्रगति शर्मा जी। आप तीनों को स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।
2: जय जय श्री राधे।
3: जय जय श्री राधे।
4: जय जय श्री राधे।
1: श्रोताओ, अधिक मास चल रहे हो है या को पुरुषोत्तम मास कहो जाए, और यह बहुत विशिष्ट है और ब्रज में या की विशिष्टता अनूठी है। विभु कृष्ण भट्ट जी, ये जो अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, या को अगर हम सांस्कृतिक रूप से एक स्वरूप देखें, यह कैसे निर्मित हुए, क्यों या को पुरुषोत्तम मास कहो गयो है?
3: सबसे पहले नृत्य गोपाल भैया, राधे राधे, ये पुरुषोत्तम मास है ना, पहले तो हमें ये समझना है कि ये श्री नारायण हरि का मास है। और यह मास की विशेषता ये है कि ये 3 वर्ष में एक बार आवे, और ये आवे तो या में 30 दिन आते लेके, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन और कम से कम 27 दिन हो में। 27 दिन आते कम होंगे तो अधिक मास ना के हो जाएगा, और 30 दिन आते ऊपर होंगे तो ये पुरुषोत्तम मास ना हो।
1: तो ये आवे क्यों है?
3: ये आवे ऐसे है भैया कि आपके संग जो स्थिति वो ही है कि फिर आध्यात्म की बात आ जाए, नृसिंह के प्राकट्योत्सव पे आ जाओ, जो हिरण्यकश्यप को ने मांगो वरदान ब्रह्मा थे कि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना कोई तिथि थे मरूं, ना बार थे मरूं, ना महीना में मरूं। तो भैया 12 के जब 13 महीना होंगे तभी तो वो मरेगा।
1: अच्छा डॉक्टर प्रगति, बहुत अच्छा सो प्रश्न कर दियो है और कितनो सहजता सो बता दे कि ये जो 13वां महीना है यही में मरूंगा, ये कोई खास ब्रज में या कि कोई अलग सो या कैसी मान्यता है?
2: देखो नृत्य गोपाल जी, हम यहाँ के आध्यात्मिक पक्ष को अगर देखें तो आपको बताऊं, चंद्र राशि के कैलेंडर को और सूर्य राशि के कैलेंडर को व्यवस्थित करने के लिए जो दिनन को अंतर आ रहे हो ना
1: जी,
2: जाए व्यवस्थित करने के लिए ये एक नया महीना तैयार किया हो गए। तो ये पहुंचो है श्री हरि विष्णु के पास, तो उन्होंने कहा है कि जब तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है तो तुम्हारा मैं स्वामी हूँ, फिर इसका नाम पुरुषोत्तम मास करके उन्होंने बताया है।
1: डॉक्टर राजेश जी, ये जो दोनों हमारे वक्ता ने एक संकेत करो है ना नरसिंह भगवान जी को, और ब्रज में बहुत सारे श्रद्धालुओं में बोले यहाँ ब्रज में या अवसर पे नरसिंह लीला को विशेष महत्व हुए।
4: नरसिंह लीला तो देखो हर साल आवे, लेकिन अधिक के महीना में पुरुषोत्तम मास जो होए वहां में नरसिंह के प्राकट्य को विशेष महात्म है। और ब्रज में एक बड़ी विशेष परंपरा रही हमारे मथुरा और वृंदावन में, या अवसर पे नरसिंह लीला

0: कुंभकर्ण को आयोजन किया जाए। और यहाँ अटखंबा पे, वृंदावन में, केसी घाट में और भी गोपीनाथ बाजार में कई जगह पर नरसिंह भगवान के बड़े प्रसिद्ध मंदिर है और मां नरसिंह को प्राकट्य हुए और लीला को अनुकरण हुए और वह लीला अनुकरण में पूरा जो शहर है बाकी गली रंगमंच है जाए।
1: विभु जी, ये जो डॉक्टर राजेश कह रहे हैं या में दो चीज एक संग कहीं समाहित है गई है, एक है आध्यात्मिक यानी देवालय संस्कृति को प्रभाव और दूसरा है वाको लोक संस्कृति परक स्वरूप। तो ये जो देवालय संस्कृति को जो स्वरूप विकसित भयो यानी ब्रज क्षेत्र के देवालय संस्कृति में अधिक मास कैसे मनायो जाए या पे तनिक बात करें।
2: नृत्य गोपाल जी, जो ब्रज में देवालय संस्कृति है और वहां में जो पुरुषोत्तम मास अधिक मास है तो यहाँ में वर्षोत्सव के जितने भी उत्सव है इनकी पुनरावृत्ति तो हो गई है, लेकिन वो स्वरूप, वो जो उत्सव है अधिकी के जो वर्षोत्सव में नहीं कर सके वो अधिकी के उत्सव भी या में सहज रूप से शामिल कर लिए जाए।
1: तो यानी जो हमारे मंदिर हैं उनमें ये वर्ष भर के जो उत्सव हैं वो सब मनाए जाएं। डॉक्टर प्रगति, यदि हम ये कहें कि ये तो देवालय संस्कृति है लोक में या अधिक मास को, जैसे हम तो कहते हैं कि ब्रज में बोले आप तो लौंद को महीना चल रहे हो, अब ये जो लौंद को महीना है लोक को कहां स्वरूप है?
3: देखो, लोक में देवालय से ज्यादा लौंद को परिचय है। लौंद में ये स्थिति है कि मनसा पूजी जो होए ऐसो मानो जाए कि जो हम एक चीज दान करेंगे वाको दोनों तिगुनो फल मिलेगा अधिक में
1: जी।
3: ये लोक में व्याप्ति है
1: जी।
3: तो जो कभी दान ना करे वो अधिक में दान करे और खास तौर करके ऐसा होए कि जैसे नए बच्चा की कोई की सगाई हुई है तो पियर पक्ष से बहू के यहाँ से त्योहार के रूप में अधिक मास जरूर आवे,
1: यानी जैसे और त्योहार आवे तो ये यहाँ में जरूर आवे।
3: हाँ, सगाई के तुरंत बाद अधिक पड़ेगा तो अधिक आएगा। ब्याह का इंतजार नहीं करेंगे कि ब्याह के बाद हम त्योहार देंगे
1: जी,
3: अधिक जरूर आएगा,
1: अधिक जरूर हाँ। आएगा। डॉक्टर राजेश, ये जो लोक को स्वरूप विकसित हुए के या में लोक की जितनी मान्यताएं हैं, और बहुत बढ़िया बात कही है कि आप देवालय संस्कृति में कछु करें, लेकिन प्रगति जी ने जो बात कही है जो हमारे लोक में व्याप्त है कि लोक में लौंद को ज्यादा स्वरूप है। हम तो देखें कि जब हमारे गामन में लौंद के महीना में बोले लौंद भगाएंगे है ना, और लौंद को महीना है तो बोले 31 लोगन को या 30 लोगन को कछु ना कछु हम अपनी ओर से भोजन व्यवस्था कराएंगे। ब्रिज में भोजन व्यवस्था की एक खास परंपरा है, तनिक बाकी हुई चर्चा कर दे डॉक्टर राजेश।
0: भोजन परंपरा की तो है, लेकिन एक बात मुझे बड़ी जरूरी स्मरण है रही
1: जी
0: कि लोक और ब्रज दोनों मिलाए के ब्रज को खास बना दे, दोनों मिलके ब्रज को विशेष बनाए दे। जो नरसिंह लीला की चर्चा हमने करी कि वो लोक के धरातल पे तो है रही है, लेकिन मंदिरन में हूँ जैसे राधा दामोदर हैं, श्याम सुंदर हैं, तो मैं वहां देखूं समाचारन पत्रन में और सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से दर्शन होए कि वह नरसिंह जी को जो पारंपरिक जो चेहरा है, जो स्वरूप है, वा स्वरूप में ही ठाकुर जी के दर्शन होए। और या के संग में जो प्रतिदिन को जो दैनिक जीवन चर्या को क्रम है लोक जनमानस को कि यमुना स्नान कर लिए परकम्मा दे आए और संध्या के समय जो ठाकुर जी की झांकी होए, होरी दिवारी रक्षाबंधन सलून और ये अन्नकूट जे सब तो अपनी जगह है ही है, ये तो जग प्रसिद्ध त्योहार है, लेकिन जो मां लीलान को मनोरथ हुए और वह मंदिर की उपासना परंपरा के अनुरूप कैसे पनगट की लीला है रही है और कैसे वो जो है ब्रज की जो लोक की लीला है ना, राधा बनी है न्यायाधीश और अंता पुरुष कप्तान पकड़े गए कृष्ण भगवान, तो बाको कैसे वो सखीन के बिगड़े और वा के माध्यम से सजीव प्रस्तुतिकरण कर दे और हर रोज एक नई लीला, हर रोज एक नई झांकी। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये जैसे बच्चन की परीक्षा हुई ना फलाने तारीख को फलानी परीक्षा, ऐसे एक जो है वो कैलेंडर सो निकल जाए महीना भर, जे भट्टी जी के यहाँ को कैलेंडर है, जे राधा वल्लभ में फलाने दिन होगो, जे यशोदा नंदन में होगो, बांके बिहारी में फलाने दिन जे होगो, सप्त देवालय में फलाने दिन जे होगो, और हर कैलेंडर में उत्सवन की भिन्नता होगी लेकिन सबरे के सबरे उत्सव प्रियालाल को समर्पित है।
1: वाह, बहुत सुंदर है। विभु कृष्ण जी, देखो जी, मैं तो बाहर से जा रहे हूँ अब, क्योंकि लौंद को महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास कछु कह लो आप, अब हम तो वृंदावन में आए हैं, दर्शन करवे आए हैं, तनिक हमें तो, हम दर्शक हैं, हमें तो आप यूँ बता दे, देखो जी आप आए हो, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं वो एक अपेक्षा लेके आ रहे हैं कि हम वृंदावन जा रहे हैं अधिक मास पुरुषोत्तम मास में कहाँ देखें, कहाँ दर्शन करें, कहाँ तो यहाँ के ब्रजवासी मना रहे हैं और कहाँ यहाँ के मंदिर मना रहे हैं, बताओ तो सही।
2: देखो नित्य गोपाल जी, ब्रजवास कर रहे हो, ब्रज में आए हो, अधिक मास में आए हो, सबसे पहले तो लौंद भगाओ भैया, कहाँ से की थारी और 33 पुआ ले आओ।
1: वाह, बहुत सुंदर।
2: अगर लौंद के महीना में कहाँ से की थारी और 33 पुआ ना लाए
1: हाँ।
2: तो फिर लौंद ना भाग रो
1: हाँ।
2: या हमारे जो पुरुषोत्तम मास को महत्व है, जो भोग को

0: महत्व है, जो दान का महत्व है, जो एक सुहागन को दे वो केवल कांसे की थारी में 33 पुआ को ही महत्व है। और यही जो मूल रूप से पुरुषोत्तम मास में किया जाए, एक यही वस्तु। बाकी के दान तो एक ऐसी वस्तु है कि चाहे जितनी दो, कहीं कोई वस्तु की बनाना है, लेकिन बाकी संग एक चीज हो ना जो एक सबसे ज्यादा प्राथमिक जो हो है, वो है कांसे की थारी और 33 पुआ। अपनी शक्ति के अनुसार, जाकी जैसी शक्ति वाके वैसे पुआ। और हम तो हैं भैया ब्रजवासी, हमारे पास तो पुआ ही पुआ है।
1: जी हाँ विभु कृष्ण जी, श्रोतो बड़ी मजेदार सी बात है जो चीज जो चर्चा अभी विभु जी ने करी है कि ब्रज में एक खास परंपरा है जाकी लोक की हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा मान जाए कि कांसे की थाली। अब देखो या को व्यावसायिक स्वरूप हो है सके और या को सांस्कृतिक स्वरूप हो है सके आध्यात्मिक स्वरूप हो है कि हमें 33 पुआ धर के। अब ये जो 33 पुआ धर लिए कौन को देनो है डॉक्टर प्रगति, ये कौन कौन को जाए ये बात है बता दो।
2: देखो मुख्य रूप से तो सुहागिन स्त्री एक दूसरे को जाए दे में
1: जी,
2: लेकिन हमारे ब्रज में नंद भांजिन को प्रायोरिटी पे रखो जाए
1: जी, यानी सामाजिक संरचना में जेठानी घूम रही है, सास घूम रही है, हमारी जो ननद है, हमारी भांजी है, ये जो संबंध है उन संबंध को पुष्ट करवे को एक तरीका है।
2: और ब्रज में ही अगर बेटी ब्याही है तो सबसे पहले वही के जाएंगे पुआ।
1: डॉक्टर राजेश आपको कछु मन कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ कोई बात आपके हृदय में घुमड़ रही कि अधिक मास के बारे में ये बात ना कहिए, बता दो ना।
3: उत्सव तो है रहे, होली दिवाली रक्षाबंधन सबकी हमने चर्चा करी, लेकिन गर्मी के महीना में ये लौंद पड़ रहा है तो जल के कितने उत्सव होंगे और अन्य उत्सवन को कितनी वरीयता दी जाएगी। और इनके यहाँ भट्टे जी की जो हवेली में पीढ़ी दर पीढ़ी जो उत्सवन का क्रम है, फूल बंगलान की तो हमने बात कर ली, मां खसखानो हो मां कली को श्रृंगारो हो, खसखानो मतलब खस की तटिया बना के ठाकुर जी में विराजमान है जाए, अधिक के महीना में ये सब उत्सव हो। तो मैं तो इनते ही, और मैं तो चाहूं कि यह श्रोता जितने हमारे सुन रहे हैं वो इनके मुखारविंदते में एक बार और अगर सुनूं तो बड़ा अच्छा लगेगा कि जल के उत्सव कितने हैं रहे गर्मी के दौरान और उनके जल
1: विभूजी तनिक बता दे श्रोतान को।
0: देखो नृत्य गोपाल जी, ये लौंद का महीना है ना, ये कोई जाको निर्धारण ना है कि ये कौन से माह में आ जाए
1: जी
0: और कौन से समय आवे
1: जी।
0: अगर ये फागुन में आएगा तो भैया होली 40 के बजाय 30 और बढ़ा है तो 70 दिना की होली है गई हमारी तो
1: जी।
0: अगर ये सावन में आएगा तो 30 दिना को सावन 30 को अधकी को और है, 60 दिना को है। ऐसे ही जब ये ग्रीष्म ऋतु में आवे तो बामे दृष्टि देखी जाए कि ये जल यात्रा से पहले आ रहा है जल यात्रा के बाद आ रहा है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि जितने भी जल उत्सव है वो जल यात्रा के प्रथम नौका को जो उत्सव है वो जल यात्रा के दिनाते ही प्रारंभ होए
1: जी।
0: तो दिवाली परंपरा में सेवा में या चीज को विशेष ध्यान दियो जाए,
1: यानी जब जल को विशेष उत्सव होगा
0: अगर पुरुषोत्तम मास ये जल यात्रा के पहले आएगा
1: हाँ।
0: तो जल को उत्सव तो होगा क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, लेकिन बाकी वीरता नहीं होगी। लेकिन ये जल यात्रा के बाद होगा तो 30 दिना में प्रयास ये रहेगा कि 10 उत्सव जल के हों।
1: जी हाँ श्रोताओ, ये और अभी जो लोग आ रहे हैं ब्रिज में आ रहे हैं घूमबे, जैसे हम कल गए तो देखो कि वहाँ बिहारी जी के मंदिर के आगे वहाँ एक नोटिस लगी भई है कि वैसे तो 108 दिन फूल बंगला हों पर क्योंकि ये 30 दिन को लौंद मास अधिक मास है तो 138 दिन तक अब की बार फूल बंगला बन रहे हैं, ऐसी सूचना हमने कल ही पढ़ी बिहारी जी के मंदिर पे। तो ये जो खास चीज है कि ये जो 30 दिन अधिक के हैं वह अधिक के दिनान में कछु अधिक ही हो है, और ये अधिक लोक में और कैसे है जाए, कोई बात याद आ रही है प्रगति जी तो बता दो।
2: देखो स्वर्ण जैसो दान है वो आदमी बहुत कम करे, यदि अधिक में स्वर्ण को एक कांटे के बराबर भी दान और एक ग्राम भी दान करोगे तो वो तिगुन होए के मिलेगो,
1: या की संभावना कम हो
2: या ऐसा से भी लोग दान कर सके।
0: नृत्य गोपाल जी हम सहमत ना है
1: जी।
0: देखो महाराज, आज के जमाने में दान एक ऐसी वस्तु है कि ये सकाम भावते हो, और सकाम भाव के लिए पुरुषोत्तम मास से उत्तम कोई मास ना है, चाहे वो लौंद को भगाना हो या सगाई हैवे के बाद त्योहार ही रहनी हो।
1: जी हाँ, यानी प्रत्येक मंदिर में अधिकी के उत्सव है रहे, और उन उत्सवन में हम सपरिवार जब शामिल हो, सब पूरे कहूं ते कोई आय के सपरिवार शामिल हो, वाको आनंद कछु और ही हुए है। समय की अपनी सीमा है और हम देख रहे हैं कि समय अब संकेत कर रहे हो है, पर डॉक्टर राजेश ये जो परंपरागत जो अधिक मास के स्वरूप हैं, उन स्वरूपन में कोई ऐसी चीज आपको देखिए वे को मिल रही है कि ये परंपरागत में थोड़े परिवर्तन आ रहे हैं?
3: परंपरागत में तो परिवर्तन तो कछु विशेष नहीं दिख रहे, परंपरा

0: अपनी तरह से चल रही है, परकम्मा है, जमुना स्नान है, देव आराधन है, देव दर्शन है, दीपदान है, सबरे काम हो अच्छे थे। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगे जा अधिक के महीना की
1: जी,
0: के साल भर में जो उत्सव पड़ रहे हैं बिन में थोड़ा थोड़ा गैप मिल जाए, थोड़ा थोड़ा अंतराल होवे
1: जी जी,
0: तो जो मंदिर तो साधन संपन्न हुए
1: हाँ।
0: और मंदिर सामान्य रीति रिवाज के विचार चल बे बा रहे हैं, सीमित संसाधन में चल रहे हैं, तो माँ अब नित्यानी को रोज उत्सव होना है, रोज संज्ञा की झांकी होनी है, रोज दर्शन होना है, रोज एक कह में ना नित्य उत्सव नित्य मंगलम, तो जो संसाधन के अभाव में जो मंदिर चल रहे हैं महाबिल लोगन की तैयारी को जो मोर परदृश्य दिखे, हम मंदिर परंपरा से जुड़े भाई हैं, तो वो पहले ही जो है अपनी एक योजनाबद्ध कर लें कि जी भैया इतने दिन महीना के और अब हमें काका इनमें कर लेनो है
1: जी।
0: तो वो कैसे जो सखीन के छोटे बड़े स्वरूप लीला झांकी हर मंदिर में हो जाके लिए एक बड़ा प्रचलित शब्द जाते के ताम झाम
1: जी,
0: तो वो अपने ताम झाम को टटोल ले में
1: जी।
0: और वह ताम झाम के हिसाब से बोला कालिया नाग लीला दिखानी है, पनगट लीला दिखानी है, फलानी लीला हमें दिखानी है, तो बस लीला के हिसाब से पूरे ताम झामन को निर्धारण कर ले में और कैसे कैसे वो ही एक सखी है, वो ही चार पांच सखीन के विग्रह हैं इनके पास
1: जी।
0: में अलग अलग जो उत्सव पे ही दिख रहे हैं, मूल विग्रह तो अपनों है ही है, वो लीला में केवल जो है मुख्य भूमिका ये रहे कि वो तो दर्शनार्थ जो है मध्य में सिंहासन पे विराजे।
1: जी
0: अब वो गिनती की चार पांच सखी जो है देखो ब्रजवासी इनको जो आनंद और भाव है
1: जी,
0: वो ही सखी 300 दिन अलग अलग रूप में अपनी जो है पूरी लीला ने ठाकुर जी की जितनी लीला है और वो ही हर रोज ऐसा लगेगा जितना नया आनंद है।
1: वाह बहुत सुंदर,
0: तो ये जो वैविध्य है
1: ये
0: और
1: बहुत
0: ये जो उत्साह है उछा है
1: जी।
0: और जो पिछले सैकड़न सालन थे वो जो है ये प्रस्तुतिकरण अधिक के महीना में ज्यादा देखने को मिले।
1: पर एक बात जो मेरे हृदय में अभी चल रही है और जाको संकेत आपने करे पर वो बात पूरी शायद ना भाई, ये जो अधिक मास है या को संबंध पूरी तरह से प्रकृति सो है, तो ये जो प्रकृति को संबंध है या और चलते चलते बताए दो।
2: देखो नृत्य गोपाल जी, जो अधिक मास को संबंध प्रकृति सु हमारे है क्योंकि ये नक्षत्र की गणना है
1: जी,
2: और नक्षत्र की गणना के हिसाब से जो अधकी के दिन आमे वो दिन जरूरी ना है कि जाड़े में आमे, गर्मी में आमे या चौमासे में आमे
1: जी,
2: कभी भी कहीं भी आ सके, दो भादो भी है सके, दो सामन भी है सके, और ये दो भादो और दो सामन के मध्य जो हमारे प्यारे को लाड़ लड़ानो और हमारे ब्रज की जो लोक परंपराएं हैं उनको देश काल परिस्थिति के अनुसार जो उनको आनंद लेनो है, यही को नाम पुरुषोत्तम मास को आनो है।
1: बहुत सुंदर, देश काल और परिस्थिति के अनुसार ब्रज में ये जो आनंद उत्सव है रहे हैं अधिक मास के आनंद उत्सव, या कि ताई हमारे जो श्रोता हैं सब आ रहे हैं और हम आमंत्रण दे हैं कि आप सब आमें और ब्रज में अधिक मास पुरुषोत्तम मास के जो उत्सव है रहे हैं उनको आनंद लें। आप तीनों यहाँ स्टूडियो में पधारे और इतनी बढ़िया बात आपने बताएं, हमारे श्रोताओं को आनंद आयो, आप ऐसे ही आते रहें। विभू कृष्ण भट्ट जी, डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा जी, डॉक्टर प्रगति जी, आप तीनों यहाँ स्टूडियो में आए हैं, आप तीनों को आभार, बहुत बहुत धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।
3: जय जय श्री राधे। धन्यवाद।
0: जय जय श्री राधे।
4: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे हते जाको विषय हो ब्रज में अधिक मास की लोक परंपराएं, प्रतिभागिता कर रहे हते डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर प्रगति शर्मा और विभू कृष्ण भट्ट जी, और संचालन कर रहे हते नृत्य गोपाल जी। तो नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
4: देखो कितनी रोचक चर्चा हमारे प्रतिभागी ने जो ब्रज की लोक परंपरा है अधिक मास की उनके बारे में हमारे सब श्रोतान को सुनाई है, और हमें तो यह परिचर्चा को सुन के इतना आनंद आ रहा है कि हमारी खुशी के हमारे उल्लास की कोई सीमा ना रही, क्योंकि हमारे जितने भी श्रोतान ने ये परिचर्चा सुनी है ना तो उनको मन जरूर ब्रज की इन परंपरान को जान के गदगद हुआ होगा, हमें यह बात की ना पूरी पूरी आशा है।
1: देखो चंपा, आपकी आशा बिल्कुल ठीक है और मैं आपको यह बात को विश्वास हो दिवा सकूं कि अब हमारे श्रोता ब्रिज में आएंगे और ब्रिज के लोक को जो ये स्वरूप वर्णित भयो है ना
4: जी,
1: जाकू नजदीक सो देखवे की रुचि उनमें जागृत भई होगी।
4: हाँ नृत्य गोपाल जी, देखो ब्रज भूमि को तो आकर्षण है ही है, सो या आकर्षण में बंद के महाकवि तुलसीदास ब्रज की ओर पधारे और उनने ब्रजवासा में कृष्ण के चरित्र को इतना विलक्षण वर्णन करो है कि जाकी जितनी भी बात हम करें उतनी ही कम है।
1: जी हाँ चंपा जी, उनने तो कृष्ण के चरित्र पे आधारित एक कृष्ण गीतावली पूरा ग्रंथ लिख दियो, तनिक आप एक बानगी देखो, मो कहूं झूठे वो दोष लगा वही मैया इन्हीं बान पर घर की नाना जुगत बनावहीं, इनके लिए खेल बो छाड़ो तहु न उबरन।

0: आवही भाजन फोर बोर कर गोरस देन उरहानो आवही कबहू के बाल रुबाए पान गह मिस कर उठ उठ धावही करही आप सिर धरही आन के बचन बिरंच हरावही मेरी टेव बूझ हल धरसो संतत संग खिलावही जे अन्याव करही काहू की ते शिशु मोह न भावही सुन सुन बचन चातुरी ग्वालिन हसे हसे बदन दुरावहें बाल गोपाल केल कल कीरत तुलसीदास मुनि गावहें।
1: तो नृत्य गोपाल जी देखो इतनो इसने सूरदास और महाकवि तुलसीदास ने ब्रजसो करो ऐसो ही इसने तो हमारे सब श्रोता भैया बहनान को हमारे ब्रजमाधुरी कार्यक्रम ते है। तो हमारो तो यही कहनो है प्यारे भैया बहनाओं कि आप हमारे यह कार्यक्रम को ऐसे ही सुनते रहो अपनो स्नेह देते रहो और अभी देखो 2-4-6 दिन और बचे हैं या अधिक मास में तो हमारो आपते करबद्ध निवेदन है विनम्र अनुरोध है कि आप अपने इष्ट मित्रन के संग और अपने परिजनन के संग ब्रज बसुदा में तीर्थाटन के काजे पधारो। तो प्यारे भैया बहनाओ इन्हीं प्रेम भरी बातन के संग हमारो आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होवे है। मोय अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को
0: और मो नृत्य गोपाल को कार्यक्रम प्रस्तुत करता वीके तोमर के संग जय विकी अनुमति प्रदान करें।
1: नमस्कार, नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है हमारे नन्हे मुन्ने बाल श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं प्रोग्राम रेडियो किड्स में और मेरा नाम जिनिशा सुलानिया है।
1: मेरा नाम वंशिका ठाकुर है।
2: मेरा नाम नव्या ठाकुर है।
3: मेरा नाम आव्या यादव है।
0: आज मैं दैनिक दिनचर्या बनाने के फायदे पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दैनिक दिनचर्या हमें समय का सही उपयोग करना सिखाता है। इससे हमारा हर काम समय पर होता है और हम अनुशासित बनते हैं। नियमित दिनचर्या से पढ़ाई, खेल, आराम और सभी के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और हम तनाव से दूर रहते हैं। मेरे दिनचर्या में सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, स्कूल जाना, होमवर्क करना, खेलना और रात को जल्दी सोना है। इसलिए हमें एक अच्छे दिनचर्या को अपनाना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। वंशिका, आप क्या कहना चाहते हो?
1: मेरे दिनचर्या में रोज थोड़ा समय किताब पढ़ना और संगीत सुनने के लिए भी निकालती हूँ। मुझे लगता है कि अच्छे दिनचर्या हमें सफल और व्यस्त बनाने में बहुत मदद करते हैं। आव्या, आप कुछ कहना चाहते हो? आप इतना चुप क्यों बैठे हो?
3: मेरी दिनचर्या तो बहुत मज़ेदार है। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, अपने मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग विश करती हूँ, फिर उसके बाद ब्रश करती हूँ, फिर ब्रश करने के बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी भी पीती हूँ, एक्सरसाइज करके नहाती हूँ, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करके स्कूल की रेडी हो जाती हूँ, फिर स्कूल चली जाती हूँ, स्कूल से आने के बाद लंच करती हूँ, फिर थोड़ा सा टीवी भी देखती हूँ, फिर सो जाती हूँ, उठने के बाद स्केटिंग जाती हूँ, स्केटिंग से आने के बाद पढ़ाई करती हूँ, फिर डिनर करके सो जाती हूँ। डेली रूटीन बनाने से हमारा काम भी समय से हो जाएगा और हम हेल्दी भी रहेंगे और स्ट्रांग भी रहेंगे।
0: वाह आव्या, बहुत अच्छी जानकारी दी। तुम्हारा रूटीन तो बहुत अच्छा है।
3: मैं कविता सुनाना चाहती हूँ।
1: जरूर सुनाइए।
3: सुबह सवेरे जल्दी उठना, उठकर झटपट मंजन करना, नियम से पढ़ना, नियम से लिखना, खेल कूद भी समय से करना, माँ का हरदम कहना सुनना, ऐसे राजा भी।

0: استنى.
1: मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ।
2: हाँ नव्या बताओ।
1: पर्वत कहता शीश

0: ती है न छोड़ो, कितना ही पो सर पर बार, नफ कहता है फैलो, इतना ढक लो तुम सारा संसार।
1: बातें बहुत हो गई, क्यों ना कुछ गाना सुन ले।

0: गाना सुन के तो बहुत मजा आया। अब हम आकाशवाणी के अपने पसंदीदा कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं।
1: जिनिशा, तुम्हारा आकाशवाणी का पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है?
0: मुझे आकाशवाणी के रेडियो किड्स और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है। इन कार्यक्रमों में रोचक कहानियाँ, कविताएँ, सामान्य ज्ञान और प्रेरणादायक बातें सुनने को मिलती हैं। इन्हें सुनकर मुझे नई नई जानकारियाँ मिलती हैं और मनोरंजन भी होता है।
1: और मुझे संगीत कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। पुराने गीत सुनकर बहुत अच्छा महसूस होता है।
2: अगर मैं आकाशवाणी में एक दिन के लिए आरजे बन जाऊं, तो फिर सबसे पहले मैं बोलूंगी, हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आप नानी आरजे आव्या, वेलकम टू माय रेडियो शो। फिर सुनाऊंगी मजेदार कहानियाँ और फिर पूछूंगी फन क्वेश्चन और बच्चों को कहूंगी खेलो कूदो सीखो और हमेशा खुश रहो। बीच बीच में सबके लिए प्यार प्यार मैसेज भी दूंगी। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा रेडियो प्रोग्राम? फिर मिलते हैं आपके अपने आरजे आव्या के साथ। बाय बाय।
0: अरे वाह, हम लोग भी अपना प्रोग्राम प्रेजेंट करेंगे। अगर तो मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत श्रोताओं का स्वागत करके करूंगी। मैं बच्चों के लिए नए नए गीत लाऊंगी और मज़ेदार पहेलियां लाऊंगी।
1: मैं युवाओं के लिए प्रेरणादायक बातें और सफलता की कहानियां सुनाऊंगी और मैं श्रोताओं से बातचीत करूंगी, उनके पसंद के गाने चलाऊंगी और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहूंगी।
0: वंशिका, तुम एक बार आरजे बन के तो दिखाओ।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रोग्राम और मैं हूं आपकी दोस्त वंशिका। मौसम सुहाना है तो मुस्कुराइए और एंजॉय कीजिए शानदार गाने। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि यहाँ पर हर पल मस्ती और एंजॉयमेंट का है। धन्यवाद।

0: गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और अब समय है मस्ती, खेल और ढेर सारी कहानियों का। जिनिशा, तुम अपनी छुट्टियों में क्या-क्या करना पसंद करोगी?
1: मैं अपनी छुट्टियों में अपने नानी के घर जाऊंगी और बहुत सारे मजे करूंगी। मेरे नानी के घर पे मेरी एक छोटी बहन है, मुझे उसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है और मैं रोज स्विमिंग जाती हूँ शाम को और पार्क में खेलने भी जाती हूँ। नव्या, क्या अब तुम कुछ बोलना चाहोगी?
2: ना स्कूल की टेंशन, ना होमवर्क की टेंशन, एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट।
1: अव्या, क्या अब तुम कुछ बताना चाहोगी?
3: मैं गर्मी की छुट्टी में रोज शाम को स्केटिंग जाती हूँ। मैं गर्मी की छुट्टी में अपनी दादी के घर जाऊंगी और वहाँ पे मेरी बड़ी बहन रहती है, मुझे उसके साथ खेलने में बहुत अच्छा लगता है।
0: साथ ही साथ मोबाइल थोड़ा कम और आउटडोर गेम्स थोड़ी ज्यादा खेलनी चाहिए। मस्ती करो, खुश रहो और छुट्टियों को यादगार बनाओ।
1: नव्या, आप क्या करने वाली हो गर्मियों की छुट्टी में?
2: तो दोस्तों, इस बार मैं अपने गांव जा रही हूँ और वहाँ पे मेरे कजन जा रहे हैं। वहाँ पे हम रोज हर दिन खेलते रहते हैं और कुछ ना कुछ करते हैं।
0: सही कहा नव्या, जब भी हम अपनी नानी के घर या दादी के घर जाते हैं बहुत मजा आता है। अपने कजन के साथ खेलते हैं, पूरे दिन मजे करते हैं और वो एंजॉयमेंट वापस कभी नहीं आता। इससे हमारे रिश्ते या फिर रिलेशंस जुड़े रहते हैं।
1: गर्मी बहुत है, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीना चाहिए और ज़्यादा बाहर नहीं चलना चाहिए। और अगर हम बाहर चले तो फिर हमें बुखार भी हो सकता है, इसलिए हमें अपने आप को ढककर जाना चाहिए।

0: अब बात करते हैं महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की।
1: सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में हुआ था। वे बचपन से ही बहुत देशभक्त और साहसी थे। उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने के लिए बहुत संघर्ष किया था। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और देशवासियों के मन में स्वतंत्रता की भावना जगाई। उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का जीवन हमें साहस, देशभक्ति और कठोर संकल्प की प्रेरणा देता है। हमें उनका आदर्श का पालन करना चाहिए और अपने देश के प्रति सम्मान रखना चाहिए।
0: आव्या, क्यों ना तुम कुछ सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बोलो।
2: मेरे प्रेरक पुत्र हैं सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्हें हम प्यार से नेताजी भी कहते हैं, और उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वे बहुत बहादुर थे और अपने देश से बहुत प्यार करते थे, और उन्होंने हमें ये सिखाया कि हमेशा हमें साहसी बनना चाहिए और हमेशा हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए। तो आइए हम सब मिलके कहें जय हिंद। धन्यवाद।
1: वाह वाह, कितनी अच्छी कविता थी।
0: उनका जीवन हमें साहस, अनुशासन और देश प्रेम की प्रेरणा देता है।

0: दोस्तों, अब हमारे घर जाने का वक्त हो गया है। बातें करते करते पता ही नहीं चला वक्त कब निकल गया।
1: फिर मिलेंगे नए विषय के साथ,
2: तब तक के लिए बाय।

अभी हमारे नन्हे मुन्ने बाल श्रोता सुन रहे थे उनका मनपसंद कार्यक्रम रेडियो किड्स, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

这里广播电台听众朋友们，请收听拉达长的歌曲。

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार, खेल खिलाड़ी में सभी श्रोताओं को मैं संचित जैन और मेरे सहयोगी अतुल गुप्ता का बहुत बहुत नमस्कार।
2: नमस्कार संचित, और सभी सुनने वाले हमारे खेल प्रेमियों को भी नमस्कार।
1: आज खेल खिलाड़ी में बहुत सी बातें करेंगे, खेल जगत के जगह से फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बातें करेंगे जो कि 11 जून को शुरू होने वाला है। हम बात करेंगे SAFF वेमेन चैंपियनशिप फाइनल की भी, फ्रेंच ओपन 2026 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टेनिस टूर्नामेंट चल रहा है उसकी बातें करेंगे, और बात करेंगे
2: जी हाँ उसके अलावा संचित बात करेंगे क्रिकेट की, जहाँ इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा, टेस्ट मैच खेला जा रहा है, और आज दूसरे दिन का खेल था। इसके अलावा आज संडे है तो संडे ऑन साइकिल पर हमारे वरिष्ठ साथी शाहिद आजमी ने कवरेज की, उसकी भी बात करेंगे। योगासना चैंपियनशिप चल रही है जहाँ पे आज भी काफ़ी मुकाबले हुए, और कल भारत के लिए अच्छी खबर थी जहां पे 22 स्वर्ण के साथ भारत जो है मेडल में लीड कर रहा था मेडल टैली में, उसकी बात करेंगे। उलन बटेर ओपन जी हां मंगोलिया में कुश्ती जो चल रही है वहां से क्या खबर है, उसके अलावा ताइपे में एथलेटिक्स की बात, और साथ में होंगे कुछ खेल खबर।
3: और संचित कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले कुछ खास, जी हां कुछ खास उन लाखों करोड़ों श्रोताओं के लिए जिनके साथ हम जुड़ते हैं आकाशवाणी के माध्यम से रोजाना।

कल का दिन भारतीय प्रसारण इतिहास के लिए बेहद खास है। 8 जून 2026 को आकाशवाणी अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूरे कर रही है। साल 1936 में इसी दिन ऑल इंडिया रेडियो के रूप में शुरू हुई यह यात्रा आज भी करोड़ों श्रोताओं के दिलों की धड़कन बनी हुई है। स्वतंत्रता संग्राम की गूंज हो, 1947 की ऐतिहासिक आधी रात का संदेश हो, युद्धों और आपदाओं के दौरान भरोसेमंद सूचना हो, या फिर संगीत, साहित्य और संस्कृति का अनमोल खजाना, आकाशवाणी ने हर दौर में देश की आवाज बनकर अपनी पहचान कायम रखी है।

0: आकाशवाणी ने न केवल खबरें दी बल्कि पीढ़ियों को जोड़ा, भाषाओं को सम्मान दिया और भारत की विविधता को एक सूत्र में पिरोया। विविध भारती के सदाबहार गीतों से लेकर समाचारों की विश्वसनीयता तक, खेल कमेंट्री से लेकर ग्रामीण भारत की कहानियों तक, आकाशवाणी का सफर देश के सफर का ही प्रतिबिंब है। 90 वर्ष की इस शानदार यात्रा को नमन करते हुए हम उन लाखों श्रोताओं, प्रसारकों, कलाकारों और कर्मियों का भी अभिनंदन करते हैं जिन्होंने आकाशवाणी को जन जन की आवाज बनाया। और इस अवसर पर माननीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं।
1: आकाशवाणी को 90 साल पूरा होने के अवसर पर मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। 90 साल की जर्नी कोई छोटी जर्नी नहीं है। 90 साल में आकाशवाणी सबका साथी बना है। सभी को आकाशवाणी से न्यूज मिले हैं, समाचार प्राप्त हुए हैं, शहर के हो या गांव के, सही समय हो या कठिन समय, सभी परिस्थिति में सभी उतार चढ़ाव को पार करते हुए आकाशवाणी की जर्नी भारत के लिए एक प्राउड मोमेंट है।
0: पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग कहते हैं,
2: 90 साल पूरे होने पे ऑल इंडिया रेडियो के लिए बहुत बहुत

0: काम है। जब मैं पैदा भी नहीं होता तब से रेडियो चलता है। मेरे फादर मदर मेरे ताऊ जी ये सब रेडियो पे न्यूज़ सुनते थे, चीज़ें सुनते थे, खेल की कमेंट्री सुनते थे। जब मैं बड़ा हुआ मैं क्रिकेट खेलने लगा तो मेरी भी कमेंट्री रेडियो के द्वारा सुनने लगे ऑल इंडिया रेडियो। तो
1: 5 बार की राष्ट्रीय चैंपियन और 2 बार की वर्ल्ड कप गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर नूपुर शेरोन क्या कहती हैं?
2: मैं आकाशवाणी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि 90 साल पूरे हो चुके हैं। और एक बोलते हैं कि आकाशवाणी से मेरे परिवार को तो एक बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि स्पोर्ट्स की जो जितनी भी कवरेज होती है और जितना भी जो कुछ है वो आकाशवाणी पे हमेशा मिलता है।
1: मन की बात हो या जन जन की वाणी आकाशवाणी, खेल खिलाड़ी परिवार की तरफ से सभी श्रोताओं को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं।

0: चलिए, ये तो हुई आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने की खुशखबरी। अब खेल जगत की दुनिया में वापस आते हैं और SAFF वुमेन चैंपियनशिप फाइनल से अच्छी खबर आ रही है, जहां भारत ने बांग्लादेश को फाइनल में हराकर चैंपियनशिप जीत ली है। आइए सुनिए हमारे सहयोगी अतुल गुप्ता की रिपोर्ट।
1: भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने फाइनल में बांग्लादेश पर 3-1 की शानदार जीत के साथ छठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। भारत ने 7 साल बाद यह ट्रॉफी जीती। टीम के लिए प्यारी जैक्सन ने 42वें मिनट में, सनफिदा नोंगरम ने 46वें मिनट में और लिंडा कॉमसर्टो ने 82वें मिनट में गोल किए। वहीं बांग्लादेश के लिए एकमात्र गोल ऋतुपूर्णा चकमा ने किया। भारतीय टीम ने ग्रुप चरण में भी बांग्लादेश को 3-0 गोल से हराया था। फाइनल मैच की शुरुआत से ही भारतीय टीम ने गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा और लगातार आक्रमण किए। कई मौकों के बाद 42वें मिनट में प्यारी जैक्सन ने शानदार गोल कर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। हालांकि पहले हाफ के अतिरिक्त समय में बांग्लादेश की ऋतुपूर्णा चकमा ने बेहतरीन गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। यह पूरे टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ हुआ पहला गोल था। दूसरे हाफ की शुरुआत होते ही भारत ने फिर बढ़त हासिल कर ली। 46वें मिनट में प्यारी जैक्सन के शानदार क्रॉस पर सनफिदा नोंगरम ने हेडर के जरिए गोल कर स्कोर 2-1 कर दिया। इसके बाद भारतीय टीम ने मैच पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखा। 82वें मिनट में बांग्लादेश की रक्षा पंक्ति की गलती का फायदा उठाते हुए लिंडा कोमसोटा ने तीसरा गोल कर भारत की जीत सुनिश्चित कर दी। भारत ने टूर्नामेंट में बिना कोई मैच गंवाए अपना सफर पूरा किया। उन्होंने 18 गोल किए और सिर्फ 1 गोल खाया, जिससे टूर्नामेंट में उनका दबदबा साफ दिखा। भारतीय टीम ने मालदीव पर 11-0 की जीत के साथ अपने अभियान की शानदार शुरुआत की थी और फिर बांग्लादेश को 3-0 से हराकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया था। लगातार 5 बार खिताब जीतने के बाद भारत पिछले 2 चरणों में फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाया था। बांग्लादेश ने इन दोनों मौकों 2022 और 2024 पर नेपाल को हराकर ट्रॉफी जीती थी। भारत ने पिछली बार 2019 में यह खिताब जीता था। इस जीत के साथ मेजबान टीम के लिए टूर्नामेंट यादगार बन गया। अवेका सिंह 4 गोल के साथ प्रतियोगिता की शीर्ष स्कोरर रहीं। सनफिदा नोंगरम को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया, जबकि पंथोई चानू इलांगबम ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार जीता। वहीं चैंपियनशिप के बाद एक और खबर ने सुर्खियां बटोरी। भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी ग्रेस डांगमई ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। सैफ चैंपियनशिप जीतने के बाद उन्होंने ये ऐलान किया। मणिपुर की रहने वाली 30 वर्षीय फॉरवर्ड खिलाड़ी ने 2013 में अपने पदार्पण के बाद से 95 बार देश का प्रतिनिधित्व किया और अपना तीसरा सैफ खिताब जीतकर अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का शानदार समापन किया। मैच के बाद ग्रेस डांगमई ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। खेल खिलाड़ी टीम की ओर से डांगमई को उनके शानदार फुटबॉल करियर के लिए शुभकामनाएं। जी हां, डांगमई को शुभकामनाएं और शुभकामनाएं भारतीय महिला फुटबॉल टीम को भी। और संचित, अगर फुटबॉल की बात चल रही है और फीफा वर्ल्ड कप, जी हां, मात्र 4 दिन बचे हैं, उसकी बात ना हो तो कैसे हो सकता है। और खेल खिलाड़ी के श्रोताओं के लिए हम रोजाना लेकर

0: रहे हैं एक मिनी कर्टन सीरीज जिसमें अभी तक हमने बात की है अलग अलग ग्रुप की, और आज भी हम दो ग्रुप की बात करने वाले हैं, ग्रुप जी और एच की। तो श्रोताओं को सुनवाते हैं आपकी ये रिपोर्ट।
1: कौन भूला है ये 2022 के ये ऐतिहासिक विनिंग मोमेंट को, और अब बारी है 2026 के फीफा वर्ल्ड कप के शोर की।

और चलिए अब चलते हैं विश्व के सबसे बड़े खेल अवसर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2026 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप विश्व में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टूर्नामेंट है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि फीफा वर्ल्ड कप ओलंपिक्स से भी ज्यादा देखा जाता है। पिछले कई दिनों से खेल खिलाड़ी पर हम फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप्स पर ध्यान देते आए हैं और वैसे ही आज हम ग्रुप जी और ग्रुप एच पर विचार करेंगे। ग्रुप जी की बात करें तो ग्रुप जी में बेल्जियम, इजिप्ट, ईरान और न्यूजीलैंड खेलेंगे। बेल्जियम, जिन्होंने 2018 फीफा वर्ल्ड कप में तीसरा स्थान हासिल किया था, इस ग्रुप को जीतने के लिए फेवरेट रहेंगे। वहीं इजिप्ट, ईरान और न्यूजीलैंड को हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। ये एक ऐसा ग्रुप है जहां कोई भी टीम दूसरी टीम को हरा सकती है और इसी कारण इस ग्रुप के मुकाबले बहुत दिलचस्प रहेंगे। इस ग्रुप में हमें फुटबॉल के सुपरस्टार्स मोहम्मद साला, जो कि इजिप्ट की तरफ से खेलते हैं, और बेल्जियम के सुपरस्टार केविन डी ब्रुइने आपस में भिड़ते दिखेंगे। फिक्स्चर्स की बात करें तो 15 जून को बेल्जियम इजिप्ट से खेलेगा और ईरान न्यूजीलैंड से। फिर 21 जून को बेल्जियम ईरान के साथ खेलेगा और न्यूजीलैंड इजिप्ट के साथ। और 26 जून को ग्रुप के आखिरी मुकाबले खेले जाएंगे जिसमें इजिप्ट ईरान से खेलेगा और बेल्जियम न्यूजीलैंड से। मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि बेल्जियम के अलावा इस ग्रुप की बाकी तीनों टीमें पहले कभी ग्रुप चेस से आगे नहीं बढ़ पाई हैं। ये देखने वाली बात होगी क्योंकि इस ग्रुप से कम एक टीम पहली बार फीफा वर्ल्ड कप की नॉकआउट स्टेज में जरूर दिखेगी।

वही ग्रुप एच की बात करें तो यूरोपियन चैंपियन स्पेन, काबो वर्डे, सऊदी अरेबिया और यूरुग्वे आपस में खेलेंगे। स्पेन, जिन्होंने 2010 में फीफा वर्ल्ड कप जीता था, इस ग्रुप में फेवरेट होंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 2010 में जीतने के बाद स्पेन कभी भी राउंड ऑफ 16 के आगे नहीं बढ़ पाई है, और स्पेन को चुनौती देने वाले दो बार फीफा वर्ल्ड कप चैंपियंस यूरुग्वे भी इस ग्रुप में खेलेंगे। यूरुग्वे ने 1930 और 1950 में फीफा वर्ल्ड कप जीता था। 1950 के बाद उरुग्वे 1954, 1970 और 2010 में चौथे स्थान पर रहा। वहीं पश्चिम अफ्रीका के छोटे से आइलैंड नेशन काबो वर्डे अपना पहला फीफा वर्ल्ड कप खेलेंगे। काबो वर्डे में कुल 5.25 लाख लोग रहते हैं। ये जानते हुए कि एक ने छोटे आइलैंड नेशन ने फीफा वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया, ये एक बहुत ही काबिल तारीफ बात है। वही सऊदी अरेबिया की बात करें तो एशिया को रिप्रेजेंट करती हुई ये टीम अब फीफा वर्ल्ड कप रेगुलर बन गई है। इस ग्रुप के मैचेस की बात करें तो ग्रुप एच में 15 जून को स्पेन काबो वर्डे से खेलेंगे और सऊदी अरेबिया उरुग्वे से। 21 जून को स्पेन का मुकाबला सऊदी अरेबिया से होगा और उरुग्वे का काबो वर्डे से। और ग्रुप के आखिरी मैच 26 जून को खेले जाएंगे, जिसमें काबो वर्डे सऊदी अरेबिया से खेलेगा और ग्रुप का सबसे बड़ा मुकाबला स्पेन और उरुग्वे के बीच खेला जाएगा।

जी हाँ, फुटबॉल के बाद बाकी खेल खबरों पर अगर बात करें तो जी हाँ, आज रविवार है यानी संडे ऑन साइकिल का दिन, वो दिन जो कि खेल प्रेमियों के लिए, फिटनेस प्रेमियों के लिए एक यादगार दिन हो गया है। हर संडे कोई इवेंट होती है और आज भी नई दिल्ली में और भारत के अलग अलग शहरों में संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। नई दिल्ली से हमारे वरिष्ठ साथी शाहिद आजमी ने

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: अश्विनी भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी करमवीर से, और किस्सा था गोपी चंद का। और देखिए, सरकार द्वारा भाई ग्रामीण विकास के साथ साथ हमारे जो बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके लिए भी अनेक योजनाएं चलाई जाती रह रही हैं। और इसी क्रम में सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए शुरू की गई एक छोटी बचत योजना है। इसमें 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के नाम पर किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक में खाता खोला जा सकता है। और इसकी जो अगर विशेषताओं की बात करें तो भाई देखिए, वर्तमान में इस योजना पर 8.2% वार्षिक ब्याज मिल रहा है, जो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग ब्याज इस पर मिलता है। और निवेश सीमा की बात करें तो सुनिए भाई, एक वित्तीय
1: जी
0: वर्ष में न्यूनतम ₹250 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। और
1: जी
0: जमा अवधि खाता खोलने की तारीख से केवल 15 वर्षों तक के पैसा जमा करने के होते हैं।
1: नहीं, और देखिए सुनील भाई, कि जो भी हमारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, वो जब तक आखिरी आदमी तक नहीं पहुंच जाए उनकी जानकारियां, और अगर आप खुद को भी अगर पता है जानकारी के विषय में, अगर आप जानते हैं और आपने इस योजना का लाभ उठाया है, तो अपने साथियों, अपने रिश्तेदारों में बताइए, जिससे उस योजना को का लाभ जो है आखिरी आदमी तक मिल सके। जैसे सुनील भाई ने बताया है, इस योजना का जो जो जो मानक है वो सुनील भाई ने ऑलरेडी आपको बता दिया है, कि इन योजनाओं का फ़ायदा उठाएं और सभी को इस योजना का फ़ायदा उठाना चाहिए।
0: और रश्मि भाई, अपने कार्यक्रम के माध्यम से देखिए, हम हमेशा भाइयों को कहते रहते हैं कि भाई इस तरह की सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका स्वयं भी आप लें और लाभ लें, और दूसरे भाई जिनको इस बारे में नहीं पता उनको भी जागरूक करें और इस तरह की योजनाओं का लाभ स्वयं भी उठाएं।
1: बिल्कुल
0: और आज के जो हमारे अगले कलाकार हैं वो हैं गजेंद्र सिंह। और
1: जी
0: गजेंद्र सिंह को सुनने के लिए जो पहली फरमाइश आई है ये है, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से फरमाइश आई है। इसको भेजने वाले हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और उनका समस्त परिवार।
1: जी
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है गांव नाईवाला, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से वेद मिड्डा और अलका मिढा की। धनौरी तेलीवाल, उत्तराखंड से ये फरमाइश हमें मिली है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू की।
1: और ये पत्र हमें मिला है, ये पत्र हमें लिखा है सीताराम कांगड़ा जी ने, करौनी एक एक एकता कॉलोनी रोहतक से पत्र मिला है। सीताराम कांगड़ा, बबीताराम बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट का है, और उनका पूरा परिवार है। दादरी गेट से ये पत्र हमें मिला है, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, उनका पूरा परिवार। और गांधीनगर गुजरात से एक और पत्र हमें मिला है, वो है सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा, उनका पूरे परिवार, जिन्होंने सुनना चाहा है
0: और
1: गजेंद्र
0: एक
1: सिंह को।
0: फरमाइश और भी है सुनी भाई,
1: जी
0: मिली है GTB मार्केट मंडी से, और उसको भेजने वाले हैं मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना और उनका समस्त परिवार।
1: जी
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है, ये फरमाइश हमें मिली है गांव डंडी, तहसील भदरवा, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से, उसको भेजने वाले हैं पुरुषोत्तम कुमार और उनका समस्त परिवार।
1: जी
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है भाई तेजपाल सिंह, प्रजापति, अनुराधा शर्मा और उनके समस्त परिवार की तरफ से, ये फरमाइश हमें मिली है चिट्टा मंदिर रोड यमुनानगर से।
1: जी ये पत्र आया है गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से, ये है शाहीन अक्सर, नाजिया, इब्राहिम और उनका पूरा परिवार।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश मिली है जसपुरा उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: हनुमानगढ़ टाउन से राजस्थान से पत्र मिला है, ये है राजकीय मोहम्मद सीम, ये समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और उनका पूरा परिवार, जिन्होंने सुनना चाहा है गजेंद्र सिंह को। और भोपालगढ़ राजस्थान से पत्र एक और मिला है, धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिब्बा और पूजा और उनका पूरा परिवार।
0: तो आइए

0: सुनी भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी गजेंद्र सिंह से। और आज के हमारे जो अगले कलाकार हैं वो है मूलचंद वर्मा, और फरमाइश हमें मिली इनको सुनने के लिए कोटवा नारायणपुरी बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, उनके समस्त परिवार की तरफ से। दुबई नेवदा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली अरजोनी जिला मऊ उत्तर प्रदेश से, इसको भेजने वाले उदयभान पाल, जयंद पाल, दीक्षा पाल और प्रतीक्षा पाल और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: ये जिला अम्बाला हरियाणा से इन्हें सुनना चाहे रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरमीत और उनका पूरा परिवार।
0: और भाई देखिए, फरमाइश हमें काफ़ी और भी मिली है जो हम अपने अगले कार्यक्रम कृषि जगत में शामिल करेंगे, तो आप भाई कार्यक्रम कृषि जगत भी सुनते रहिए। और अब भाइयों की पसंद पर सुन लेते हैं मूलचंद वर्मा से ये रागनी।

सुनी भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी मूलचंद वर्मा से, और मूलचंद वर्मा की गाई इस रागनी के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल। ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम, राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक

0: बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं पर समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच संबंध के लोगों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नगर पालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। सुश्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को जल्द ही 5 हिमालयी शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। इस बीच पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमतें में 29 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली में 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपये है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लिबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जो वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है, उसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में इटली के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना जर्मनी के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। इससे पहले कल रूस की मिरा एंड्रीवा ने माजाच्वालिन्स्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: असोनी भाई, देखिए हमारे जो किसान भाई हैं वो फसल के बुआई से लेकर और फसल की कटाई तक दिन रात काफी मेहनत करते हैं, चाहे उसमें वो फिर भाई देखिए खाद देने की बात हो, सिंचाई की बात हो, यानी सब कामों में मेहनत करते हैं। और उसके बाद भी यदि कोई भाई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जिसमें देखिए भाई बारिश अधिक होना, सूखा पड़ना, बाढ़ आना इस तरह के, और ओलावृष्टि होना, इस तरह की अगर आपदा आ जाए तो भाई देखिए उनकी सारी फसल ख़राब हो जाती है और काफ़ी नुकसान होता है। देखिए भाई, प्राकृतिक आपदाओं को हम रोक तो नहीं सकते सुनी भाई, लेकिन इनको देखिए जो इनसे जो नुकसान किसान भाइयों की फसल का होता है उसका वही देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसी के लिए शुरू की गई कि उसके नुकसान की भरपाई हम कर सकें
1: कहीं ना कहीं।
0: जी, बिल्कुल जी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई देखिए किसानों को सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश जैसी प्राकृतिक जो आपदाएँ हैं उनसे होने वाले फसल के नुकसान की वित्तीय सुरक्षा और मुआवजा प्रदान करना। यह योजना बुआई से लेकर कटाई के बाद के सभी चरणों के जोखिम की कवर करती है। साथ ही भाई देखिए इस योजना की जो सबसे बड़ी खासियत यही है कि भाई देखिए इस योजना में सभी खरीफ रवी फसल और चाहे भाई बागवानी की बात हो, मोटे अनाज की बात हो, दलहन तिलहन, यानी सभी फसलों को इसमें शामिल किया गया है। और खरीफ फसल की अगर बात करें तो देखिए भाई अगर प्रीमियम इसमें किसान भाइयों को बहुत ही कम देना पड़ता है, सेस प्रीमियम की जो राशि है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें उठाती हैं। और खरीफ फसल की अगर बात करें तो 2%, रबी फसल में 1.5%, और व्यवसायिक या बागवानी फसलों की बात करें तो 5% प्रीमियम किसान भाइयों को देना।
1: और देखिए ना कहीं सरकार का जो उद्देश्य है इस योजना को शुरू करने का, किसानों की को फसल हानि से की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, खेती में निवेश और उत्पादन को बढ़ावा देना, प्रकृति आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देना, जो हमारे सुनील भाई ने अभी ऑलरेडी बताया ही है, किसानों की आय को स्थिर बनाए रखना, कृषि क्षेत्र में किसानों का विश्वास बढ़ाना, इस योजना के तहत किसानों को ये ज़रूर सहारा ज़रूर मिलता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें ज़रूर देख रहा है का मतलब ये है कि योजनाओं के द्वारा कहीं ना कहीं किसान की जो मेहनत है, जो भाई प्रकृति आपदा के कारण जो भी, जैसे सुनील भाई ने कहा कि हम आपदा को रोक नहीं सकते या आप उसका अंदाज़ा लगा नहीं सकते, लेकिन फिर भी सरकार ने कहीं ना कहीं कोशिश की है कि अगर प्रकृति आपदाओं से किसान की फसल अगर कहीं ना कहीं नष्ट होती है तो कहीं ना कहीं किसान को उसका मुआवजा उनको देकर उस नुकसान की भरपाई की जाए, यही योजना का मूल मंत्र है जिसमें जी।
0: असनी भाई, इसका फ़ायदा ये भी है कि देखिए इस तरह की योजना जब किसान को मिल जाती है और वो उसकी फसल किसी कारण से नुकसान होती है तो मानसिक रूप से भी वो नहीं टूटता और आगे भी वो फसलें लगाते रहते हैं। और इस योजना का जो आरंभ है वो 2016 में किया गया। देखिए इसके आवेदन करने के लिए अगर बात करें तो जो किसान भाई, जो लोन लेने वाले किसान भाई हैं, यदि आपने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड, KCC या कृषि लोन लिया है तो आपकी फसल का बीमा स्वतः कर लिया जाता है। लेकिन जो भाई किसान ऋण नहीं लेते, वे जन सेवा केंद्रों, SSC और कृषि विभाग के कार्यालय सीधे आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तकनीकी में इसको आसान बनाया गया। आजकल डिजिटल युग का युग है जिसमें फसल बीमा की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया। किसानों को मोबाइल और ऑनलाइन सेवा के माध्यम से आवेदन, जानकारी, दावा और प्रतिक्रिया की स्थिति भी जान सकते हैं। इससे पारदर्शिता को बढ़ा रही है किसानों की सहायता के लिए। और अगर आप सुनील भाई यहाँ पर बात करेंगे, खेती केवल मेहनत का ही नहीं बल्कि समझदारी का भी एक काम है, जिसमें जिस प्रकार से अपने घरों और परिवार की सुरक्षा करते हैं उसी प्रकार अपनी फसल की सुरक्षा करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसी योजनाओं का किसानों को लाभ उठाना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं रेडियो के माध्यम से हर किसान को कहीं ना कहीं ये फसल बीमा योजना ज़रूर ज़रूर ज़रूर लेनी चाहिए।
0: तो असुनी भाई देखिए बातचीत भाइयों से और भी करेंगे, रविवार का दिन है, कृषि पुत्र तो लोक संगीत के साथ कार्यक्रम है, खत आपके हाथ में दिखाई दे रहा है, खत भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सीस राम के गाए उपदेश से और इसको

0: के लिए भाई, ये जैसा हमने बताया था कुछ फरमाइश हमें और मिली है। ये पहली फरमाइश मिली है सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है तहसील बदरा गांव कलाना और विक्रम सचिन सतीश योगेश उनके समस्त परिवार की तरफ से। इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है बड़ूदा चैना भिवानी से, उसके भेजने वाले हैं महिपाल नीरू उत्कर्ष और उनका समस्त परिवार।
1: दादा दादा।

0: से पत्र मिला है मोहम्मद यासीन अंजाज और शहनवाज हुसैन, बाबू अहद, फिक्री नवाज बेबी और उनका पूरा परिवार, यहीं पर एक पत्र और शामिल डांडी हाड़ा खेड़ा के जिला सिरसा से पत्र शामिल करते राधे राम शर्मा, इंद्र शर्मा और सातक शर्मा और उनका पूरा परिवार।
1: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम स्तोड़ रीतु सिंह हिमानी और उनके समस्त परिवार की तरफ से। गाँव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें भाई फरमाइश जो मिली है, सुनी भाई आपके हाथ
0: जी
1: में और भी फरमाइश दिखाई दे रही
0: जी
1: है।
0: जी जी ये है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, और ये पत्र लिखा है इन्होंने इन्होंने पिंके वाला चौक जलंधर से। एक और पत्र शामिल कर लेते हैं, रामगढ़ टेक से ये पत्र मिला है, महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब का पत्र है जिन्होंने सुनना चाहा है। और ये पत्र हमें लिखा है छत्तीसगढ़ से, पत्र मिला है, ये है चित्रलेखा साहू, शंभू साहू और उनका पूरा परिवार।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली जलालपुर जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम, आर्यन, लवीस, मुनेश देवी की। और एक फरमाइश हमें मिली है भोला कॉलोनी घरांडा जिला करनाल हरियाणा से विजेंद्र कुमार जायजान, कांता रानी, गुंजन साहिल और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: जी ये अकरम हुसैन, पिंकी डाक बाबू, बेगम इकराक असम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम और उनका पूरा परिवार। यहीं पर एक और पत्र शामिल कर लेते हैं, जटवाड़ा गाजियाबाद से पत्र मिला, चिचवाला केला, और यह है बाबा कुट्टी रायगढ़ से पत्र मिला, शिवम कुमार चौहान और उनका पूरा परिवार। और यहीं पर गांव खोड़ीवाला श्री गंगानगर से विनोद कान बरसाना, विशाल बरसाना, विक्रम बरसाना, रोशनी बरसाना, उनका पूरा परिवार।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है नूर महल सीतामढ़ी बिहार से, इसको भेजने वाले मुझसे जाना आज और तलत अजान आज और उनका समस्त परिवार। साथ ही हमें फरमाइश मिली है भाई, देखिए ये फरमाइश हमें अगली मिली है जटवाड़ा गाजियाबाद से शीशपाला केला की। साथ ही हमें फरमाइश मिली है गांव खोखर वाली श्रीगंगानगर से विनोद बारसा और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही फरमाइश मिली है गांव लोगढ़ जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापति, मुनेश देवी उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: ये चक पांच मंडी पतोड़गढ़ से, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से है, ये मंगलगिरी राही, सुनीता, श्रीमती रोशनी और इनका पूरा परिवार है। यहीं पर एक और है कि गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से है, रमेश कुमार कंबोज, पिंकी कंबोज, उनका उनका पूरा परिवार।
1: इसी क्रम में हमें एक फरमाइश और मिली है MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुना खुराना, पप्पी किरण खुराना और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है सादुल से राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और उनके समस्त परिवार की तरफ से। बेरवाला खुर्द सिरसा से बलवंत जाखड़, ममता जाखड़ और PNN भी सुनना चाहते हैं शीश राम को।
0: ये हनुमानगढ़ राजस्थान से मिला है, सुल्तान सिंह, कृष्ण, मुकेश चंद्र, कपिल और उनका पूरा परिवार। और ये एक और पत्र है, पटेल नगर मोलोट से पत्र मिला है, डॉक्टर रमेश कुमार, गीता, गगनदीप और आरजू और उनका पूरा परिवार।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है छत्तीसगढ़ हसदा नंबर दो से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू और पायल साहू की। गांव चोलदा बागपत से फरमाइश मिली है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया की। गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से फरमाइश मिली है राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: FNH डांडा नरसाना भिवानी से ये पत्र मिला है, जगदीश चंडालिया, राजवी चंडालिया, सतीश चंडालिया, ऋतिक चंडालिया और उनका पूरा परिवार।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है गोविंदगढ़ माझी से, उसको भेजने वाले राजू टुटेजा, खुशदिल, उर्मिला और उनका समस्त परिवार।
0: पत्र मिला है जिला जानोल उत्तर प्रदेश से है, ये सत्येंद्र कुमार, आदर्श सार्थक और उनका पूरा परिवार।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है इसको भेजने वाले मंटू शर्मा, सुशीला शर्मा, लीलाधर शर्मा और उनका समस्त परिवार, ये भेज रहे हैं गांव सरेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से।
0: जलालाबाद वेस्ट से है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल गगनेजा, उनका पूरा परिवार। चौधरीवास से भी एक पत्र हमें मिला है, धन्यवाद कर रहे हैं हमारा। और ये है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से है, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हेमानी, हर्षित और उनका पूरा परिवार।
1: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं शीशराम से ये उपदेश।

0: हैं और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और एक पत्र हमें मिला है, ये पत्र लिखा है गांव काकूपुर लिखने वाले विनोद कुमार हैं। ये मूंगफली की बुवाई करना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि बुवाई का सही समय क्या है और इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी रहनी चाहिए जिससे फसल उत्पादन अच्छा हो, बीज दर क्या क्या ले सकते हैं, पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या होनी चाहिए, और मूंगफली कितने दिनों में तैयार हो जाती है, और इसके बारे में संक्षिप्त में एक इनका उत्तर दें।
1: विनोद कुमार भाई, देखिए मूंगफली की बिजाई आप करना चाहते हैं तो सही समय पर आपका कहता है जून के दूसरे सप्ताह से लेकर जुलाई का दूसरा सप्ताह इसके लिए सबसे उचित माना जाता है। जहाँ तक मिट्टी की बात है तो मूंगफली की फसल दोमट बलोर और हल्की दोमट भूमि अच्छी मानी जाती है और इसके लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है भाई। और जहाँ तक आपने उन्नत किस्मों की बात की है तो देखिए ज्योति, कौशल जी 201, M13, ICGS11, ICGS44, JL24, TG1, विक्रम, J11, ICGS37 जो प्रमुख किस्में हैं। इसके अलावा अपने क्षेत्र के हिसाब से भी आप उन्नत किस्म ले सकते हैं। और जहाँ तक बीज दर और बुआई की बात आपने की है तो देखिए भैया, यदि आप गुच्छे वाली किस्मों की बात करें तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर। जहाँ तक गहराई की बात है तो 5 से 7 सेंटीमीटर सबसे उचित मानी जाती है और प्रति हेक्टेयर 60 से 80 किलोग्राम बीज पर्याप्त माना जाता है। और भाई देखिए, मूंगफली जो फसल है उसमें निराई गुड़ाई का विशेष महत्व होता है। बुआई से 35 दिन तक खरपतवार की वृद्धि अधिक होती है, अतः फसल में 2 बार निराई गुड़ाई अवश्य करें विनोद भाई। और बुआई से 12 से 15 दिन के पश्चात और करीब 15 से 20 दिन के बाद फिर से दोबारा निराई गुड़ाई अवश्य करनी चाहिए। और जहाँ तक भाई बात है, मूंगफली में कई तरह के रोग भी आ जाते हैं जिनमें रोजेट रोग, टीका रोग, रोकीला इल्ली, मूंगफली की माऊ, लीक की माइनर आदि प्रमुख हैं, तो इनसे भाई भाई फसल को बचाना है। और जहाँ तक सिंचाई की बात है, मूंगफली खरीफ फसल होने के कारण इसमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सिंचाई करना भी सामान्य रूप से वर्षा के वितरण पर निर्भर करता है। और भाई फसल की बुआई यदि जल्दी करनी हो तो 1 प्लेव की आवश्यकता पड़ती है और यदि पौधों में फूल आते समय सूखे की स्थिति हो तो उस समय भाई सिंचाई करना आवश्यक होता है। वर्षा की मात्रा के अनुरूप सिंचाई की आवश्यकता पड़ सकती है। और मूंगफली की जहाँ तक आपने पूछी है कि भाई कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो देख मूंगफली की फसल जो मुख्य रहता है किस्म के हिसाब से भाई 120 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। शीघ्र पकने वाली किस्में सितंबर अक्टूबर में, सदैव से पकने वाली किस्में अक्टूबर नवंबर में खुदाई के लिए तैयार हो जाती हैं। जब पौधे पीले पड़ने लग जाएं और उन्हें की पत्तियां मुरझा जाएं तो भाई खुदाई आपने कर लेनी चाहिए। इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और मूंगफली फसल की समय पर बिजाई करेंगे तो आप ले पाएंगे भरपूर उत्पादन।
0: तो लीजिए विनोद जी, आपके इस सवाल का जवाब दे दिया गया है। अगर इन्हीं बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो अपनी फसल का उत्पादन अधिक से अधिक ले सकते हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुन लेते हैं योगेश कुमार की आवाज़ में।

0: तो अभी आप सुना योगेश कुमार की आवाज़ में उपदेश, और चलते चलते हम आपको कल के कार्यक्रम की
1: बिल्कुल।
0: जानकारी दे देते
1: और
0: हैं।
1: कल के कार्यक्रम से बारे भाई देखिए, मौसम के बारे में सुने भाई थोड़ी बात कर लें। मौसम की अगर बात करें तो देखिए बीच में तापक्रम थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन अब आने वाले समय में पता जा रहा है कि भाई अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री रहने की उम्मीद जताई
0: संभावना
1: जा रही
0: है
1: है, और
0: जी।
1: न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 29 से 31 डिग्री, और उसके बाद अगर कहीं किसी क्षेत्र में थोड़ी बहुत बारिश होती है तो भाई थोड़ा सा तापक्रम कम होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। और कल के कार्यक्रमों के बारे में बता दें, कल 5:10 पर आनंद ले सकेंगे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी का, और साथ ही भाई 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम संसार में एक परिचर्चा आपको सुनवाएंगे, 90 वर्षों की जनसेवा आकाशवाणी का गोरस वाली सफ़र। और योजना की बात करें तो योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में जानकारी देंगे, साथ ही भाई 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में जानकारी देंगे मत्स्य पालन एवं ग्रामीण रोजगार के बारे में, और योजना की बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में जानकारी देंगे, और साथ ही भाई जो हरियाणा की चुनिंदा मंडियां हैं उनके बाजार भाव की भी जानकारी देंगे। और अब भाई देखिए आपको कार्यक्रम कैसा लगा, इसके लिए भी जल्दी से एक बार पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली 110001।
0: और आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है feedback@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं, हमारे कार्यक्रम कैसा लगा इस पर हमें आप अपने विचार साझा कर सकते हैं।
1: इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिव नंदन लाल, कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, जिसमें हम सुनेंगे गजलें जगजीत सिंह जी के स्वरों में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलें जगजीत सिंह जी के स्वरों में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: दी, ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दिखा?
3: हाँ, मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: RBI कहता है,
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
9: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
8: और लाइट बिल के
9: अब 0 रुपए कैसे दूं?
8: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं

0: उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत दिल्ली में 2,800 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होंगी। दिल्ली सरकार 14 जून को यमुना तट स्वच्छता अभियान का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन आवेदन का आज आखिरी दिन, मध्यरात्रि में बंद हो जाएगा पोर्टल। दिल्ली में सार्वजनिक यातायात सेवाओं के विस्तार के लिए दिल्ली सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इसके तहत भारत सरकार की पीएम ई ड्राइव स्कीम, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट के अंतर्गत पूरी तरह से इलेक्ट्रिक 2,800 एयर कंडीशन्ड लो फ्लोर बस दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी के बेड़े में शामिल करने की योजना बनाई गई है।
4: इस अभियान में 1,409 मीटर और 1,412 मीटर वाली इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। इस पहल से दिल्ली में सार्वजनिक यातायात तक पहुंच बेहतर होगी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगी। ये पहल दिल्ली सरकार के उस दृष्टिकोण का हिस्सा है जिसका लक्ष्य पूरे शहर में सार्वजनिक यातायात के लिए डीटीसी की बसों की संख्या बढ़ाना और जीरो एमिशन आधारित यातायात संसाधनों की हिस्सेदारी को भी बढ़ावा देना है। दिल्ली में लगभग 400 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, जो इसे देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस फ्लीट में से एक बनाती है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य इस साल के अंत तक इस संख्या को बढ़ाकर लगभग 7,500 इलेक्ट्रिक बसों तक पहुंचाना है। दिल्ली सरकार के इस पहल से गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने, वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और लोगों को साफ, सुरक्षित और भरोसेमंद सार्वजनिक यातायात प्रणाली उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
3: दिल्ली सरकार 14 जून को यमुना तट स्वच्छता अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी। मुख्यमंत्री अभियान में नागरिकों के साथ मिलकर स्वच्छ और स्वस्थ यमुना के संकल्प को मजबूत करेंगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा है कि यमुना केवल नदी नहीं बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय धरोहर है। यमुना के संरक्षण का दायित्व सरकार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: 14 जून को आयोजित होने वाले यमुना तट स्वच्छता अभियान 2026 के अंतर्गत यमुना रिवर फ्रंट के प्रमुख घाटों पर एक साथ स्वच्छता और जन जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इस अभियान में लगभग 500 सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और स्वयंसेवी संगठनों के साथ हजारों स्वयंसेवकों की भी भागीदारी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी नागरिकों, सामाजिक संगठनों, युवाओं और स्वयंसेवकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सहभागिता से ही स्वच्छ, निर्मल और जीवनदायिनी यमुना का सपना साकार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष भी यमुना व उसके घाटों को स्वच्छ बनाने के लिए मेरी यमुना मेरा कर्तव्य अभियान चलाया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कार्यक्रम में हजारों स्वयंसेवकों ने भाग लिया था और 12 टन से अधिक अपशिष्ट वेस्ट एकत्र कर उसका वैज्ञानिक निस्तारण किया गया था। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष का अभियान और अधिक व्यापक स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन, पुलिस, दिल्ली नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के सहयोग से सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, पीने के पानी, प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन सेवाओं और स्वच्छता संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि

0: सम्मान मेजर बराक की उत्कृष्ट सेवा और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भारत के लंबे योगदान को मान्यता देता है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि देश की अनेक युवा बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना के प्रयासों में मेजर बराक की उत्कृष्ट कार्य कुशलता और अनुकरणीय नेतृत्व ने वैश्विक पटल पर देश का सर गर्व से ऊंचा उठा दिया है। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में इंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्य कर रही हैं। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपए है। दिल्ली के जल और सिंचाई मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज वरुणालय में क्षेत्रीय राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान पूर्ण पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ काम करने पर बल दिया। इस बैठक में सभी अधिकारियों को निवासियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने, उनकी चिंताओं को समझने और निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक नागरिक को सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं और लाभों के बारे में जानकारी हो। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज जनकपुरी में साइकिलिंग अभियान पैडल द बीट संडे ऑन साइकिल आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस रैली में बच्चे, युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और फिटनेस प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अभियान का आयोजन जनकपुरी में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग को इससे जुड़ना चाहिए। उन्होंने नागरिकों से नियमित रूप से खेल और फिटनेस गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान किया।
2: संडे ऑन साइकिल भारत सरकार का एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। खेलों और फिटनेस के इकोसिस्टम को प्रमोट करने की भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की पहल है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में इस पहल को दिल्ली की गलियों तक ले जाना फिटनेस के इकोसिस्टम को बढ़ाने का एक प्रयास।
0: दिल्ली पुलिस ने आज करावल नगर में एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर संडे रेस कार्यक्रम का आयोजन किया। भागता भारत नाम का यह संगठन राष्ट्रीय स्तर के धावक बनने की आकांक्षा रखने वाले पेशेवर धावकों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित करता है। कार्यक्रम के दौरान पुलिस उपायुक्त संदीप लांबा ने संवाददाताओं को बताया कि प्रत्येक रविवार को अलग अलग स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल IDFC फर्स्ट बैंक और AU फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापेमारी की। यह मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। दिल्ली पुलिस ने आज रोहिणी से एक अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी के पास से अवैध शराब और तस्करी में इस्तेमाल की गई एक गाड़ी जब्त की गई। मामले की जांच की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।

0: कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी तरह बनी हुई है। उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के सी ब्लॉक में 4 मंजिला इमारत में आज दोपहर आग लग गई। 3:40 पर घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 4:05 पर आग पर काबू पा लिया गया। इस मामले में स्टेशन ऑफिसर राजकुमार ने बताया कि टीम ने तुरंत सीढ़ियां लगाई, बचाव अभियान शुरू किया और आग बुझाने का काम शुरू किया। उन्होंने बताया कि कुल 8 लोगों को सफलतापूर्वक बचाया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. जेपीएस डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के समिति उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी सभी के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दोहराती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। भारत ने कल गोवा के मडगांव में खेले गए फाइनल में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत दिल्ली में 2800 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होंगी। दिल्ली सरकार 14 जून को यमुना तट स्वच्छता अभियान का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन आवेदन का आज आखिरी दिन, मध्यरात्रि में बंद हो जाएगा पोर्टल। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दी, ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका?
3: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: RBI कहता है,
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। श्रोताओं, कविता सिर्फ शब्दों का जोड़ नहीं होती, यह वो धड़कन है जो समाज के सुख दुख को अपनी आवाज देती है। और जब बात आकाशवाणी की हो तो यह मंच गवा रहा है भारतीय काव्य परंपरा के उस स्वर्णिम काल का, जिसने इतिहास की दशा को बदला है। 9 दशकों का यह सफर दरअसल हमारी भावनाओं, हमारे आंदोलन और हमारी कलात्मक अभिव्यक्ति का एक ऐसा गंतव्य है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सींचा है। इस ऐतिहासिक पड़ाव यानी आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं प्रोफेसर राम रतन प्रसाद, डॉक्टर संध्या रानी, श्रीमती रश्मि भटनागर,

0: श्री राकेश धर द्विवेदी। कवि गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं श्री राकेश धर।
1: ये बड़े हर्ष का विषय है कि आकाशवाणी 8 जून को अपने स्थापना के 90 वर्ष पूरा कर रहा है। इस गोष्ठी के प्रारंभ में हम डॉक्टर राम रतन प्रसाद साहब, जो सहायक प्रोफेसर हैं आत्माराम सनातन महाविद्यालय के, उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि वह आए और अपनी कविताओं को यहाँ पर प्रस्तुत करें।
2: नमस्कार, मेरी कविता है इंतजार किसान का। 80 बरस का हो गया हूँ, फिर भी खेती करता हूँ। वर्षा भिगाया खेत को, सूखने का इंतजार करता हूँ। धूप सुखाया खेत को, हल चलाने का इंतजार करता हूँ। हल चलाया खेत में, मेर छांटने का इंतजार करता हूँ। मेर छांटा कुदाल से, जंगल बटोरने का इंतजार करता हूँ। हल चलाकर बीज बोया, पानी पटाने का इंतजार करता हूँ। पानी पटाया खेत में, हरी भरी होने का इंतजार करता हूँ। हरी भरी हुआ खेत में, फसल काटने का इंतजार करता हूँ। फसल बह गई बार में, कर्ज चुकाने का इंतजार करता हूँ। डूब गया हूँ कर्ज में, कर्ज चुकाने का इंतजार करता हूँ। 80 बरस का हो गया हूँ, फिर भी खेती करता हूँ। दूसरी कविता है मौन।
0: बहुत सुंदर।
2: मौन रहकर मैं हंसता हूँ, मौन रहकर मैं सुनता हूँ, मौन रहकर मैं गाता हूँ, मौन रहकर मैं सहता हूँ। कौन है तू मौन? मौन रहकर मैं कल्पना करता हूँ, मौन रहकर मैं क्रांति करता हूँ, मौन रहकर मैं सृजन करता हूँ, मौन रहकर मैं गरीबी झेलता हूँ। कौन है तू मौन? मौन रहकर मैं सीखता हूँ, मौन रहकर मैं चलता हूँ, मौन रहकर मैं बुलाता हूँ, मौन रहकर मैं समाता हूँ। कौन है तू मौन? मौन मेरी प्रामाणिकता है, मौन मेरी शालीनता है, मौन मेरी कर्मण्यता है। कौन है तू मौन? मेरी तीसरी कविता है निर्माण। निर्माण के लिए संघर्ष कर रहा, सोच समझ कर जिंदगी के थपेरों ने समझा दिया, फिर भी संघर्ष कर रहा। एक न एक दिन होगा सामना, निर्माण के लिए धारा प्रवाह बहा चला जा रहा हूँ। यही मेरी जिंदगी है। कोई देश का निर्माण कर रहा है, तो कोई राष्ट्र को विकसित के राह पर। न हम सोचते मेरी मंजिल क्या है, भटक रहा हूँ निर्माण के लिए। किस वक्त कहाँ थम जाएगी ये जिंदगी क्षण भर के लिए। निराश न हो, कार्य के प्रगति पर, कार्य के प्रगति पर। एक और कविता है जीवन के रंग।
1: जी।
2: जीवन के गहराइयों में उतरकर रो पड़े हैं आज हम। मेरी जिंदगी ठहर गई है, भटक रहा हूँ राहों पर, कमरे में कैद पड़ा हूँ। लगता है जीवन रो पड़ा है, सोच कर मैं घबरा गया हूँ। खुद से लड़ाई लड़ जाऊँ, उन्हीं गहराइयों में जीवन कैद है। अंधेरे में सवाल उबल रहे हैं, किनसे सवाल करूं? उन सवालों के जवाब नहीं है। गहराइयां पताल से भी गहरा है, छटपटाहट मेरी सोच है। यही सोच शामिल है गहराइयों के जंजीर में। तोड़ दूंगा उन जंजीरों को, जीवन के गहराइयों में उतरकर, जीवन के गहराइयों में उतरकर।
1: बहुत सुंदर,
0: बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत।
2: धन्यवाद।
1: मैं अगले प्रतिभागी के रूप में रश्मि भटनागर जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, जिन्होंने रीति गागर नाम की किताब लिखी है और DPS की सेवानिवृत्त अध्यापिका है। वे अपना काव्य पाठ करें।
3: श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आकाशवाणी 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूंगी। यह आकाशवाणी है, 1936 में जन्मी, अब 90 वर्ष की सयानी है, पर सच मानो लगता है कोई अलहड़ गुड़िया दीवानी है। ये खबरों का खजाना है, गीतों का अफसाना है, कभी हास्य व्यंग्य का पिटारा है। यहाँ ज्ञान है, विज्ञान है, मौसम का अनुमान है, कृषि तकनीक की पहचान है और हर नई खोज का भान है। यहाँ खेल जगत की चर्चा है, राजनीति की परिचर्चा है, किसने कब क्या हारा जीता हर एक हिसाब का पर्चा है। यहाँ देश विदेश की जानकारी मिले और गीत संगीत की फुलवारी खिले, कवि सम्मेलन के लगते मेले, कलाकारों के किस्से अलबेले, जीवन का दर्शन मिलता है, यहाँ मान सम्मान भी मिलता है।

0: है, पर अनैतिकता की आलोचना है, अनुचित है जो उसकी भर्त्सना है। संवाद से समस्या सुलझती है, बेईमानी की दाल नहीं गलती है। यहाँ पल पल कुछ घटता रहता है, एक सिलसिला चलता रहता है। कभी माँ लगती है, कभी सहेली जैसी, कैसे हर पहलू छू लेती है एक पहेली जैसी। जन जन के दिल में इसकी कहानी है, भारत के विकास की निशानी है। जी हाँ, ये आकाशवाणी है, आकाश से उतरती हम तक पहुँचती सत्य की अलौकिक छवि है ये। सत्य की वाणी, सत्य की खोज, आकाशवाणी है सत्य का उद्घोष, इसीलिए तो ये आकाशवाणी है। मेरी अगली कविता, यदि आकाशवाणी का दिल होता तो कुछ ऐसा संदेश देता जैसा ये गुलाब दे रहा है।
1: बहुत अच्छे।
0: मेरी अगली कविता, गुलाब। आज अपनी एक डायरी खोलकर देखी थी कई दिनों के बाद, तभी पाया कि गुलाब का एक सूखा पत्ता मेरी किताब के खाली पन्नों में जाने कब से छिपा बैठा था। उदास, गुमसुम, मुरझाया सा, धीरे से लिया मैंने हाथों में, निहारा, सहलाया और पूछा, कौन हो तुम प्यारे, यहाँ कैसे पधारे। वह बोला, गुलाब हूँ मैं, अपनी डाली से झरकर उड़ता भटकता जाने कब आ बैठा यहाँ। मैंने कहा, हाय रे गुलाब, मेरी डायरी में तुम्हारा स्वागत है, पर तुम्हें पनाह भी मिली तो इन पन्नों में। यहाँ क्या मिला तुम्हें, वीरानी, गुमशुदगी और इस किताब की कैद। उसने कहा, आज मैं गुलाब की याद भर हूँ, पर कभी खूबसूरत था मैं, कुदरत की नियामत था, अपनी डाली की शान, अपने बगीचे की रौनक था मैं। बहती हवाओं को महकाया है मैंने, झूम कर सबको हंसाया है मैंने। आज मैं कुछ भी नहीं, फिर भी ये तसल्ली है, 2 दिन के जीवन में 2 पल खुशियाँ तो बांटी। तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या क्या बांटा, कितनी दुआएं समेटी, कितनी मुस्कानें बिखेरी, कितने आंसू पोंछे, किसके दर्द बांटे। 2 पल भी अपने जीवन में इनमें से कुछ किया है तो आज तू भी एक गुलाब है, तू भी एक गुलाब
1: बहुत
0: है।
1: सुंदर,
0: बहुत सुंदर,
1: बहुत सुंदर।
0: शुक्रिया। मुझे लगता है जैसे आकाशवाणी हमें एक सूत्र में बांधती है, रास्ता दिखाती है, दुनिया से परिचय कराती है, कुछ इसी तरह माँ भी हम सबको जोड़ती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तो कुछ पंक्तियाँ, मुझे याद नहीं आता कि जितना सुकून माँ की गोद में मिला था उतना कभी और पाया था, ना ही याद आता है कि जितनी सुरक्षित मैं माँ की बाहों में थी उतनी कहीं और रही थी। जब जब माँ ने मेरा माथा चूमकर जगाया वो सुबह सबसे सुंदर थी, जब जब माँ ने थपकी देकर सुलाया वो नींद कितनी गहरी थी। माँ की लोरी सबसे प्यारा गीत था और माँ का आंचल जैसे ठंडी घनी छाँव। माँ का प्यार मुझे ईश्वर का वरदान है और माँ का विश्वास मेरा सबसे बड़ा संबल। जब माँ ने प्रोत्साहन दिया तब मेरी जीत पक्की थी, जब माँ ने हमारा घर जोड़ा उसकी नींव पक्की थी, जब जब मैं टूटकर बिखरी माँ के धैर्य ने समेटा, जब जब मेरा आत्मविश्वास डोला
1: बहुत
0: माँ के
1: सुंदर,
0: शब्दों ने सहेजा।
1: बहुत सुंदर।
0: मेरे आंसुओं से पहले माँ रो देती हैं,
1: बहुत खूब,
0: मेरी मुस्कानों को अपने दिल में बसा लेती हैं, मेरे सपनों को वो अपना सपना बना लेती हैं, मेरी ऊंची उड़ान के लिए वो अपनी जी जान लगा देती हैं। माँ, तुम मेरी गुरु, मेरी सखी, मेरी आत्मा, मेरी प्रेरणा हो। माँ, तुम मेरे जीवन में हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारी परछाई बनकर खड़ी हूँ, परछाई बनकर खड़ी
1: बहुत
0: हूँ। बहुत
1: सुंदर, बहुत
0: सुंदर,
1: सुंदर, बहुत सुंदर।
0: धन्यवाद। एक छोटी सी कविता हमारे मजदूर भाइयों के लिए जो इस तपती दोपहरी में काम करते हैं उन्हें अर्पित
1: जी
0: है। मजदूर, छैना हथौड़ी, कल पुर्जे लिए हाथ, करता प्रहार, देता आकार, फर्श, दीवारों, छतों में भरता जान, सदियों से बनाता आया है महल, मीनारें, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, देखकर दुनिया तारीफ करते नहीं थकती। नाम होता है किसी राजा, महाराजा या बिल्डर का, इस मजदूर को कोई याद नहीं करता, फिर भी ये जुटा रहता है अपनी कृति बनाने में, अपनी रोजी रोटी कमाने में।
1: बहुत
0: जी
1: सुंदर,
0: हाँ, मजदूर है ये।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: कारखानों में, फैक्ट्री में, लोहे की भट्टी पर गढ़ता है बर्तन, कलपुर्जे, वस्तुएं, तपाता झुलसाता है अपना बदन, आग की चिंगारियों की परवाह नहीं करता, सुबह से सांझ भट्टी में कोयला झोंकता, पसीना टपकाता, धूली धूसरित करता जाता है काम, दिन की कमाई से बनाता है 2 रोटी, खा लेता है कभी अचार तो

भी नमक से ही रात होते ही बना लेता है धरती को अपना बिछौना और किसी बांस पर लटकी फटी पुरानी चादर को अपनी छत। मस्त सोता है बिना चिंता किए पंखे या कूलर की, भोर होता ही जुट जाता है फिर उसी लगन से अपनी रोजी रोटी कमाने में। जी हाँ, मजदूर है ये, सपने बहुत नहीं हैं इसके, पर दूसरों के सपने पूरे करता है। ईंट गारा पत्थर ढोते

0: बहुत सुंदर,
1: पर ये
0: बहुत
1: मजदूर
0: सुंदर,
1: है,
0: बहुत सुंदर,
1: लगा रहता है धीरज से
0: अद्भुत अद्भुत।
1: अपनी कृति बनाने में, अपनी रोजी रोटी कमाने में। जी हाँ, मजदूर है ये।
0: बहुत
1: बहुत
0: सुंदर,
1: धन्यवाद। कविता तो लंबी है, लेकिन उसको कुछ पंक्तियों में कहने की कोशिश
0: बहुत
1: करूँगी।
0: सुंदर, बहुत सुंदर।
1: नारी पर बहुत बार लिखा जा चुका है, पर एक बार फिर कुछ लिखने का और बोलने का प्रयास कर रही हूँ।
0: जी
1: नारी को क्या कहकर बुलाओगे तुम?
0: जी बहुत
1: नारी को
0: बढ़िया,
1: क्या कहकर बुलाओगे तुम? क्या शब्दों में उसे परिभाषित कर पाओगे तुम?
0: बहुत सुंदर,
1: कोशिश करके देख लो, क्या नारी के किसी पर्याय से न्याय कर पाओगे तुम? पुरुष
0: बहुत अच्छे।
1: प्रधान समाज ने नाम तो कई दिए उसे, अबला अर्धांगिनी, घर की इज्जत, पुरुष की परिछाई, और माना कुछ ने नारी को लाचारी, अनचाही, धरती पर बोझ, माँ बाप के कंधों पर दहेज की गठरी। क्यों कोसते हो उसे, क्यों गर्भ में मारते हो? कुप्रथा कुरीतियाँ तो पुरुष ने बनाई, पर लांछन की माला क्यों स्त्री को पहनाई?
0: क्या बात है, सामाजिक
1: नकाब
0: बोध
1: से
0: की कविता है,
1: ढका,
0: बहुत सामाजिक बोध की कविता है।
1: नकाब से ढका, कभी उसे पर्दे में छिपाया, घर के फर्नीचर की तरह उसको सजाया,
2: बहुत सुंदर,
1: रोक
2: बहुत अच्छे
1: टोक के
0: सुंदर,
1: पहरे बिठाए, जंजीरों में डाल दी। गाय थी क्या नारी जो खूंटे से बांध दी?
0: बहुत अच्छे।
1: भोग की वस्तु कभी पायदान समझते हो? बस करो समाज के ठेकेदारों, क्यों नारी को इंसान नहीं सजावट का सामान समझते हो?
2: बहुत
1: बहुत
2: सुंदर
1: सुंदर,
0: है, बहुत
1: बहुत
0: सुंदर, बहुत
1: सुंदर है।
0: सुंदर, बहुत
1: ये
0: अच्छे हैं।
1: समस्या तुम्हारी है कि नारी को तुमने ना समझा ना जाना। कभी नारी के अंतर मन में झांका होता, तभी तो उसकी गहराई को आंका होता। तो अब तुम्हारे दिए नामों का ना मोल कोई, तो अब तुम्हारे दिए नामों का ना मोल कोई।
0: बहुत सुंदर,
1: मुक्त किया नारी ने स्वयं को, खोल हर बंधन कोई। पहचाना है अपना अस्तित्व, अपना वजूद उसने, जाना है अपना लक्ष्य इस सदी में उसने। आज मैं देती हूँ नारी को एक नया नाम, नारी है शक्ति, शक्ति संकल्प की, शक्ति हर दिशा के छोर को, हर उच्चतम शिखर को चूमने के संकल्प की, ताकि स्वप्न हो सकें साकार। स्वप्न एक डॉक्टर, वैज्ञानिक, अभियंता, अधिकारी, नेता, अभिनेता, सैनिक, या बनने का कलाकार, या
0: बहुत
1: फिर
0: अच्छे,
1: करना खेल जगत में कायम विश्व रिकॉर्ड। बस इसी एक लक्ष्य को साधे उसका मन, कोमल, विमल,
0: बहुत खूब, बहुत
1: अविरल,
0: सुंदर, बहुत सुंदर,
1: गतिमान,
0: अति सुंदर
1: अति
0: कविता है,
1: सुंदर। न
0: कविता
1: दंभ
0: है,
1: न गर्व, चेहरे पर केवल एक स्मित मुस्कान, मानो धैर्य का प्रतिबिंब। नारी है शक्ति, नवजीवन के सृजन की, स्फुरन की, पोषित करने की, शिक्षित करने की, और संस्कारों से दीक्षित करने की। नारी है धैर्य, नारी है प्रेरणा, नारी है शील, नारी संवेदना, सबकी पीड़ा, सबकी चिंता, प्रेम और स्नेह से सिंचित दुलार से मरहम करती, हर घाव भरती, हर पीड़ा हरती।
0: बहुत सुंदर,
1: अपने शोषणकर्ता को भी एक आह भरकर कर देती क्षमा,
2: बहुत
1: उसके तुच्छ
0: खूब, बहुत
1: व्यवहार
0: खूब,
1: को,
0: बहुत अच्छा है,
1: उसके तुच्छ व्यवहार को अपने एक अश्रु से धोकर आगे बढ़ जाती। सागर से गहरा और आकाश से भी बड़ा है नारी का हृदय, तो ब्रह्मांड से भी बड़ा है।
0: वाह,
1: नारी की उपमा बस नारी ही है। कोशिश करके देख लो, क्या शब्दों में परिभाषित कर पाओगे तुम? क्या नारी के किसी पर्याय से न्याय कर पाओगे तुम?
0: क्या बात है,
1: न्याय
0: क्या
1: कर
0: बात है,
1: पाओगे
0: क्या
1: तुम?
0: बात है, बहुत सुंदर, सामाजिक
1: धन्यवाद।
0: बोध की कविता है, बहुत अच्छी कविता है। मैं अगले प्रतिभागी के रूप में संध्या रानी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, वे आए और अपनी कविता का पाठ करें।
3: नमस्कार, मेरी कविता है आकाशवाणी। आकाश से उतरकर जब आती है वाणी, धरा भी पुलकित हो जाती है, क्योंकि उसका नाम है आकाशवाणी। सबके मन को बहलाकर, ज्ञान रत्नों से सजाकर, कुछ नया करने की राह दिखलाती है, क्योंकि यह है आकाशवाणी। अनेक विषयों की जानकारी देकर हमारा श्रृंगार करती है, देश विदेश की खबरें सुनाकर हमें जागरूक करती है, क्योंकि इसका नाम है आकाशवाणी। अब मैं अपनी दूसरी कविता सुनाती हूँ, महिलाएं। महिलाएं चाहे घरेलू हों या कामकाजी, दिन भर चक्की की तरह पीसती रहती हैं। कभी ये नहीं हुआ तो कभी वो नहीं हुआ, इसी उधेड़ बुन में जिंदगी बीत जाती है। हर किसी की फरमाइश

0: बिक्री करने को जी तोड़ कोशिश करती हैं, फिर भी जरा सी बात पर कभी पति बरस पड़ते हैं तो कभी बच्चे रूठ जाते हैं, और मेहमान मेहमान तो नाक भों सिकोड़ कर चले जाते हैं। हर कोई चाहता है उससे अपनी उम्मीदों पर खड़ा उतारना, लेकिन यह कोई नहीं समझता कि वह भी हार मास की बनी है।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर,
2: बहुत बहुत बढ़िया
0: कविता है। फर्क है, फर्क है जमीन और आसमान में, इंसानों के जज्बाती रिश्तों में, विचारों में
1: जी,
0: नक्षत्रों की चमक और चाल में
2: जी,
0: खट्टे मीठे अनुभवों के सवाल में फर्क है।
1: बहुत अच्छा।
0: फर्क है हंसते और रोते हुए
1: बहुत सुंदर
0: चेहरों में, कथनी और करनी के तेवरों में, सर्द और गर्म हवाओं के झोंकों में फर्क है, पवित्रता और अपवित्रता के भाव में, आज और कल के अभाव में, नैतिकता और अनैतिकता की चाल में, जमाने की भागती रफ्तार में फर्क है।
1: अद्भुत अद्भुत अद्भुत।
0: फर्क है अश्लील और शील शब्दों की धार में, अपनी अपनी दृष्टि और विचार में, हमारी और आपकी आप बीती के इजहार में फर्क है। और दूसरी कविता है, मैं दिल्ली हूँ, दिल्ली की जमीन आसमाओं के साथ, दिल्ली की जमीन आसमाओं के साथ पाया होगा कितना मैं जानती नहीं
1: जी।
0: दिल्ली की जमीन आसमाओं के साथ पाया होगा कितना मैं जानती नहीं, कभी सजा होगा, कभी सजा होगा शाहजहां का महल
1: जी।
0: कभी सजा होगा शाहजहां का महल, कोई तड़पा होगा स्वच्छंद काननों में उड़ने के लिए, घोड़ों की टापों की आवाजें आई होगी चांदनी चौक से, घोड़ों की टापों की आवाजें आई होगी चांदनी चौक से, रौनक की शान होगी लाल किला की गुंबजों पर, रौनक की शान होगी लाल किला की गुंबजों पर, कितनी बार सजी और उजाड़ी गई हूँ मैं, कितनी बार सजी और उजाड़ी गई हूँ मैं, क्यों पीछे याद करूँ, क्यों पीछे याद करूँ बर्बादी की दास्तानों को,
1: बहुत अच्छा,
0: क्यों पीछे याद करूँ बर्बादी की दास्तानों को, जो वक्त का मोहताज है,
1: बहुत सुंदर, बहुत
0: जो वक्त का मोहताज है, फिर उमंगों में आज है, बिचर रही हूँ उस मुक्त पवन की तरह,
1: बहुत सुंदर,
0: लहरों में रेगिस्तानी झोंकों में, यहाँ अपना कुछ भी नहीं है।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर,
3: बहुत
2: आदरणीय राकेश द्विवेदी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे भी अपना कविता पाठ करें
4: जी। बहुत धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है, तुम नहीं थे तो कुछ स्वर अधूरे रह गए। तुम नहीं थे तो कुछ

एक छोटी सी कविता से मैं बात अपनी रखना चाहता हूँ। ये प्रेम कविता है, इधर बड़ी चर्चित हुई मेरी ये कविता, सुनिएगा। जो

0: छोटी सी
1: आपकी
0: प्रेम
1: कविता।
0: कविता जो कभी लिखा था भावनाओं के परवास को क्रम देने के लिए। मेरी कोशिश रहेगी कि तमाम आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए कि मेरे दिल के किसी कोने से लिखी गई ये कविता आपके दिल में पहुँच कर उतर करके ठहर सके। मैं कविता पाठ करता हूँ, यात्रा कीजिएगा मेरे साथ। मेरी कविता का शीर्षक है उसकी याद फिर से आई है। उस

0: बहुत खूब
1: बहुत खूब
0: बहुत
1: बहुत
0: खूब
1: खूब जी धन्यवाद। बहुत ही सुंदर पाठ किया गया तमाम हमारे प्रतिभागियों के द्वारा। मैं आशा करता हूँ कि कविताओं के माध्यम से हम इसी तरीके से सामाजिक मंगल की, सामाजिक सद्भावनाओं का प्रसार प्रसार करते रहेंगे। धन्यवाद श्रोताओं।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे प्रोफेसर राम रतन प्रसाद, डॉक्टर संध्या रानी, श्रीमती रश्मि भटनागर और श्री राकेश धर द्विवेदी। गोष्ठी का संचालन कर रहे थे श्री राकेश। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। वक्त हो गया है 8:30 और ये वक्त है फिल्म संगीत का। और फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ तलत। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत से जो है फिल्म गुरु से। और मुझे लगा कि इस वक्त, क्योंकि आज रविवार है और परिवार सब एकजुट बैठा होगा, खाना वाना हो चुका होगा और अब चल रही होगी आमों की महफिल, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ज़बरदस्त गीत आपको सुनवा दिए जाएँ।

और अब भारत के कई अंचलों के आंचल को भिगोने लगा है मॉनसून। तो अपनी छुट्टियां अपनी वेकेशंस आप कर लीजिए प्लान, क्योंकि अगर आपको भीगने का मन है तो बस फटाफट उन शहरों में पहुंच जाइए जहां मॉनसून अब तक पहुंच चुका है। और अगर भीगना नहीं चाहते हैं तो फिर आप वो शहर चुन लीजिए जहां पर अभी मॉनसून ज़रा दूरी पर है।

और अब कुछ यही है कि जो बादलों का दिल है वो खुलने लगा है और बारिश का मौसम बस आने लगा है, और वक्त ये कह रहा है कि फिलहाल आपसे इजाज़त ले ली जाए, फिर मुलाकात होगी आपसे 11:10 पर। तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9 बजे समय होगा इवनिंग न्यूज़ का और 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में खबरें। और अब से कुछ ही क्षण बाद यानी अब आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने

0: व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र

0: देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुँचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गाँव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना

0: अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान यदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
1: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चालिंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम VC प्रमोद विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Indonesia held joint commission meeting in New Delhi. Discuss comprehensive strategic partnership across key sectors including defense, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Kursiong, Kalimpong and Siliguri as Himalayan cities to boost tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into west central and entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, the two leaders reviewed the entire spectrum of bilateral relations under their comprehensive

0: after registering a commanding 17-6 victory over Kazakhstan's Ozimzan Dastanbek. In the 97-kilogram category, Vicky bagged bronze, defeating Mongolia's Ghangkhuya Ganbatar 4-0. In cricket, Afghanistan were 113-5 in their first innings at stumps on day 2 of the one-off test against India in New Chandigarh, trailing by 451 runs. Rehmat Shah remained unbeaten on 43 at the end of play. For India, debutant Manav Sutar picked up 3 wickets, while fast bowler Prasidh Krishna claimed 2. Earlier in the day, India declared their first innings at a commanding 564-8. Captain Shubman Gill led the charge with 126, while KL Rahul struck 100. Rishabh Pant and Sai Sudarshan contributed 81 runs each, and Washington Sundar remained unbeaten on 52. For Afghanistan, Salim Safi was the standout bowler, taking 6 wickets. In French Open tennis, men's single cycle clashes underway between Germany's Alexander Zverev and Italy's Flavio Cobolli at the Roland Garros Stadium. Second seed Zverev is playing fourth Grand Slam final of his career, while 10 seed Cobolli is featuring in his first Grand Slam final. Both players are chasing their maiden Grand Slam title. The Andhra Pradesh government is launched the Yogandhra 2026, a statewide campaign aimed at promoting yoga and healthy living ahead of the International Yoga Day. The 14-day program will culminate on 21st of June with a grand International Yoga Day celebration in Amravati, where thousands of participants are expected to perform yoga together. The campaign seeks to encourage widespread public participation and raise awareness about the benefits of yoga. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Indonesia hold joint commission meeting in New Delhi, discuss comprehensive strategic partnership across key sectors, including defense, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Karsiong, Kalimpong and Siliguri as Himalayan cities to boost tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into west central and an entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। मीटिंग में दिफा, तिजारत, तवानाई और कनेक्टिविटी समेत कई अहम शोबों में जामे कलीदी शराकतदारी पर तबादले ख्याल किया गया। मगरबी बंगाल की हुकूमत दार्जिलिंग, मिरिक, करसियांग, कलमपोंग और सिलीगुड़ी के हिमालया शहरों के तौर पर तरक्की देगी, ताकि सियाहत और इलाकाई मईशत को फ़रोग मिल सके। जनूब मगरबी मानसून वस्ती, मरकजी और पूरे शुमाल मशरकी खलीज बंगाल की तरफ मजीद आगे बढ़ गया है, और भारत के पहलवानों ने मंगोलिया में उलानबातर ओपन में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के 2 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। 8वीं भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के उनके हम मनसब सुगियोनो ने मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत की। मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने अपनी जामे कलीदी शराकतदारी के तहत बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मीटिंग के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के मौके पर तबादले ख्याल किया। इन शोबों में सियासत, दिफा, सलामती, समंदरी सरहद की सिक्योरिटी, तिजारत और सरमायाकारी, अद्वियात साजी और हिफ्जान सेहत, डिजिटल कारी, तवानाई, कनेक्टिविटी, खला, तालीम, सकाफती मामलात और अवाम से अवाम के माबैन रवाबित शामिल हैं। दोनों लीडरों ने बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी

प्रोग्राम के जुमरे में दीपक ने कजाकिस्तान के एसआईएल को फाइनल में 0 के मुकाबले 6 से शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया। दिनेश ने 125 किलोग्राम के जुमरे में कजाकिस्तान के कासिम बेग को 0 के मुकाबले 2 से शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम के जुमरे में कजाकिस्तान के दास्तान बेग को 6 के मुकाबले 17 से हराया। 57 किलोग्राम के जुमरे में विकी ने मंगोलिया के गानबाटर को 0 के मुकाबले 4 से शिकस्त देकर कांसे का तमगा हासिल किया। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान जारी एक ऑफ टेस्ट में मैच के दूसरे दिन आज अफगानिस्तान की टीम ने अपनी पहली इनिंग में 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। वह भी भारत के स्कोर से 451 रन से पीछे हैं। भारत की तरफ से पहली बार खेलते हुए मानसूथर ने 3 विकेट जबकि तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट हासिल किए। भारत ने दिन में अपनी पहली पारी 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर खत्म करने का ऐलान किया। कप्तान शुभमन गिल ने 126 रन जबकि केएल राहुल ने 100 रन बनाए। ऋषभ पंत और साई सुदर्शन दोनों ने 81-81 रन बनाए और वाशिंगटन सुंदर ने 52 रन बनाए। अफगानिस्तान की तरफ से सलीम सैफी 6 विकेट हासिल करके नुमाया गेंदबाज रहे। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि साइकिलिंग से कुर्रे अर्ज साफ सुथरा रहता है और इससे ट्रैफिक जाम के बड़े मसले का हल भी फराहम होता है। वजीर मौसूफ ने आज सुबह नई दिल्ली में साइकिल पर फिट इंडिया संडे की 70वीं पहल में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मांडविया ने लोगों पर जोर दिया कि वो इस पहल में शामिल हों और फिट इंडिया का नजरिया अपनाएं। अदाकार विक्रांत मैसी ने भी साइकिल पर फिट इंडिया संडे मुहिम में हिस्सा लिया और इस पहल को शानदार करार देते हुए कहा कि यह तहरीक बन गई है। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। मीटिंग में दिफा, तिजारत, तवानाई और कनेक्टिविटी समेत कई अहम शोबों में जामे कलीदी शराकत दारी पर तबादले ख्याल किया गया। मगरबी बंगाल की हुकूमत दार्जिलिंग, मिरिक, करसियोंग, कलमपोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयाई शहरों के तौर पर तरक्की देगी ताकि सयाहत और इलाकाई मईशत को फरोग मिल सके। जनूब मगरबी मानसून वस्ती, मरकजी और पूरे शुमाल मशरकी खलीज बंगाल की तरफ मजीद आगे बढ़ गया है। और भारत के पहलवानों ने मंगोलिया में उलान बातर ओपन में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के 2 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

संजय लीला भंसाली यकीन मारूफ तरीन तौलीद कुनंदे वो कारगर्दा ने सिनेमा ये हिंदी के अगलबन बेखातिर तहये करदन फिल्माये इस्तेसनाई व बेखुसूस इंतबाखात अज दास्तान हाइये क्लासिकी ये शेक्सपियर शोहरदारत व बासाबिकये फिल्माये पुरफरोश बरहुरदारत ताखीरी दर दर्क व शिनाख्तन इस्तेदाद रानवीर सिंह नदाश व तस्मीम गिरफ के दर शाहकार आयंदा खुद अज रोमियो जूलियत शेक्सपियर आन पिसर बा इस्तेदादो मकबूल रा बरगुजीनत बराबरीन फिल्मज बेनामे गलियों की रासलीला रामलीला के दौरान रानवीर सिंह नक्श राम अज गुजरात रा ईफा नमूदे तमाम तमाशा चंदा गर्विदये खुद साख भानसारी हत्ता बराई ये इंतखाब नक्श जन दिक्कत कारी रा बेकार बोर्ड व दीपिका पादोकोन रा दर मुकाबिद सिंह बरगुजीद कुल्ले फिल्म दास्तानश वो हत्ता तमाम तराने हाई ये आन अज लहाज मारूफियत मकबूलियत फौगुल आदई रा बेतसावुर्द व रानवीर सिंह शबान आन वजह सितारा ये रदय नखोस रा बेतसावुर्द आन चाहरोमीन फिल्म उबूद व हजूरश मानंद यक सितारा ये दरख्शान बूद फिल्म मस्कूर बे उन्होंने बुजुर्ग तरीन मौफियत तिजारी दरामद व दर बाजाए बिलीत फरोशी हदूदन 209 मिलियन डॉलर राबे दसावुड रानवीर सिंह तमजीद व सितइश फरावानी रा अज जुमरे हाइये गुना गुन दरियाफ कर्द वो बारे दीगर बराइये बेहतरीन हुनरमंद फिल्म फेयर नामजद शुद

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दो दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य में लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय चिड़ियाघर में स्मार्ट डिजिटल गाइड के रूप में NZP साथी ऐप लॉन्च किया और सेल्फ टिकटिंग कियोस्क का उद्घाटन किया। इस ऐप का उद्देश्य ऑनलाइन टिकट बुकिंग को आसान बनाकर चिड़ियाघर में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष व्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में

0: northeast Bay of Bengal. According to the India Meteorological Department, southwest monsoon also advanced into some more parts of northwest Bay of Bengal. Entire Nagaland, Manipur, Mizoram, and some parts of Tripura, Assam, and Arunachal Pradesh. It predicted heavy to very heavy rainfall at isolated places over coastal Karnataka, interior Karnataka, Kerala, Mahe, sub-Himalayan West Bengal, and Sikkim today. And Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has said that the state government is closely monitoring rainfall patterns and taking all necessary steps to safeguard farmers' interests. Speaking to the media in Nagpur, Mr. Fadnavis said, despite an overall forecast of 92% of normal rainfall this year, some districts in Marathwada, West Vidarbha, North Maharashtra and other drought-prone regions are likely to receive deficient rainfall due to the impact of El Nino. And that is the end of this news bulletin.
1: आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं AR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार मध्य रात्रि के 1:10 गीत सुनहरे, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी गीतों के, आपको दिल तक आपके पहुंचते हैं और इस सफर में हम साथ रहते हैं। तो चलिए पुराने नगमों की फहरिस्त आप तक पहुंचा रहे हैं और सबसे पहला गीत मन्ना डे की आवाज़ में आपके लिए आ रहा है, जिंदगी कैसी है पहेली।

फिल्म कटी पतंग से किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत। अब आइए सुनवाते हैं आपको मोहम्मद रफ़ी का स्वर है और फिल्म हीर रांझा से अगला गीत।

गीत सुनहरे कार्यक्रम सुन रहे हैं आप अपनी दोस्त कीर्ति के साथ। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पुराने फिल्मी नगमे, उन यादों को ताज़ा कर रहे हैं इन गीतों के जरिए। अगली आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की सुनवा रहे हैं आपको, आइए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।

0: खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, खुश रहे।
1: अब आइए सुनते हैं फिल्म प्यारा दुश्मन से रफीक सागर की आवाज़ में, संगीतकार बप्पी लहरी और बोल लिखे हैं कुलवंत जानी ने।

अभी आपने सुना इतना चुलबुला गीत फिल्म एक दूजे के लिए से लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत से पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। अब आपको सुनवाते हैं अगली आवाज़ किशोर कुमार की।

अब इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए आ रहा है, जिसमें आप सुनेंगे आवाज़ें आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, भूपेंद्र व अन्य आवाज़ों में ये गीत।

0: फिल्म जेल यात्रा से आप सुन रहे थे इस गीत को, आर डी बर्मन का संगीत था। इसी के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अब समय है समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा में श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने आश्वासन दिया है कि बढ़ती मांग के बावजूद नागालैंड में पेट्रोल, डीजल और LPG की निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी। अनिर्बाध आपूर्ति जारी है। कंपनियों ने बताया कि पर्याप्त ईंधन भंडार उपलब्ध है और उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए निरंतर आपूर्ति की जा रही है। घरेलू उपभोक्ताओं को LPG की आपूर्ति जारी है और राज्य भर में वितरण सुचारू रूप से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कल राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ. एम नागराज को मैदान में उतारा है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक में विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार हैं। मंगोलिया में उलान बटोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एताकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने

अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माही, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Himalayan West Bengal and Sikkim today. In tennis, Germany's Alexander Zverev clinched his maiden Grand Slam title, defeating Italy's Flavio Cobolli in a thrilling five-set final to win the French Open crowd at Roland Garros. The victory ended Zverev's long wait for a major title after runner-up finishes at the US Open in 2020, the French Open in 2024, and the Australian Open in 2025. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 2:10 हुए हैं। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी कीर्ति आपके साथ। कार्यक्रम गीत बहार लेकर हाजिर हूं। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। तो गीतों की जो बहार है वो इस कार्यक्रम में आप पर छाने वाली है। तो आप तैयार हैं? जी, मैं तो तैयार हूँ आप तक इन गीतों को पहुँचाने के लिए। तो बस आइए मिलकर आनंद लेते हैं इन गीतों को, जो कि आपके दिल और कानों तक पहुँचेंगे बैक टू बैक।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

0: इन गीतों को सुनकर ऐसा लगता है कि बस खो जाओ, लेकिन समय जो है इजाजत नहीं दे रहा। यहीं खत्म होता है नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार। अब अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाजत और अब होंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर।

0: भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। भूटान में आज देर रात 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सीज्मोलॉजी के अनुसार ये भूकंप भारतीय समय के अनुसार रात 11:06 पर भूटान के पुनाखा के पास 26 किलोमीटर की गहराई पर आया। इसके बाद 2.8 और 2.4 तीव्रता के कई झटके भी महसूस किए गए। फिलहाल किसी के नुकसान या जानमाल के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। भूटान में आए भूकंप के बाद भारत में सिक्किम और उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। उन्होंने रोलैंड गैरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोवोली को हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया। विश्व के तीसरे नंबर के खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फिलिप चैट्रियर कोर्ट पर खेले गए 4 घंटे 20 मिनट के मुकाबले में 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 से जीत हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, India and Indonesia discussed avenues for further strengthening cooperation in various fields including political, defense and security, maritime, trade and investment, pharma and healthcare, digital, energy, connectivity, space, education, consular and cultural domains, and people-to-people exchanges. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. In his opening remarks, Dr. Jaishankar said that the joint commission between both nations is convening after a gap of 4 years, and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. West Bengal is set to become the 36th state to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which is the world's largest publicly funded health insurance scheme. The National Health Authority and Government of West Bengal will sign a memorandum of understanding today for the implementation of ABPMJAY in the state. The MOU will be signed in New Delhi in presence of Union Minister for Health and Family Welfare JP Nadda and West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. A high-level delegation from the European Union will arrive in Guwahati, Assam today for a two-day visit aimed at strengthening cooperation with India's northeastern states. According to the EU, discussions will focus on sectors where Europe and the North East share common interests, including renewable and green energy, sustainable urban infrastructure, healthcare, and pharmaceuticals. The visit is part of efforts to advance priorities outlined in the Comprehensive Strategic Agenda agreed by India and the European Union at the summit in January. The southwest monsoon has further advanced into some more parts of west central and entire northeast Bay of Bengal. According to the India Meteorological Department, southwest monsoon also advanced into some more parts of northwest Bay of Bengal, entire Nagaland, Manipur, Mizoram, and some parts of Tripura, Assam, and Arunachal Pradesh. It predicted heavy to very heavy rainfall at isolated places over coastal Karnataka, interior Karnataka, Kerala, Mahe, sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has said that the state government is closely monitoring rainfall patterns and is taking all necessary steps to safeguard farmers' interests. Speaking to the media in New Delhi, Mr. Fadnavis said, despite an overall forecast of 92% of normal rainfall this year, some districts in Marathwada, West Vidarbha, North Maharashtra and other drought-prone regions are likely to receive deficient rainfall due to the impact of El Nino. He said the state government has been issuing timely advisories to farmers to help them cope with the evolving weather situation. Delhi Chief Minister Rekha Gupta and Union Minister of State for Road Transport and Highways Harsh Malhotra laid the foundation stone for a 138 crore rupees sewer development project in Delhi's Karawal Nagar Assembly constituency. Addressing the gathering, the Delhi Chief Minister said, over the past year, development projects worth more than 300 crore rupees and they have been approved in the Karawal Nagar Assembly constituency through the Chief Minister's Development Fund, the MLA Fund and the Yamuna Par Development Board. And in Nepal, the two-day fourth edition of the Kalinga Literary Festival concluded in Kathmandu, centered on the theme Beyond Borders, South Asian Literature in a Changing World. The festival brought together literateurs, writers, researchers and cultural personalities from across South Asia, including Nepal. One of India's leading international literary events, the Kalinga Literary Festival, has been organizing in its Kathmandu edition since 2022. This year's festival explored how South Asian literature, art and intellectual traditions engage with contemporary global realities. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 3:10 और

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत और गजल, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। सुबह के 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। सुबह के 4:20 और पूरे 15 सेकेंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कर्नाटक म्यूजिक पर आधारित एक कार्यक्रम है जिसमें आज आप सुनेंगे शीर गाजीज एस गोविंद राजन का रागम कल्याणी में गायन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 जून 2026 सुबह के 4:53 और पूरे 45 सेकंड हो चुके हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें, जिसमें आज का विषय होगा अश्वथासन और तितली क्रिया। 5:20 पर आपके लिए लेकर आएंगे देशभक्ति गीत और 5:30 पर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कार्यक्रम स्वर रंजनी में आज आप सुनेंगे नितिन शर्मा का राग ललित में गायन।

0: इंद्रप्रस्थ पर सुबह 6:10 का वक्त होगा कार्यक्रम वंदना का, और जिसमें आप सुनेंगे भक्तिमय संगीत। 6:40 पर आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम चिंतन, और 6:45 पर श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। छः बजकर पचपन मिनट पर आपके लिए लेकर आएंगे संस्कृत में समाचार। 7:10 का वक्त होगा संगीतिका का, और 7:30 पर आपके लिए कार्यक्रम होगा गीतों भरी गुड मॉर्निंग। 8:00 हिंदी में समाचार और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर आपके लिए होंगे उर्दू में समाचार, और 8:45 पर स्वर गंगा में आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। 9:15 पर आज के लिए हमारी मेहमान कार्यक्रम में एक स्पेशल पेशकश होगी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 5:00 को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो की ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम

0: में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होंगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित है। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सहनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे, जिसके बाद पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ ये संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की थी। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, India and Indonesia discussed avenues for further strengthening cooperation in various fields, including political, defense and security, maritime, trade and investment, pharma and healthcare, digital, energy, connectivity, space, education, consular and culture domains, and people-to-people exchanges. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. In his opening remarks, Dr. Jaishankar said that the joint commission between both nations is convening after a gap of 4 years, and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. Loksabha Speaker Om Birla will inaugurate the 3-day Zone 2 conference of the Commonwealth Parliament.

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी सांस भरें, दोनों हथेलियां थाइस के

बराबर में रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं। पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव, यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें। और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इम्पैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति। इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से